0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है बल्कि

शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं।
नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है। लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुने योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में, छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं।
तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हर घर में एक दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को जूझ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को जी रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने किसी खास के साथ ही उसे शेयर कर पाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, हमारे जीवन के आगे भी ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उसी को कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति को संभालना, सोचना और झेलना। हर एक व्यक्ति को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मजबूरन हमें सोचना पड़ता है। ज्यादा सोच, टेंशन और इन्हीं सब का कारण बन जाता है मानसिक स्थिति खराब। अब हम यूं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति खराब का होना शायद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता है, वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें, हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है।
थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें। हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं? अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना। यानी कि ऐसा नहीं है, हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है, लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना, ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है और आपकी बहुत सारी चीजों को जो कि खराब हो चुकी हैं, उन्हें ये हील करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। 5th पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का और जो जल्दी पचने वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारे पेट को भी राहत मिलती है और हमारा मन भी और मूड भी अच्छा होता है। मन की बातों को लिखना, अपनी कोई भी चिंता, भावनाएं और दिन की सबसे अच्छी बातों को एक डायरी में लिखना मन को शांत करने जैसा होता है। साथ ही साथ ये आपको उस ओर लेके जाता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिड़चिड़ेपन हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप एक डायरी में उसे उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर आता है पॉइंट, कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज ऐसी 3 चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग, प्राणायाम, जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, मन की बेचैनी, तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन, शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान और अंत में शवासन। ये सारे प्राणायाम आपकी मन की स्थिति को तो ठीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ये फील कराते हैं कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे, यानी कि आप सब कुछ हार जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार, इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म आयाम,
सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक

लंका में पहुंच करके दिए वाटिका उजाड़, अक्षय कुमार को दिए धरती पे वो पछाड़। आया जो सामने दिए ककड़ी के जैसे फार, दुश्मन के घर में

एक कपी ने रख दिए बगिया के सारे पेड़ तोड़कर। मां

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं, तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

जगना, क्या बात है। तो आप जाग जाइए, हमको देख देख के अगर सोना है तो हमको देख कर जगना। बट एक मिनट, हमको देख के सोते कब है आप? ना, कभी नहीं, लेकिन हमको देख के उठ जरूर जाते हैं। वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और गाना बहुत प्यारा, इसलिए रोकेंगे नहीं, इस गाने के उस पार आकर बताते क्या है आज का थॉट ऑफ द डे।

0: सुपर्ब सॉन्ग फ्रॉम कलयुग मूवी, बहुत उम्दा गाना है। और जब ये प्ले होता है ऐसा लगता है कि सच में सुबह की पूरी एक वाइब जो है वो आ रही है इस गाने से। सो फिलहाल आइए इस खूबसूरत से गाने के बाद अब चलते हैं आज के थॉट को जानने के लिए, क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे में कौन सा है थॉट जो आपको ये दिन को बनाने वाला है और भी मंगलमय। क्यों भाई ट्यूसडे को मंगल कहते हैं, भूल गए आप? ऑलराइट, तो चलिए बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आपसे क्या है कहना चाहता आज का थॉट और आज का दिन। अब इस थॉट को सोचते हुए कैसे गुजरने वाला है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो भाई चलिए ले चलते हैं आपको थॉट की तरफ। और आज का थॉट कहता है कि एक दिन तुम्हें ऐसा प्यार मिलेगा, एक दिन तुम्हें ऐसा प्यार मिलेगा जो तुम्हें जादू पर यकीन दिला देगा। जी हाँ, एक दिन तुम्हें ऐसा प्यार मिलेगा जो तुम्हें जादू पर यकीन दिला देगा। बाप सोच रहे हैं यार, अभी तो उम्र के इतने साल तक तो कुछ नहीं मिला। देखिए, नेचर की खासियत यही है कि कोई एक फॉर्म में नेचर आपको कभी कुछ नहीं देता। अलग अलग शख्स को अलग अलग तरह से मिलता है। किसी को कोई शख्स मिल जाता है, किसी को उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लग जाता है, किसी को ख़ुद पे यकीन आ जाता है, तो किसी के साथ उनके सिनारियों, उनकी सिचुएशंस, उनकी परिस्थितियाँ उनके अनुसार हो जाती है। और इस तरह से सबको अलग अलग तरह से नेचर ब्लेस्ड करती है। सो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जिस दिन आप जादू पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऐसा प्यार मिल जाता है। भाई अब जाहिर सी बात है, मिलता बहुत कुछ है, लेकिन कहते ना कि हमारा भी आँख कान नाक खुला होना चाहिए। सो अगर हम ध्यान देंगे तो शायद हमको नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर ध्यान ही नहीं जाएगा तो कैसे होगा। इसलिए ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो ऐसा दिन ज़रूर आएगा अगर आप भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नरमी और वो नमी बची हुई है जिसको हम कहते हैं इंसानियत की बात वाली। सो ज़रूर फील होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप फील करेंगे ही करेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा नेचर का लॉ है। कहते नहीं कि जैसा करो वैसा मिल जाता है, ये बात कहने में तो बहुत ईजी है पर कहीं ना कहीं सच है। कहते हैं कि भाई जो सच्चा होता है उसको धोखा मिल जाता है। नहीं, धोखा वो देता है क्योंकि सच्चे को पता होता है कि उसको धोखा दिया जा रहा है। धोखा देने वाले को धोखा होता है कि उसको लगता है कि सामने वाले को नहीं पता है। एक्चुअल में जो जैसा वाकई देता है उसको वैसा ही मिलता है, क्योंकि ये यूनिवर्स रिटर्न ज़रूर करता है। सब कुछ यहीं रहता है, कहीं कोई जाता नहीं है। सो इसलिए आपको एक दिन ज़रूर ऐसा प्यार मिलने वाला है जो आपको जादू पर विश्वास दिला देगा। वो प्यार किसी भी शख्स के रूप में, किसी भी रिश्ते के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में, किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में, आपके खुद पर विश्वास के रूप में कैसे भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये बात तय है, कन्फर्म्ड है। अब आपको भी इंतज़ार है क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ खूबसूरत चीज़ों का इंतज़ार तो होना चाहिए, क्योंकि भाई अब इतनी खूबसूरत है तो थोड़ा सा तो इंतज़ार करना बनता है। पर हाँ, आँख कान नाक खुला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आए और हम समझ ही ना पाए, या शायद उसकी कद्र ही ना कर पाए। इसलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं और देखते हैं क्या क्या मैसेजेस भेजे हैं आपने मॉर्निंग शो में।

0: हाँ जी सुभाई, चलिए वक्त हो गया है आपको आपके शहर की अपडेट देने का, यानी कि सिटी अपडेट से रूबरू कराने का। सुबह आप जान लीजिए अब, क्योंकि आज की अपडेट्स में हम बताने वाले हैं काफ़ी कुछ, लाइट से लेकर के कौन सी ट्रेन निरस्त की गई है फ्रॉम लखनऊ के लिए, ये भी हम बताएंगे, गोरखपुर से चलने वाली, और साथ ही साथ क्या कुछ चल रहा है गोंडा में, ये सब कुछ आप जानने वाले हैं अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको हम बताने वाले हैं सिटी अपडेट, और सिटी अपडेट में आज काफी कुछ है जो आपके काम का है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। सो हैंडबॉल को बढ़ावा देने के

एम्बिशन से 10 से 20 जुलाई तक यानी 10 दिन की हैंडबॉल प्रशिक्षण शिविर लगाने की बात हो रही है। और इसी शिविर में अंडर 20 वर्ग के बालक और बालिकाएं हिस्सा ले सकेंगे। सो हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि उतरौला रोड पर मौजूद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका शिविर लगेगा। इसमें जो खिलाड़ी होंगे उनकी प्रतिभा का आकलन भी किया जाएगा। और चूंकि ज़िला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया है कि प्रशिक्षण हर रोज़ सुबह 5:30 से 7:30 बजे और शाम में 5 से 7 बजे तक दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बैमाने में अब दर्ज होगा ज़मीन का भू उपयोग। जी हाँ, ज़मीन खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए अब बैमाने यानी विक्रय विलेख में संबंधित भूमि के भू उपयोग का भी उल्लेख अनिवार्य होगा। इसे खरीदारों को पहले से ही ये जानकारी मिल सकेगी कि ये ज़मीन यानी भूमि विकास प्राधिकरण या विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत है या नहीं, और उस पर भविष्य में निर्माण संबंधी कोई प्रतिबंध लागू है या नहीं। चूंकि उप निबंधक बीपी सिंह ने बताया कि विक्रय विलेख में गाटा नंबर, ग्राम, तहसील और जनपद के साथ ये भी दर्ज किया जाएगा कि संबंधित भूमि पार्क, हरित पट्टी, खुले स्थल, क्रीड़ा स्थल या प्रस्तावित मार्ग के लिए आरक्षित है या नहीं। नई व्यवस्था भूमि खरीद बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास ही हुजूरपुर, अगर हम बात करें करनैलगंज की, तो संपार फाटक नंबर जो 282 है, इस पर प्रस्तावित 2 लेन रेलवे ओवर ब्रिज यानी ROB के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है और रेलवे ने परियोजना का नक्शा जारी कर दिया। इससे लंबे वक्त से लंबित इस योजना को गति मिलने की बात बताई जा रही है। चूंकि यह प्रस्तावित ROB करनैलगंज CHC के सामने से शुरू होकर हुजूरपुर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से होते हुए छतईपुरवा तक जाएगी। अप्रोच मार्ग सहित इसकी अनुमानित जो लंबाई है 700 से 1000 मीटर और ऊंचाई करीब 7 मीटर और चौड़ाई 10 से 12 मीटर प्रस्तावित है। पुल बनाने के फाटक पर लगने वाला जाम से लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन भी सुरक्षित होगा। सो चूंकि PWD के अवर अभियंता अनिल यादव ने बताया कि विभाग ने परियोजना के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है और रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रूट चार्ट और प्रारंभिक नक्शा तैयार हो चुका है, तकनीकी और प्रशासनिक काम तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भाई नकहा जंगल, ऐशबाग और दिल्ली स्पेशल ट्रेनें जो है निरस्त कर दी गई है। कब से कब तक के लिए और कौन कौन सी आई है आपको बता देते हैं क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है आपके लिए। सो तीसरी लाइन बिछाने के लिए प्री इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है जिसमें कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। सो गोंडा से गोंडा यानी गोंडा कचहरी रेलवे स्टेशन के बीच में जो तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम चलते रेलवे प्रशासन ने यातायात ब्लॉक कर लिया है 6 से 11 जुलाई के बीच में, और आज है 7 यानी कल से हुआ है। सो 11 जुलाई के बीच में नकहा जंगल, ऐशबाग और दिल्ली स्पेशल जो ट्रेन है वो निरस्त रहेंगी। सो कई ट्रेनों को उसके रास्ते भी बदल करके चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से सफ़र करने के लिए ट्रेन की स्थिति की जानकारी कर लेने की अपील की है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया है कि निर्माण कार्य के दौरान गोंडा मनकापुर बाराबंकी रेलखंड पर 9 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनें अपने जो नियमित मार्ग हैं उसकी जगह मनकापुर गोंडा बाराबंकी के स्थान पर मनकापुर अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, बाराबंकी होकर चलाई जाएंगी। अब इसके अलावा आपको बता दें कि कौन कौन सी ट्रेनें निरस्त रहेंगी और किन किन का रूट्स बदला गया है। तो जो ट्रेनें निरस्त रहेंगी उसमें है 5:50-61 नकहा जंगल, ऐशबाग पैसेंजर 6 से 10 जुलाई तक ये नहीं चलाएंगी। 5:50-62 ऐशबाग नकहा जंगल पैसेंजर 7 से 11 जुलाई तक नहीं चलेगी। 0:50-57 गोरखपुर दिल्ली स्पेशल 2 और 9 मई को नहीं चलाई जाएगी। 0:50-58 दिल्ली गोरखपुर स्पेशल 3 और 10 जुलाई को नहीं चलाई जाएंगी, निरस्त रहेगी यानी कैंसल्ड है ये ट्रेन्स। अब किन ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं, सो रेलवे प्रशासन ने 1:50-66 जो है यानी पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस 6, 7 और 8 जुलाई,
और 014-15 पुणे गोरखपुर स्पेशल 9 जुलाई, 014-16 गोरखपुर पुणे स्पेशल 9 और 10 जुलाई, 055-76 आनंद विहार टर्मिनस सहरसा स्पेशल 9 जुलाई, 010-82 गोरखपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्पेशल 9 जुलाई, 15-27-9 सहरसा आनंद विहार टर्मिनस सहरसा आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 9 जुलाई, 14-66-4 अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 9 जुलाई और 15-27-3 रक्सौल आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 7 से 10 जुलाई तक का ये मार्ग जो है इनका बदला गया। ये सभी ट्रेनें जो है मनकापुर अयोध्या धाम अयोध्या कैंट बाराबंकी मार्ग से चलेंगी। सो इनके रास्ते को चेंज किया गया क्योंकि यहाँ पे गोंडा से गोंडा कचहरी रेलवे स्टेशन के बीच में जो काम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं इसके लिए इसके मद्देनजर रखते हुए इस रूट को चेंज किया गया। इसके अलावा बता दें 2 ग्रामीण रूटों पर दौड़ेंगी नई बसें। जी हाँ, सो जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ये सुविधा दी जा रही है। लंबे वक्त से बेहतर परिवहन सुविधा की मांग कर रहे ग्रामीणों को अब चूंकि इसी रूट पर जल्दी नए बसेस मिलने वाली है। ग्राम परिवहन योजना के तहत जो है वो शनिवार को 2 नई 28 सीटर बसों का चलाने का स्वीकृति मिल गई है। इनमें से एक बस पस्का से गोंडा और दूसरी बस परासपट्टी से गोंडा तक चलाई जाएगी। बसों के संचालन में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय तक सुरक्षित सुलभ और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है और साथ ही ग्राम परिवहन योजना के तहत चलाई जाने वाली बसें ये रात में संबंधित गांव में ही रुकेंगी, सुबह रवाना होकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुँचेंगी, जिससे कार्यालय हॉस्पिटल शिक्षण संस्थान जाने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। इसके बाद दिन भर जो बाकी निर्धारित मार्ग हैं उन पर बसों का संचालन किया जाएगा। बसों में चालक परिचालक और बाकी कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय गांव से ही की गई है। तो जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उन्होंने बताया है कि दोनों बसों को चलाने की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इसका संचालन भी शुरू कराया जाएगा। सो इसके बाद काफ़ी सारी अपडेट्स में हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है और कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य बोला है। हॉस्टल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य मंत्री ने कहा भी है। चूंकि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समीक्षा बैठक ली थी जिसके बाद अक्टूबर से नवंबर तक कहा है कि ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें 87 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। शहर के LBS महाविद्यालय के साथ ही मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय से संबद्ध जैसे नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज समेत 87 जो महाविद्यालय हैं इसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ग्रेजुएशन यानी UG और पोस्ट ग्रेजुएशन जो पाठ्यक्रम है उसके प्रवेश की प्रक्रिया तेज हो गई है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं 27 जुलाई तक विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो जिले के महाविद्यालयों में BA, BSc, BCom, BCA, BSc कृषि, LLB सहित कई सारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों के करीब 1,00,000 सीटों का प्रवेश लिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। इसके लिए सबसे पहले जो है कैंडिडेट्स को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसके बाद वो अपनी योग्यता और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना पाठ्यक्रम और महाविद्यालय का सिलेक्शन कर सकेंगे। सो आवेदन के दौरान जो है अभ्यर्थियों को जरूरी अपने जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, फोटोज़ हैं उनके साइन है और ज़रूरी जो दस्तावेज़ हैं वो अपलोड करने होंगे। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई जो है वो बताई गई है। सो कहीं ना कहीं बताया गया है कि इसको जल्द से जल्द वो बच्चे जो करने वाले हैं जिनको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें और समय से अपना एडमिशन करा ले क्योंकि 27 जुलाई जो है वो लास्ट दिया गया। अब से 20 दिन और बचे हैं, आज 7 जुलाई है, तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए अपना ज़रूर सिलेक्शन कर ले कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं और कौन से महाविद्यालय से आपको पढ़ाई करनी है। फिलहाल वक्त हो गया है चलने का म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। सो म्यूजिकल ब्रेक क्या लेकर आया है, हवाओं को अपने संग लाया है। तो चलिए हम भी सवार हो चलते हैं इन हवाओं में और निकलते हैं अपने ही शहर में।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88400918123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: मैं हूँ फेसबुक और मैं सबको जानता हूँ।
1: मैं हूँ गूगल और मेरे पास सब कुछ है।
2: मैं हूँ व्हाट्सएप और मैं हूँ सबकी जान।
3: मैं हूँ इंटरनेट और मेरे बगैर तो तुम सब कुछ भी नहीं हो।
0: मैं हूँ चार्जर, आवाज नीचे।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉग आरजे दान आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, धक धक धक धक गोंडा।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे दान।

इतनी सारी बातों में आप ये कैसे भूल गए कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग इस बार नहीं होगा? ना, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ है क्या कि अगर आप किसी महफिल में हैं या घर में ही रहते हैं तो मच्छर जो है वो बाकियों को कम काटते हैं, आपको ज़्यादा काटते हैं? या आपके किसी घर के सदस्य को आपको लगा हो कि भाई इनको शिकायत बहुत होती है? किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ हो, कहीं किसी फ्रेंड की पीजी में आप गए हो तो ऐसा लगा हो, किसी रिलेटिव के यहाँ एक दो नाइट स्टे किया हो तो वहाँ पे ऐसा लगा हो? अगर ऐसा है तो इसके पीछे रीज़न है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या रीज़न है भाई, मच्छर ज़्यादा काटने का भी कोई रीज़न होता है क्या? ऑफकोर्स होता है जनाब, क्या होता है वही तो हम बताने वाले हैं। दरअसल बात यह कि अगर आपको भी दूसरों से ज़्यादा मच्छर काटते हैं ना तो इसके पीछे छिपा है साइंस। अब आप कहेंगे अच्छा इसका भी साइंस है, हमको बता रही है, आपको ही बताने वाले हैं साइंस क्या है, आइए बताते हैं आपको। दरअसल मच्छर जो है इंसानों को पहचानने के लिए कई संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसके अलावा बॉडी की हीट, और तीसरा है पसीने से आने वाली नमी। और इसी वजह से एक्सरसाइज के दौरान या ज़्यादा पसीना आने वाले पर मच्छर आपकी तरफ ज़्यादा ही आकर्षित हो जाते हैं। जी हाँ, एंड आपकी बॉडी की महक भी हो सकती है इसकी वजह। जी हाँ, सो हमारी जो स्किन है उस पर मौजूद जो प्राकृतिक बैक्टीरिया है वो अलग अलग तरह के वोलाटाइल ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स हैं यानी VOCs बनाते हैं, और ये बॉडी की प्राकृतिक गंध बनाते हैं। कुछ लोगों को बॉडी और ओडर मच्छरों की दूसरों की तुलना में ज़्यादा आकर्षित करती है। इसके अलावा किन लोगों को ज़्यादा काट सकते हैं मच्छर? सो कुछ स्थितियों में मच्छरों का आकर्षण बढ़ सकता है, जैसे गर्भावस्था में, क्योंकि इस वक्त बॉडी का तापमान और CO2 उत्सर्जन बढ़ सकता है, व्यायाम के बाद यानी एक्सरसाइज के बाद, ज़्यादा पसीना आने के बाद। सो इंसान की शारीरिक स्थिति पर ये डिपेंड करता है कि उसको मच्छर ज़्यादा काट रहा है कि नहीं। अब भाई बात आती है मच्छरों से बचाव कैसे किया जाए, ये थोड़ी ना बताएंगे, ये रुक के बताएंगे। पहले आप थोड़ा सा सांस तो ले लीजिए, थोड़ा सा आप समझ तो लीजिए कि आखिर मच्छर आपको काट रहे हैं तो उसके पीछे की वजह है ये सब है। बाकी तो हम बताते हैं ना, द मच्छर सॉन्ग, मतलब कैसे बचना है मच्छरों से ये बताते हैं। डोंट वरी, हम हैं तो बताएंगे और मिल करके इन मच्छरों का मुकाबला करेंगे जिनसे दुनिया बहुत बड़े देशों से लड़ जाती। लेकिन जब अपने मच्छरों की बात आती है तो यार सच में जीना आराम कर देते हैं।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: बदतमीज मच्छर, बदतमीज मच्छर, माने ना भाई, ये मानते ही नहीं है और बिना काटे तो ये दम लेते ही नहीं है। और एक हो तो मुकाबला भी कर लो भाई, पूरी इनका खानदान, परिवार, फौज, संस्थान, सब कुछ तो होता है। सो फिलहाल हमने आपको बताया कि भाई किन किन तरह से ये मच्छर आकर्षित होते हैं। एक तो पसीने से आने वाली नमी से, बॉडी की हीट से और कार्बन डाइऑक्साइड से, इन तरहों से ये पता लगाते हैं कि किस पे ज़्यादा अटैक करना है, यानी जिसमें हम मजाक में बोलते हैं भाई किसका खून ज़्यादा टेस्टी है, उसी पे अटैक ये ज़्यादा करते हैं। बट एक्चुअल में ये तीन चीज़ें देखते हैं जो कि हमने आपको बताया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे करना है अपना बचाव इस सेना से। सेना नहीं बोलना चाहिए था क्या?
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई क्या है तरीके, चलिए बताते हैं आपको तरीके मच्छरों से कैसे करना होता है बचाव। सबसे पहले मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा पूरी बॉडी को ढकने वाले कपड़े पहने, नो मोर हाफ फैशन। दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत ये भी नहीं कि कोई क्या कहेगा, दिक्कत ये है कि मच्छर कैसे अटैक करेगा, इस बात की दिक्कत है और कोई बात नहीं है। घर के आसपास का पानी जो है वो जमा नहीं होने देता है। जो आसपास अगर कहीं पानी जमा हो, कोई गड्ढा हो, कोई ऐसा कबाड़ हो जिसमें पानी बरसात का भर रहा हो और जमा हो रहा हो, तो प्लीज़ ऐसी जगहों को तुरंत साफ़ करें, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। और इसके अलावा खिड़कियों पर जाली लगवा लें। बहुत दिन से आप टाल रहे हैं कि अरे लगवा लेंगे, अच्छा अगले महीने अगले महीने। अब एक काम करिए, इस जुलाई में आप लगवा ही डालिए, क्योंकि मच्छरों को रोकने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है बाहर से आने वाले, या जैसे आसपास मान लीजिए कोई नाली है, इस तरह का कोई होल है जहाँ पर पानी अक्सर रहता है। उन मच्छरों को रोकने का सबसे बढ़िया उपाय होता है कि जो विंडोज़ है हमारी, वहाँ पर हम जाली लगवा लें। इससे बहुत बचत हो जाती है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि मच्छर सिर्फ खुजली ही नहीं बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ भी फैला सकते हैं और फैलाते हैं, इवन फैलाते ही हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनसे अपना बचाव किया जाए और ख़ुद को सुरक्षित रखा जाए और अपनी पूरी फैमिली को भी इससे बचा लिया जाए। सो आई होप कि भाई आप तक ये जानकारी पहुंच चुकी है कि आपको बचाव कैसे करना है। चलिए अब आप खुद को प्रिपेयर करिए और युद्ध की तैयारी करिए, और ये युद्ध किसी और से नहीं, मच्छरों की सेना से है।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM।

0: तो भाई कहीं तो बहुत बरस रहा है और कहीं जो है वो इंतज़ार करते करते ऐसा लगता है कि आंखें पथरा जाएंगी। लेकिन फिलहाल मानसून सीज़न चूँकि आ चुका है, सो मानसून सीज़न सिर्फ आता है तो अपने साथ खुशियां या फसलों के लिए अच्छाई नहीं बल्कि कुछ सावधानियां भी लाता है। सो उन सावधानियों को बरतना ज़रूरी है, स्पेशली जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अक्सर हम देखते हैं रोड्स पर या बारिश के बाद होने वाली घटनाओं में। तो अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ बातों का ख्याल रखें तो हम इस तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं और ख़ुद को एक सेफ जोन में रख सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो क्या हैं जो बारिश में नहीं करना होता है. स्पेशली हम उनकी बात कर रहे हैं जो कार ड्राइव करते हैं. सो कार ओनर को पता होना चाहिए कुछ ज़रूरी बातें. जैसे पहला, पानी भरा देख के स्पीड मत बढ़ाइए. सबसे पहली बात, अक्सर यही गलती होती, लोग पानी भरा हुआ देख कर स्पीड बढ़ा लेते हैं. सो स्पीड से निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि पानी इंजन और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स तक पहुंच सकता है. सो गलती क्या होती है, पानी भरे रास्ते पर स्पीड को बढ़ा देना. सही तरीका क्या है, पानी को धीरे और एक ही स्पीड में क्रॉस करें, ताकि जो हमने बताया ना इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या फिर इंजन तक पानी ना पहुंचे, ज़्यादा सेफ होगा. दूसरा क्या है, कार बंद हो गई तो दोबारा सेल्फ मत मारना. जी हाँ, ये सबसे महंगी गलती हो सकती है. अगर इंजन में पानी चला गया तो दोबारा सेल्फ मारने से इंजन डैमेज हो सकता है. गलती क्या है कि कार को बंद होते ही दोबारा सेल्फ मारना. सही तरीका क्या है, इंजन को सुरक्षित

रखना, मैकेनिक या टोइंग की मदद लेना। खुद से करेंगे तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ टायर देख करके मत समझिए कि सब ठीक है। सो टायर नए दिख सकते हैं लेकिन ग्रिप कम हो सकती है। गलती क्या है कि टायर को देख करके अज्यूम कर लेना कि सब ठीक है। सही तरीका क्या है कि मॉनसून से पहले टायर ट्रेड ज़रूर चेक करवा लें आप, जिससे कि आपको पता हो जाए कि आपके टायर सही हैं या नहीं हैं। क्योंकि पता है भाई, टायर अगर सही नहीं होंगे तो उससे एक्सीडेंट्स ऑब्वियस सी बात है जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा वाटर लॉगिंग में किसी और कार के पीछे पीछे मत चलिए। सो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और आपकी कार को नुकसान पहुंच सकता है। गलती क्या होती है? गलती होती कि सामने वाली कार के पीछे पीछे चलने से पता नहीं चलता कि गड्ढा कितना गहरा है या पानी कितना ज़्यादा है। सही तरीका क्या है? हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर चलिए और पानी की गहराई को खुद से देखकर ही आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि सामने वाला डूबता जा रहा तो लाओ, जब तक वो पूरी तरह ना डूब जाए तब तक हम भी नहीं समझेंगे कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि थोड़ा डिस्टेंस, ताकि आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि भाई आगे क्या सिनारियो चल रहा है। इसलिए एक निश्चित दूरी बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है कि बारिश के बाद कार ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। जी हाँ, मिट्टी और गंदा पानी जो है पेंट और अंडर बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। गलती क्या होती है कि बारिश के बाद कार को ऐसे ही गंदा छोड़ देना या सिर्फ पानी से हल्का साफ करके छोड़ देना। सही तरीका क्या है कि भारी बारिश के बाद 1 से 2 दिन के अंदर कार की अच्छी तरह वॉश कराएं। इससे मिट्टी और गंदा पानी हट जाता है और कार सुरक्षित रहती है। इसके अलावा एसी बंद करके ग्लास खोलना सोल्यूशन नहीं है। सो बारिश में विंडशील्ड पर फॉग होना बहुत ही सामान्य सी बात है। गलती क्या होती है कि फॉग होने पर एसी बंद कर देते हैं और ग्लास खोल देते हैं। इससे क्या होता है कि केबिन में नमी बढ़ती है, फॉग और ज़्यादा हो जाता है और विजिबिलिटी और भी ख़राब हो जाती है। इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका है कि एसी को आपको ऑन रखना है, जी हाँ, और डीफॉगर का इस्तेमाल करना है। इससे नमी कम होती है, विंडशील्ड साफ रहती है और विजिबिलिटी सुरक्षित बनी रहती है। इसके अलावा ख़राब वाइपर और वॉशर फ्लूड पर ध्यान नहीं देना है तो हर साल मानसून से पहले वाइपर ब्लेड ज़रूर आप बदल लें और वॉशर टैंकर में साफ पानी के साथ में विंडशील्ड क्लीनर शैम्पू हमेशा साथ में रखें। गलती क्या होती है कि घिसे पिटे वाइपर का इस्तेमाल करना और वॉशर टैंक में सिर्फ पानी भर करके चलाना। सही तरीका क्या है कि हर साल मानसून से पहले वाइपर ब्लेड बदल लेना, वॉशर टैंक में पानी के साथ विंडशील्ड क्लीनर शैम्पू ज़रूर भरना ताकि कांच साफ रहे और विजिबिलिटी बेहतर बनी रहे। सो बारिश का मज़ा तो लेना है लेकिन कार का भी ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी बातें हैं जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है और लगता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करा देती है। और जब हम अपनी कार का या किसी भी गैजेट का ध्यान नहीं दे रहे होते हैं प्रॉपर, तो एट द एंड फिर बड़ा खर्चा लेकर आती है। तो उससे भी कहीं ना कहीं हम बच जाते हैं अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं और रेगुलर बेसिस पे हम चीज़ों को बेहतर बनाए रखते हैं। इसलिए इन लोगों का जो बात हम बताएं, इन बातों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश है, हम लोग निकलते भी हैं, कई जगह टूर भी करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सेफ्टी मेजरमेंट्स हमारे साथ हमेशा होने चाहिए। ये जो सेफ्टी की हम बातें बताते रहते हैं, ये पॉइंट्स हमेशा हमारे जहन में होना चाहिए और हमको इन्हें फॉलो करते हुए चलना होगा ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो और हम एंजॉय भी लगातार करते रहें बेफिक्र होकर के। भाई बेफिक्र होकर के।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
2: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

वैसे एक बात है जो कि थोड़ा सा सच में परेशान करने वाली ये है कि आपको पता है कि भाई दुनिया में, चूंकि भारत में 3 में से 1 लोग ऐसे ज़रूर निकल रहे हैं जिनको पोषक तत्व की कमी है। जी हाँ, यानी पूरा पोषण जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। अब ज़रा सोचिए कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है। सो ज़रूरी पोषक तत्वों से आखिर भारतीयों में क्यों जूझ रहे हैं, यानी हर 3 लोगों में से 1 भारतीय हैं जो पोषण की कमी से जूझ रहे हैं। क्योंकि सही पोषण सिर्फ पेट भरने से नहीं मिलता है, बल्कि थाली में मौजूद जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं उनसे मिलता है पोषण। सो ये पोषण सिर्फ फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट तक मौजूद नहीं होता है, बल्कि ये पोषण जो है हमारी बॉडी को सही तरीके से काम करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। अब जैसे आपको बता दें कि भाई आपने भी सुना होगा आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी और फोलेट ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स ये माने जाते हैं बॉडी के लिए। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इनका होना ज़रूरी है। सो जब बॉडी को ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं मिलते हैं, यानी जब चाहिए होता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। जी हाँ, और इसी की वजह से फ्लोट की कमी हो जाती है, इसी की वजह से विटामिन डी और B12 की, जिससे फटीग, वीकनेस, मेमोरी इश्यू होते हैं और इसके अलावा हड्डियों में दिक्कत होती है, और इसी के साथ ही साथ आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी एनीमिया हो जाता है, और ख़ासकर एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये महिलाओं में बहुत हो जाता है। सो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से बॉडी जो है वो कमज़ोर होने लग जाती है और जल्दी थकान होती है। सो किसी काम में ध्यान नहीं लग पाता है, यानी बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये एक गंभीर समस्या है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी बच्चों की सेहत हो या बच्चों की पढ़ाई हो, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से सही विकास पर जो है काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। इससे बॉडी की ताकत भी जो है वो कम हो जाती है और जल्दी थकान होती है। सो रोज़मर्रा के काम करना जो है वो काफ़ी मुश्किल लगने लगता है, और स्पेशली अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो माँ और बच्चे दोनों पर इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। सो कुपोषण की जो प्रॉब्लम है वो अगली पीढ़ी तक पहुँच सकती है, ऐसा साइंस कहती है। लेकिन हम भी अगर छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, यानी बहुत छोटे छोटे से प्रयास, तो इस प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। जैसे क्या है कि पहले भारत में गोइटर की बीमारी बहुत ज़्यादा थी, राइट, गले में आपको पता है इस तरह से हो जाता था। लेकिन 1986 में आयोडीन युक्त नमक ये इस्तेमाल करना शुरू कर लिया गया। इस पर हमने कहीं ना कहीं कोशिश किया और ये प्रॉब्लम अब काफ़ी कम हो गई है। सो छोटे छोटे बदलाव जो हैं वो बड़ा फ़र्क ला सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो सही और बैलेंस्ड खाना जिसमें ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स हों, इनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बॉडी में पोषण की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। और इसके साथ ही अच्छे खान पान की आदतें भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बच्चों को शुरुआत से ही सिर्फ माँ का दूध देना, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है, और पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड फूड्स खाना, यानी वो जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं ऐसे फोर्टिफाइड फूड्स खाना अच्छा है। और महिलाओं और किशोर लड़कियों के लिए स्पेशली आयरन और फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हिडन हंगर को अब नज़रअंदाज ना करें, जो आपकी छिपी हुई भूख है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी थाली में कई तरह की, अगर आप भोजन, यानी जिसमें अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, इसको शामिल करिए, क्योंकि यही आपको सही पोषण देगा जिससे बॉडी को सभी ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं, और इन्हीं से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भी सेहत पर बड़ा असर चुकी डालता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी थाल कैसी है, आपकी थाल में क्या क्या है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है, और ये सीधे सीधे आपके पोषण से जुड़ा है। और पोषण से ही आपको बताया कि अगर सही पोषण नहीं मिलता है तो कई विटामिन्स की, आयरन्स की, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन आता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस लगती है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये कॉमन बनती जा रही, क्योंकि हम सही पोषण तक नहीं पहुँच पाए हैं। जिस दिन हम सही पोषण को अपना लेंगे, जिस तरह से हमारी अगर थाल है उसमें सभी पोषक तत्व होंगे, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दही, ये सब अच्छी चीज़ों को अगर हम शामिल करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत असर आएगा,
क्योंकि अगर खान पान बदलेंगे तो सेहत पर आएगा, और सेहत जब बदलेगी तो मेंटली आप स्ट्रांग होकर के अपनी चीज़ों को सही से कर पाएंगे। इस वजह से हमने इस बात को आप तक पहुंचा दिया है। अब आपका ये फ़र्ज़ है कि आप भी अपने घर में कोशिश करके थाली में बदलाव लाइए और सभी पोषक तत्वों से भरपूर थाली हो, ऐसा हम सभी लोगों को अपने अपने घरों में सुनिश्चित करना होगा, ताकि हम जो पोषक तत्वों की कमी है उससे ना जूझे, हम इलाज पर अपना पैसा ना खर्च करके हम अच्छे से अच्छे खाने पे अपना पैसा खर्च करें, ताकि हमारे पैसे भी बचे, हमारी सेहत भी अच्छी हो और हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाएँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और कहीं भी घूमने का, निकलने का, कुछ करने का पूरा पूरा उसका मज़ा आए। सो चलिए आज ही हम ये अहद करते हैं, ये उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ ये खुद से वादा करते हैं कि भाई हम अपने घर की थालियों को और भी ज़्यादा पोषक तत्वों से भरने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। सो ये कोशिश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी को, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसको हराना है।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: जी, और वापस से एक बार आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आर जो अदनान सुबह। चलिए, आपकी तरफ से कंटेंट आ गया है, और क्या लिखा है, किसने लिखा है और कहां से लिखा है, ये सब कुछ बताते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आर जो अदनान।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई प्रीति जी ने भेजा है बहराइच से, आपने लिखा है निर्मल प्रेम। ओके, उसमें लिखती हैं आपकी, सच्चा और निर्मल प्रेम मिलता नहीं किसी हाट में खरीदने से, सच्चा प्यार मिलता है सिर्फ अपने उचित व्यवहार से। जन्मजात ही मिल जाता है निर्मल प्रेम अपने माँ बाप से, पर किसी दूजे से मांगने पर भी ना मिलता सच्चा प्यार। दिखावे की चमक दमक दुनिया, दिखावे का प्यार, फिर भी न जाने कैसे फंस जाते हैं अनाड़ी लोग बन अनजान। बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मिलता है कुदरत का दिया हुआ तोहफा सच्चा प्यार। निर्मल प्रेम का नहीं होता कोई मोल, निर्मल प्रेम होता है सदा ही बड़ा अनमोल। क्या बात है, आज के थॉट ऑफ द डे में आपने इतना जान फूंक दिया। थैंक यू सो मच टू यू प्रीति जी फ्रॉम बहराइच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड चलिए, कुछ मैसेजेस भी आ चुके हैं। आशु जी लखनऊ से हैं, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, और जल्दी तलाश मुकम्मल हो मेरी। अच्छा, थैंक यू। इसके अलावा लवली सिंह है अदना से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। आपने लिखा है कि जहाँ पर संपूर्ण ज्ञान है वहीं पर पूर्ण विज्ञान है, क्या बात है। और धर्मेंद्र मोंजी को जो है सॉन्ग बहुत पसंद आया, बहुत शुक्रिया। और लिखा सर जी, जब देसी बीज विदेश चले गए, विदेशी बीज इंडिया आ गए, तो इसमें पोषक तत्व कहाँ रह जाएंगे, हमारी पहली फसल थी, शुद्ध थी। बेशक, सही कहा, नाइस इन्फॉर्मेशन बोला है प्रीति जी ने, स्वच्छ खान पान, स्वस्थ पोषक थाली पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि भाई आप लोगों ने इस बात को कंसीडर किया, समझा कि हाँ किस तरह से हमारी थाल से जो है वो पोषक तत्व ख़त्म हो रहे हैं, और इसको बचाना, इसको रोकना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी पूरी पीढ़ी को अगर हमें सही रखना है, बीमार होने से बचाना है, तो हमको इन बातों का ख्याल न सिर्फ रखना होगा बल्कि इस ओर कदम बढ़ाना भी होगा और चीज़ों को बेहतर बनाना होगा, तभी हमारा काम चल पाएगा। इसलिए बस यही है कि भाई हम कहीं ना कहीं पोषण से जो है वो दूरी ना बनाएं और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। चलिए, फ़िलहाल आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है और अब आपसे विदा ले, लेकिन उससे पहले आज का शो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ उन सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो इस वक्त बने हुए हैं गोंडा FM 89.6 FM पर और सुन रहे हैं अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा, अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के संग। और साथ ही साथ अब एंजॉय करेंगे जाते जाते ये मस्त सॉन्ग।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: आज का नया प्रोग्राम है गांव की गूंज की टीम का। अप्रैल का महीना चल रहा है, पर गर्मी का सितम इतना ज्यादा है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है।
8: आप सबने बैंगलोर की न्यूज पढ़ी? अरे वही शहर जो IT कैपिटल ऑफ इंडिया है, पानी के भयंकर संकट से जूझ रहा है। अरे मेरा भाई इन्फोसिस में काम करता है, वो बता रहा था कि हम लोगों ने मांग की है कि ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दिया जाए।
9: अरे जिम्मी तुम सुनो, अब की गर्मी में तुम बैंगलोर जाना चाह रही थी? देखो हरिओम क्या बता रहा है कि बैंगलोर के लोग छुट्टी लेकर अपने गांव आ रहे हैं, वहां पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है।
10: हरिओम सही कह रहा है, स्विमिंग पूल पर तो रोक लगा दी गई है, कार वॉशिंग नहीं कर सकते, यहां तक कि लोग 2-3 दिन में एक बार नहा रहे हैं, और कपड़े धोना तो जैसे भूल ही गए हैं।
11: हाँ यार, कल रात मैं और साक्षी भी न्यूज देख रहे थे, बता रहे थे कि बैंगलोर में पहले पॉपुलेशन करीब 80 लाख की थी, अब 1.5 करोड़ पहुंच गई है। जिस फ्रेंड के पास हम सभी जा रहे थे वो वापस आ रही है, अब अपने गांव से ही काम करेगी।
8: बैंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन बोला जाता था एक टाइम पर आज कंक्रीट का पूरा जंगल बन गया है। किरण दीदी आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप अपने गानों को तैयार कर लीजिए और मैं गांव के सभी लोगों से मिलकर पानी की समस्या पर काम करता हूं।
10: ठीक है हरिओम, बीच में मैं गाने सुना सुना कर तुम लोगों की स्ट्रेस दूर करती रहूंगी।

0: गांव की गूंज की टीम का उद्देश्य था कि हमारे गांव वीरान न हो, लोग उसकी मिट्टी से जुड़े रहें। और देखो, जब कोरोना हुआ तब हम सब ने देखा कितने गांव की मिट्टी से जुड़े हैं, उनको कम नुकसान हुआ। गांव के दौर में जब हम लोग सब मुसीबत में थे आदि, तब भी सबको आने वाली गांव की मिट्टी ही याद आई।
1: इसलिए तो हमारी टीम कहती है कि अपनी मिट्टी की खुशबू कम ना होने दीजिए, उसे आबाद रखिए, उसे ना भूलिए। मुसीबत के समय, परेशानी के समय सिर छुपाने आप वहीं जाते हैं।
2: जब से आप लोगों के गांव की गूंज की टीम के साथ जुड़े हैं, तब से बराबर देख रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। कोरोना में तो लाखों लोग अपने घर वापस लौट आए थे। अब बेंगलोर में पानी की समस्या, सुकून तो अपने गांव की मिट्टी में ही मिलता है।
3: हमारी जिम्मी कितनी सयानी हो गई है, कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। चलो, हमारे दूसरे गाने की धुन भी तैयार हो गई है, सुन लो तुम लोग।

0: पता है जब हमारे बड़े भैया बैंगलोर जा रहे थे तो बहुत दुखी मन से जा रहे थे, पर भाभी को गांव में रहना पसंद ही नहीं है। जब कभी बेचारी गांव में रही ही नहीं तो गांव की वैल्यू क्या ही जाने।
1: हाँ हरिओम भैया, कल भाभी ने हमको भी फोन किया था और कह रही थी कि जब हम लोग बैंगलोर जा रहे थे तब बहुत खुश थे कि चलो गांव से पीछा छूटा, पर दादी साथ समझा रही थी कि गांव की मिट्टी को बंजर मत होने देना, घर की चौखट को हमेशा बनाए रखना, जब भी छुट्टी हो घर आती रहना। पर बहू, समय के चक्र को तुम जानती नहीं, और ये याद रखना कि जितनी भी परेशानी आए गांव की मिट्टी कभी भूखा नहीं रहने देगी।
2: सच कह रही हैं आप। सोचिए, आज बेंगलोर में लाखों कमाने वाले लोग भी पानी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। करोड़ों के घर हैं लोगों के पास, एक से बढ़कर एक बाथरूम है, पर एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।
3: पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे शहर और हमारे गांव में यह समस्या ना हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत है। अब की मौसम विभाग की चेतावनी है कि गर्मी बहुत प्रचंड पड़ेगी। हम सब क्या करें? चलो मिलकर कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं जिस पर हमें काम करना है।
4: पानी की समस्या से निपटने के बारे में अगर आज से नहीं सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन के पास तो पीने को साफ पानी रहेगा ही नहीं। पूरी जानकारी हम लोग इस समस्या पर काम करते हैं। शंकर चाचा चाची गोरखपुर से आए हुए हैं और पूरे गांव की गूंज की टीम के लिए टेरी कोटा से सामान लाए हैं। तुम सब ले जाना और गोरखपुर पर एक गाना है, वह भी सुनते जाओ।
5: गोरखपुर के, हाँ गोरखपुर के।
4: अरे क्या,

0: सबसे पहला काम हम सबको करना है कि पानी को बचाना है। पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, पर पीने योग्य पानी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1% है। पूरी पृथ्वी का 97% पानी समुद्री है यानी खारा, 2% ग्लेशियर और पर्वत है। बचा जो 1% है वो हम पीने के काम में लेते हैं और घर के बाकी काम में लेते हैं।
1: इतना कम पानी है हम लोगों के पास, हम अब गिलास में उतना ही पानी देंगे जितना पीना है, नहीं तो 2 घूंट पीते हैं और बाकी सब फेंक देते हैं।
2: ठीक कह रही है संता दीदी, अभी कल ही मैं एक शादी में गई थी और वहाँ जैसे ही बारात वाले पहुँचे सबको एक एक बोतल पकड़ा दी। अब सभी ने बस 1 या 2 ही घूंट पानी पिया और बाकी पानी फेंक दिया। अब किसी को दोबारा प्यास लगे तो वो दूसरी बोतल ले लिया करता था। अब इसमें देखिए पानी कितना ज्यादा वेस्ट हुआ।
3: अरे हाँ, आज तक तो हम भी यही करते थे, पर अब से नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी में जाएंगे, जब तक एक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी नहीं लेंगे, और दूसरों से भी यही कहेंगे कि जितना पानी पीना हो उतना ही ग्लास में लीजिए।
4: गांव की गूंज की टीम का सेव वाटर की मुहिम का ये पहला कदम, और दूसरा कदम ब्रश करते समय नल चलाकर छोड़ नहीं देंगे, नहाते समय बेकार में पानी बहने नहीं देंगे, समय समय पर लोगों को भी समझाते रहेंगे ज्ञानस्त्री रेडियो के माध्यम से। जल ही जीवन है, लो यह गाना सुनो और लहसुन की चटनी के साथ घुघरी खाओ।

0: 30% शुद्ध जल हमें अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, पर अंडरग्राउंड वाटर का मुख्य सोर्स जो है वो वर्षा है। और आप सभी न्यूज में सुनते ही रहते होंगे कि वर्षा प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता, और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। हर जगह तो घर, सड़क, पुल बनते जा रहे हैं, और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। करोड़ों का घर बनवाएंगे, पर बरसात में अपने घर में पानी का संचय कैसे होगा, इसका कोई भी उपाय नहीं करेंगे। आजकल गमले का फैशन चलने लगा है, घर में पेड़ पौधे लगाने का फैशन चला है। तो अगर घर आप बनवा रहे हैं तो घर में एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दें, जिससे क्या हो, बरसात का पानी सोख कर जमीन के अंदर चला जाए।
1: हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने छत के पानी को पीवीसी पाइप लगाकर बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर लिया था, और कई दिन तक उसी पानी से कार को धोने का काम, बगीचे में डालने का काम करते हैं। देखो, हमारे पास फोटो भी है। तब हम सोच रहे थे कि ये सब बेवकूफी है, पर आज समझ आ रहा है कि कितना अच्छा काम किया है उन्होंने।
2: आज ही हम घर जाकर पापा से बोलेंगे कि क्या पापा, इस बरसात में हम लोग बारिश के पानी को बचा सकते हैं? एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है हम लोगों ने। अपना जो लान था ना, उसको हमने भैया से कह के बहुत ही जिद करके बोला कि भैया इंटरलॉकिंग वाला टाइल्स लगवा दीजिए, जबकि भैया भाभी दोनों बहुत मना कर रहे थे इसको लगवाने के लिए।
3: श्वेता मैम, जब जागो तभी सवेरा, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, रुकवा दीजिए। जब हम सही होंगे तभी तो लोगों को अच्छी बातें सिखा पाएंगे।
4: अपने घर के पास पानी से भरी बाल्टी या नादा लगवा दीजिए, जिससे सड़क के कुत्ते, आवारा जानवर प्यास से ना मरे, और छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, जिससे चिड़ियों को पानी मिले और हम सब की बूंद बूंद की कोशिश और कितने को जीवन दान मिलेगा।

0: ये गाना किरण दीदी बिट्टू की शादी के लिए तैयार किया गया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। गांव में छोटे छोटे गड्ढों में पानी डालने के लिए सरकार पैसे भी देती है और साथ में ताल भी खुदवाती है सरकार, पर प्रधान पैसे खा जाते हैं और उतना अच्छा काम तो करते नहीं है। और गांव के लोग बेचारे ठहरे सीधे साधे, प्रधान से पूछ भी नहीं पाते हैं। और हम लोग की टीम का काम है जागरूकता फैलाना और लोगों को बताना कि उनका अधिकार क्या है।
1: हमारी नदियों और झीलों की गहराई इतनी कम होती जा रही है क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है। गहराई कम होने के कारण बरसात के पानी इकट्ठा होने की जगह से बहुत जगह भी कम होती जा रही है। बेंगलोर में भी न्यूज में था कि जो लेक थे उस पर बिल्डिंग बन गई। इन्हीं सब कारणों से पानी की कमी हो रही है।
2: अरे हाँ यार, यहाँ पर भी तो पीछे तालाब था जिसमें बरसात का पानी चला जाता था। पिछली बार तो बरसात में करीब एक महीने तक कॉलेज और गली में पानी भरा हुआ था। लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था।
3: अपनी परेशानियों का कारण हम स्वयं हैं। अब बेंगलोर में ही देखो, हर किसी को वही नौकरी करनी है। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, पर कल ही हमने देखा कि वहाँ का तापमान लखनऊ से 1 डिग्री ज्यादा था। बर्फ के गोले खाते खाते यह लोकगीत सुनो, हम नहीं खाएंगे, गला तुरंत पकड़ लेता है।

0: पानी की परेशानी को दूर करने के लिए पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ पेड़ हमें गर्मी से राहत पहुँचाते हैं, वहीं गांव और शहर के तापमान में कम से कम 2-3 डिग्री का अंतर होता है। हवा को शुद्ध रखते हैं पेड़। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ एसी कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रात में तो आज भी लोग छत पर, आंगन में या बाहर चारपाई लगाकर मच्छरदानी के अंदर सोते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं। बिल्कुल हेल्दी लाइफ होती है उनकी।
1: पता है, पेड़ लगाने से उस एरिया में वर्षा ज्यादा होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी के जंगल में होती है। फिर जब हम सबको पता है कि जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ ज्यादा वर्षा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करते और रक्षा करें, जिससे हमारे यहाँ कभी पानी की समस्या ही ना हो।
2: समता मैम, आजकल मौसिन राम करके जगह है, वहाँ माना जाता है कि चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश होती है। दोनों बहुत पास हैं, पर अभी इस बात पर विवाद ही चल रहा है कि कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है।
3: हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ जब भी वर्षा हो और वर्षा के पानी को हम लोग संचित करें, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर पानी के मूल्य को नहीं समझेंगे तो हम भी और हमारी भी सिचुएशन बेंगलोर वासियों की तरह हो जाएगी। पानी के लिए हमें भी लाइन लगाना पड़ेगा।
4: और इस महंगाई के युग में पानी को हर काम के लिए खरीद रहे होंगे। हम सबको पानी को बचाना है, उसके मूल्य को समझना है। गांव की गूंज की पूरी टीम संकल्प लेती है कि पानी की हर बूंद बचाएंगे। पानी का हर बूंद बचाते चलो, जीवन का हर जश्न मनाते चलो।
5: अरे महंगाई का जमाना,

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827। अरे सुना?
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, आदाब। और घड़ी में वक्त हो चला है 12:07 बाय स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी अपनी आरजे में उन्नति मौजूद है आप सभी के साथ, लेकर के आफ्टरनून का स्पेशल शो, जो कि ट्यूसडे में स्पेशल हम स्टोरीज लेकर आते हैं। कुछ हॉरर होती हैं, कुछ क्राइम्स रिलेटेड, कुछ मिस्ट्री, और आज एक ऐसी ही स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं हांगकांग से। अभी ये तो आपने किया ही होगा ना, कभी कभी तो कभी आपने भी खाना ऑर्डर किया होगा, या हो सकता है आपका खुद का रेस्टोरेंट चलता हो, क्लाउड किचन चलता हो, और आपने अपने खाने को डिलीवर भी किया हो। आपके पास कॉल आते हो कि मुझे खाना चाहिए, मुझे फ्राइड राइस चाहिए, मंचूरियन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और आपने उसको पैक करके उसके एड्रेस पे भिजवाया भी हो। अब ये चीज़ इंडिया में तो बड़ी कॉमन है, लेकिन बाहर के देशों में आज भी रेस्टोरेंट को कॉल करना पड़ता है। आप जोमैटो या स्विगी नहीं कर सकते, आप रेस्टोरेंट पर कॉल करते हो, उसको बताते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो नोटिस करते हैं, वो नोट करते हैं, फिर वो बनाते हैं, फिर वो आपके घर पर पहुँचाते हैं। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अब सोचिए, आप जिस घर में खाना डिलीवर करने जा रहे हो, वो घर बड़ा अजीब सा दिखता हो। एक तो सबसे सुनसान इलाके में वो घर बना हो, दूसरी चीज़ जब आप घर के बाहर खड़े होकर कह रहे हो खाना आपका आ चुका है, यूँ तो जिसके घर भी हम खाना देने जाते हैं ना, वो भागा भागा कहता है, अरे वाह मेरी बिरयानी आ गई, अरे वाह ये आ गया, वो आ गया। बट वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाना लेने ही नहीं आ रहे हैं, वो खड़े हैं और आप चिल्ला रहे हो, 15 मिनट तक आपका खाना आ गया, नहीं आना तो मैं जा रहा हूँ। वो आता भी है, गेट खोलता है, गेट में से सिर्फ उसकी एक आंख दिखती है और अपना छोटा सा हाथ निकाल के अपने हाथ में जो पेपर बने होते हैं या फिर कहें जो पैसे होते हैं वो पकड़ा देता है आपसे खाना, कहता है यहीं छोड़ दो। वो ना पूरा गेट खोल रहा है, ना अच्छे से ग्रीट कर रहा है, ना ले ही रहा है, और खाना लेकर चला भी जाता है। आपकी फिर से एंट्री होती है, फिर वो कॉल आती है, फिर आप ऐसे ही खाना देने जाते हो और फिर आपके साथ यही होता है। तो आपको नहीं लगेगा अजीब? बाद में आपका मैनेजर आकर कहे कि ये तुम पैसे लेकर आए हो ना, ये एक नंबर के फ्रॉड पैसे हैं, तुम्हारे साथ स्कैम हो चुका है। और आपको ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे पैसों की जानकारी है, मैंने पैसे अच्छे लिए थे, ये झूठे कैसे हो सकते हैं? अब इस पूरे दौरान में बाद में आपको ये पता चले कि जिसको आप खाना खिला रहे थे वो पिछले एक हफ्ते से मर चुका है, वो जिंदा ही नहीं है, तो क्या लगेगा खाना किसको खिला रहे थे? हैं, कभी सोचा है किसके घर पर डिलीवर करके आ रहे थे? ऐसी एक स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं हांगकांग से, जहां पर एक रेस्टोरेंट खाना डिलीवर तो करता था, डिलीवरी एक्सेप्ट भी होती थी, लेकिन घर आने के बाद या फिर कहे तो रेस्टोरेंट आने के बाद जब सब कुछ बंद करके पैसे गिने जाते थे कि कितनी कमाई हुई आज की लो देख लें, तब पता चलता था कि भैया कमाई में थोड़े पैसे नकली भी आ चुके हैं। इस बात से बड़े परेशान और हैरान पुलिस को कंप्लेन, पुलिस ने कहा कि ये लोग तो पिछले एक हफ्ते से मर चुके हैं, खाना कैसे खा सकते हैं? सोचिए। तक आप ये सोचते हैं कि वो खाना कैसे खा रहे हैं, तब तक के लिए आइए हम आपको सुनाते हैं आवारापन से मुस्तफ़ा की आवाज़ में तेरा मेरा रिश्ता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइफ में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजी उन्नति और आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ आज का मंगल वाला मंगलवार यानी कि ट्यूसडे वाला मंगलवार, जिसमें हम आपको लेकर आते हैं कुछ बेहतरीन सी कहानियाँ। और आज की कहानी कहीं और से नहीं, सीधे लेकर आए हैं हांगकॉन्ग से। हांगकॉन्ग शहर जो अपने आप में काफ़ी फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट हम उन सारी चीज़ों को साइड में करके अब बात करेंगे एक और चीज़ की। वो ये है कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग काम करते हैं, खाना डिलीवर करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। वहाँ एक शाम जब बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, काउंटर पे एक शख्स बैठा था, उसके पास एक कॉल आती है। अब उसका मन तो नहीं कर रहा था उठाने का, क्योंकि एक नियम था, नियम ये था कि जो कॉल उठाएगा वही जाएगा कहाँ डिलीवर करने खाने को। उसने सोचा कि यार पहले से ही कस्टमर इतने सारे हैं, अगर मैंने कॉल भी ले लिया तो अब इसकी डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो कॉल बार बार बज रही थी, फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था, और बहुत देर तक आप किसी भी फ़ोन को यूँ ही इग्नोर नहीं कर सकते अगर वो बज रहा है। तो उन्होंने उठाया, पूछा कि हाँ बताइए, आपका नाम क्या है, आपको क्या चाहिए। और वहाँ से बहुत दबी हुई आवाज़ आ रही थी, इतनी दबी हुई कि वो साफ समझ में नहीं आ रही थी। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसके पीछे उस फोन कॉल पर कोई बहुत दबी हुई आवाज़ में बोल रहा था। वो बार बार कह रहा था कि मैम अपनी आवाज़ को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा ऊँचा बोलिए, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ आपका ऑर्डर। उसने एक हाथ अपना एक कान पर रखा और दूसरा फ़ोन पकड़ कर बोला कि मैम दोबारा बोलिए आपने क्या बोला है। और इस बार आवाज़ आई कि उसे एक प्लेट फ्राइड राइस चाहिए, चावल, और उसके साथ दो तीन चीज़ें और मांगी गई। ऑर्डर को नोट किया गया। ऑर्डर देने के लिए जैसे ही वो अपने रेस्टोरेंट से निकला, आफ्टर 30 मिनट यानी कि 30 मिनट का जो टाइम होता है, और कहा भी था कि 30 मिनट के अंदर मैं आपका खाना पहुँचाता हूँ। अब आपके पास भले ही बाइक हो सकती है, आप भले ही किसी और चीज़ से डिलीवरी दे रहे हो, लेकिन उस वक्त उस रेस्टोरेंट पर सिर्फ एक साइकिल थी। उस डिलीवरी बॉय ने अपनी वो साइकिल उठाई, वहाँ पर गया और उस एड्रेस पे जा कर के उसने घंटी बजाना शुरू किया कि आपका ऑर्डर है, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो। कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसने बेल बजाई।

मैं खाना लेके चला जाऊंगा वापस। बट उसको दिल में ये भी था कि खाना लेके जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ। एक मुसीबत ये भी तो है कि पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि खाना तो बन चुका है, अब ये मेरी सैलरी से ही कटेगा। तभी उसे किसी के चलने की आहट आती है और गेट अपनी थोड़ी सी आवाज से खुलता है, लेकिन थोड़ा ही खुलता है। वहां से कोई झांक रहा था जिसकी सिर्फ एक आंख नजर आ रही थी। उसके दिमाग में आया, बड़ा अजीब इंसान है यार, ये कैसा इंसान हो सकता है। उसने हाथ बाहर निकाला और कहा, ऑर्डर मुझे दो, पैसे ये लो और जाओ। उसने कहा, है एक तो 15 मिनट से खड़ा कर रखा है, ऊपर से तभी से बात करनी भी नहीं आती है, आज के बाद यहां से मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट वो कहते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ये जिंदगी है। वो ऑर्डर देता है और वापस आ जाता है। जब रेस्टोरेंट बंद करने के बाद चेक किया जाता है, मालिक बैठता है, पैसे चेक करता है और आकर चिल्लाने लग जाता है कि भाई देखो, तुमने तो नकली पैसे दिए हैं। इस बात से वो परेशान, कैसे कैसे हो सकता है, मैं भैया पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक नहीं आए, ऑल सडन कैसे। इस बात से वो बहुत परेशान था। बट मालिक ने कहा, नहीं, तुम लोगों में से ही किसी ने घपलेबाजी की है, किसी ने नकली पैसे दिए हैं और किसी ने पैसे चुराए हैं। उसका दिमाग खराब हो चुका था यार, एक तो ऐसा कस्टमर मिला, दूसरा से ये मैनेजर बौखलाया हुआ है, बेवजह नाम लगा रहा है। फिलहाल उसने किसी का नाम नहीं लिया था, 2 लोग थे, दोनों को टारगेट किया था। वो इंसान परेशान होकर घर वापस आ जाता है और इसी ख्यालों में रहता है कि पैसे कैसे नकली हो गए और वो कस्टमर कौन था। फिलहाल कहानी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा।
1: तो वो इंसान जो अभी तक परेशान था इस बात पर कि कस्टमर बड़ा अजीब है, अब वो इस बात से परेशान है कि यार बॉस भी बौखला गया है। वो कह रहा है कि पैसे नकली आए हैं, पैसे किसी ने चुराए हैं, मैं क्यों चुराऊंगा, पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूँ, जब आज तक घपलेबाजी नहीं की है तो अभी कौन सा भूत सवार है, और अगर चुराऊंगा भी तो नकली पैसे क्यों रखूंगा। यही सोचते सोचते सुबह हो चुकी थी। सुबह रेस्टोरेंट वापस से खुला और सुबह के वक्त इतनी भीड़ नहीं होती है रेस्टोरेंट्स में, मेनली प्राइम टाइम जो होता है वो रात का होता है, क्योंकि अक्सर लोग काम करने के बाद डिनर करने, शाम की चाय पीने, दोस्तों के साथ बैठने और हर तरह की चीज़ों में शाम के वक्त रेस्टोरेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ऑफ कोर्स शाम हुई, लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, टेबल्स भर चुकी थी और हर कोई कह रहा था पहले मेरा ऑर्डर ले लो, पहले मेरा ऑर्डर ले लो। अब वो सोच रहा था इसका ऑर्डर लूँ, उसका ऑर्डर लूँ, किस किस का ऑर्डर लूँ। वहाँ पर उसके साथ जो एक और इंसान काम करता था, आज उसका ऑफ था क्योंकि एक टेबल टर्न चलता था, आज काउंटर पे कोई और रहेगा, कल काउंटर पे कोई और रहेगा, और आज उसके काउंटर पे एक दूसरा शख्स खड़ा था। दोनों साथ में थे, अपने अपने ऑर्डर्स रिसीव कर रहे थे, रेस्टोरेंट सबके लिए सर्व कर रहा था। फिर से फोन रिंग करता है, वो इग्नोर करता है और सोचता है कि ये बगल वाला उठा ले यार, ये उठा लेगा ना तो इसको जाना पड़ेगा, मेरे को नहीं जाना पड़ेगा। बट इस बात को ना वो शायद बगल वाला ध्यान ही नहीं दे रहा था, या शायद वो भी सुनना नहीं चाह रहा था, उसने भी वो कॉल नहीं रिसीव की, लगातार फ़ोन बजता रहा और आफ्टर ऑल ना चाहते हुए भी उसी को वो फ़ोन उठाना पड़ा। और इस बार भी उस फ़ोन पर वही महिला थी जो कल वाली थी, फिर से वो धीमी आवाज़ में कुछ ऑर्डर कर रही थी और वो फिर चिल्ला रहा था, अरे मोहतरमा थोड़ा ऊंचा बोला करो यार, नहीं सुनाई पड़ता है। और मोहतरमा फिर से धीमा बोल रही थी। बड़े परेशान था वो, यार ये कैसा अजीब कस्टमर मेरे पल्ले पड़ गया है, इसको तो ऑर्डर देने का भी मन नहीं करता मेरा, बट फिर भी लेना तो पड़ेगा, कॉल तो उठ गई है। उसने लिखा और ऑर्डर सेम रिपीट था, जो कल का ऑर्डर था वही आज का ऑर्डर था। फिलहाल क्या कर सकते, कस्टमर की अपनी अपनी पसंद है। इस बात से तुरंत वो गया और उसने कहा कि ठीक है 30 मिनट के अंदर मैं आपका खाना पहुंचा कर आता हूँ, और इस बार गेट खोल दीजिएगा। 30 मिनट हुए, उसने साइकिल उठाई और वो जल्दी से भागता हुआ गया कि ये पकड़ो ऑर्डर, काम बहुत है तुम्हारे लिए, पूरा टाइम नहीं है मेरे पास। फिर 15 मिनट लगाए, चिल्ला रहा है बाहर खड़ा होकर, गेट खोलोगे या नहीं, मैं खाना यहीं छोड़ के जाऊँ, और अंदर से फिर कोई आवाज़ नहीं। फिर वो चिल्ला रहा है आपका खाना डिलीवर हो चुका है, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, मेरे पास और भी काम है, और भी कस्टमर्स हैं, रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है, बाहर आओ जल्दी आओ। और इस बार फिर से किसी ने देरी से गेट खोला, फिर से वही आँख और वही हाथ, वो इंसान बाहर नहीं आया, ना उस दिन ना आज। उसने फिर उसको एक जजमेंट की निगाहों से देखा कि क्या कस्टमर है यार, और ऐसा कह के उसने जल्दी से पैसे उसके हाथ से छीने, खाना डिलीवर किया और चला आया, काउंटर में आके पैसे रखे, और इसके बाद फिर से कस्टमर्स में लग गया। रेस्टोरेंट धीरे धीरे खाली हो चुका था, और इस बार जब मैनेजर ने दोबारा से सबके पैसे काउंट किए तो फिर से पैसों में कमी थी, और इस बार वो बौखलाता हुआ आया कि देखो तुम ही हो जो ये पैसों की घपलेबाजी कर रहा है, तुमने ही सारे बवाल किए अभी तक, तुम ही चुरा रहे हो पैसे। उसने फिर झुंझुलाकर कह ही दिया कि यार कल तो तुम किसी का नाम नहीं ले रहे थे, आज तुमने डायरेक्ट मेरा नाम लिया है, मैं क्यों करूँगा, पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अगर मुझे करना भी होगा तो मैं पैसे निकाल के नकली पैसे क्यों रखूँगा, खुद तो दिमाग लगाओ कि तुम्हारा दिमाग ज़मीन में चला गया है। उसने बात तो सही है, किसी को पैसे लेने होंगे तो नकली क्यों रखेगा, वो पूरे के पूरे ऐसे ही गायब ना कर दे। कस्टमर से परेशान था वो, उसने कहा देखो भैया हो सकता है तुम्हें किसी ने उल्लू बना दिया हो। उसने कहा ऐसे कैसे उल्लू बना दिया होगा, एक ट्रेनिंग मिलती है रेस्टोरेंट वालों को पैसे पहचानने की, नकली कौन से हैं और असली कौन से हैं, मैं हाथ लगाते ही पहचान सकता हूँ कि मैंने नकली लिए हैं कि मैंने असली लिए हैं, ये क्या बकवास है। उसने कहा नहीं कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो अजीब है, तुम्हें किसी कस्टमर ने ही बेवकूफ़ बनाया, शायद तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, याद करो ऐसा कुछ हुआ था क्या। उसे कुछ भी याद नहीं आया, फिर अचानक से उसके माइंड में क्लिक किया कि हाँ 2 रोज से एक कॉल आ रही है और दो रोज से ही पैसों की घपलेबाजी हो रही है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं स्कैम उसी से जुड़ा है। उसने अपने मैनेजर को बताया और मैनेजर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल आती है तो इस बार ऑर्डर दें तुम नहीं, मैं जाऊँगा। जहाँ तक वो अभी कह रहा था कि हे भगवान ये महिला कॉल ना करे, वहीं अब कह रहा था हे भगवान यही महिला कॉल करे, क्योंकि अब उसको अपनी इनोसेंट प्रूफ करनी थी। अगले रोज फिर शाम में कॉल आती है और इस बार वो बहुत एक्साइटेड होकर फ़ोन उठाता है कि हाँ अब तुम ही हो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार था। उसने कॉल उठाया, सेम ऑर्डर रिपीट किया गया, वही चावल वही चीज़ें वही सूप। उसने उस मैनेजर को बताया, मैनेजर दौड़ा दौड़ा आया कि ठीक है कोई बात नहीं मैं जाता हूँ, उसने कहा 30 मिनट के अंदर खाना आ रहा है। मैनेजर ने भी साइकिल उठाई और वो गया वहाँ पर जहाँ उस एड्रेस को बताया गया था। उसने एड्रेस चेक किया कि बढ़िया जगह आया हूँ, उसने कहा हाँ बढ़िया जगह आए हैं भाई, कोई ख़राब जगह तो है नहीं, एड्रेस भी सही है। अब वो मैनेजर भी खड़ा होकर बाहर चिल्ला रहा है कि हेलो मैम आपका ऑर्डर आ चुका है, प्लीज़ रिसीव कर लीजिए, मैं इस फलां रेस्टोरेंट से हूँ, आपने ये ऑर्डर किया था, प्लीज़ थोड़ा बाहर आ जाइए जल्दी ले लीजिए। वो भी खड़ा होकर 15 मिनट चिल्लाए जा रहा है। फिलहाल 15 मिनट बाद फिर से वो मोहतरमा बाहर निकलती हैं और कभी बाहर नहीं निकलती हैं, सिर्फ एक आंख और एक हाथ बाहर दिखाती है। उन्होंने फिर से वही किया और पैसे पकड़ाए, बट इस बार मैनेजर थोड़ा होश में था, उसने कहा पैसे तो पक्का चेक करके जाऊंगा, इसे कैसे नहीं मिलेगा। जब उसने पैसे लिए तो पता चला कि यार वो पैसे तो असली थे, नकली तो थे ही नहीं, तो पैसे नकली हो कहाँ से रहे। उसने अपनी जेब में डाला और वापस आ गया। वापस रेस्टोरेंट बंद किया गया, बिलिंग काउंटर से सारे पैसे निकाल के चेक किए गए और फिर से पैसे गायब थे। वो भड़कने ही वाला था कि इसको याद आया, अरे नहीं नहीं नहीं नहीं उसने कुछ भी नहीं किया, मेरे ही पॉकेट में बाकी के पैसे हैं, एक ही ऑर्डर के तो कम है ना। उसने पैसे निकाले और वो देख के हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये पैसे जो अभी तक असली थे ऑल सडन ये नकली कैसे हो गए, ये कागज़ के कैसे बन गए, वो भी ऐसे वैसे कागज़ के नहीं, ये वो पैसे हैं जो किसी के मरते टाइम चलाया जाता है, क्योंकि हांगकांग में और बाकी कुछ देशों में ऐसा माना जाता है कि जो इंसान मरता है उसके लिए नकली पैसे जला देने चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी उसकी जो रूह है जब वो दूसरी दुनिया में जाएगी तो इसी पैसों से खर्चा करेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, फिलहाल वो लोग पैसे जलाते हैं। उसने कहा मरे हुए लोगों के पैसे मेरे रेस्टोरेंट में आ कहाँ से रहे हैं, और ये जब मैंने खुद चेक किया था ये असली था, ये सडन से बदल कैसे गया, ये कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। और उसके दिमाग में ये तो नहीं आया कि ये कोई भूत प्रेत जिन्नात का काम होगा, उसके दिमाग में आया पक्का कोई बहुत शातिर स्कैमर है और जिसने मेरे साथ स्कैम किया है, रुको रुको इसको तो बताते हैं, 3 दिन का पैसा नहीं मिले मुझे अभी तक। उसने पुलिस को कॉल किया कि हेलो मैं इस फलां रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ, एक ऑर्डर था मैंने ऑर्डर दिया, उसने मुझे असली पैसे दिए, वो असली पैसे नकली में बदल गए। अब पुलिस वालों के दिमाग में भी आ ही रहा हुआ है ये कौन से नशे में बोल रहे हो तुम, असली पैसे दिए थे नकली में बदल गए। होता है ना, आप किसी से कहो यार अभी तक असली थे अचानक से बदल गए, आपकी मम्मी पूछ लेगी भांग का क्या होगा बच्चा, अचानक से कैसे बदल गए। यही हो भी रहा था, बट पुलिस वालों ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम जाते चेक करके आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और वो उस एड्रेस पे पहुंचते हैं। अब वो उस एड्रेस के बाहर खड़े होकर आवाज़ दे रहे हैं कि शायद शायद कोई गेट खोलेगा, बट अगेन जब रेस्टोरेंट वाला जाकर 15 मिनट चिल्ला रहा है कि गेट खोल दो मैं आ चुका हूँ खाना लेकर आ चुका हूँ, तब तो गेट खुला नहीं, पुलिस के आने पर कौन गेट खोलेगा। इसीलिए पुलिस वालों ने गेट तोड़ा और अंदर का जो नज़ारा था उसको देख कर उनकी भी रूह कांप गई। क्या देखा था उन्होंने बताते हैं लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पर। तो सुनते रहिए मेरे साथ ज्ञान असली लाइफ, मैं हूं आपकी आशुनती और आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा, अभी कॉल करें 7234020202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: सोनू निगम साहब की आवाज में आपने इस बेहतरीन से नगमे को एंजॉय किया। 9020 विल रिटर्न से अपना मुझे तू लगा। और आपने सुनी मेरी एक हॉरर स्टोरी। हॉरर से ज्यादा मिस्टीरियस थी, क्योंकि भैया खाना कैसे खा गए वो लोग, ये सवाल आज भी है। अगर आपके पास जवाब होना तो जरूर दीजिएगा। मैं भी तो देखो भाई, आप क्या सोचते हैं कि एक मरा हुआ इंसान खाना कैसे खा सकता है। एंड हमारे सर चैट बॉक्स में जुड़े हैं के गुप्ता जी, जो हमें सुन रहे हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, बिल्कुल मेरे बगल से लिख रहे हैं। प्रिया शिवनदी जी, सॉन्ग को काफ़ी सारी रेटिंग दी है और नमस्ते बोला है। नमस्ते, आपको कैसे हैं आप, वो भी दिल से थैंक यू सो मच, और आपका स्वागत करते हैं हम क्या नस्ली लाइफ में। एंड लिखा है कि कहानी तो नहीं सुन पाया, लेकिन आप जो भी स्टोरी सुनाते हो बहुत ही अच्छी होती है। क्या बात है, इस भरोसे के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी मज़ेदार थी। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा आज का शो, आज का ट्यूसडे स्पेशल। कल मुलाकात करते हैं आपसे हम मॉर्निंग वाले शो में, गुड मॉर्निंग गोडा में, सुनना मत भूलेगा। फिलहाल के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। अपनी आशुनती के साथ आपने एंजॉय किया एक प्यारी सी स्टोरी। फिलहाल अब चाहूंगी आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका तो लगना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश यही रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम ही दे दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी ललिता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललिता जी।
1: जी थैंक यू मैम।
0: जब कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवारजनों के मन में डर और सवाल होता है, खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से, जिससे लोग उलझ जाते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब भी देंगे। तो हमने बहुत सारे सवाल वैसे तो इकट्ठा कर लिए हैं, और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे भी, यानी कि हम उन सवालों को रखेंगे और उसके बाद में हम जवाब प्राप्त करेंगे अपनी ललिता जी से। तो ललिता जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है?
1: जी आकांक्षा जी, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर से बचाव में मदद करता है। यह कैंसर महिलाओं में होने वाली पहली गंभीर बीमारी जो स्तन कैंसर का रहा, उसके बाद अब ये पैर पसार रहा है सर्वाइकल कैंसर। इसीलिए सरकार ने HPV वैक्सीन को मुफ्त करा दिया है। वैसे तो पहले ये निजी अस्पतालों में लगाए जाते थे, लेकिन ये बहुत महंगे होते थे, पर ये अब सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि आम जनमानस तक इसे पहुंचाया जा सके। और अगर सही समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है।
0: अच्छा, तो ये बात है। अब एक सवाल और है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है?
1: जी आकांक्षा जी, बिल्कुल सुरक्षित है। यह दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगाने के बाद हाथ में हल्का दर्द, हल्की सूजन, बुखार, सिरदर्द, चक्कर आ सकते हैं, ये सामान्य बातें हैं, और आमतौर पर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं।
0: मतलब ये सारी जो भ्रांतियां हैं कि HPV का जो टीका है वो सुरक्षित नहीं है, ये केवल भ्रांतियां हैं।
1: जी, ये केवल अफवाहें हैं।
0: जी, अब आपसे एक और सवाल करूंगी मैं ललिता जी, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव भी होता है?
1: आकांक्षा जी, गंभीर दुष्प्रभाव तो दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें, और कोई चिंता हो तो आशा, ANM, CHO या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके बात कर लें।
0: अच्छा, अब एक और सवाल है ललिता जी आपसे, कि ये जो टीका है बच्चियों को ही क्यों लगाया जाता है?
1: जी, ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने।
0: जी,
1: क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण ना बन सके, ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए यह टीका लगाया जाता है।
0: काफी जरूरी है इसका मतलब।
1: जी,
0: अब बताइए कि क्या इससे भविष्य में, जो सबसे बड़ी अफवाह है हमारे समाज में देखी जाती है, कि भविष्य में माँ बनने पर कोई असर पड़ता है?
1: नहीं, HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। यह कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये खाली अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दें।
0: अब ये बताइए कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं?
1: हर बात सही नहीं होती।
0: जी,
1: कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें।
0: अब आखिरी सवाल आपसे मैं रखूंगी, टीका कब और कहाँ लगेगा?
1: इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललिता जी।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है, और हाँ, सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
0: पहले घंटे से शुरू होती है बच्चे के दिमाग और जीवन की मजबूत नींव। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जुड़ी है एक नन्ही सी जान से और उसकी जिंदगी से, यानी कि उसकी जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल, और इसके लिए आज हमने दोनों, यानी के सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नमस्कार भैया जी, और भाभी आपका भी स्वागत है।
4: नमस्ते आरजी
0: जी, स्वागत है आपका भाभी और भैया। तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
5: आप दोनों लोग हमें ना बुलाते तो भी हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती है, और इनके प्रमुख कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
4: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है तो अब सबसे बड़ा काम हो गया है, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
0: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि ये गोल्डन आवर और या ये सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
5: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने से सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
0: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
4: जी हाँ, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस चल रही है सही से या नहीं ये भी देखना, और सबसे जरूरी, जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चा का पहला टीका माना जाता है। ये बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।
5: और अच्छी बात ये है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत सरल हैं। सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
0: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है इन सभी से बचाव के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम यानी कि सेहत सही और लाभकारी में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया भैया दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चों को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही ज़रूरी हैं?
1: बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचने की बात नहीं है, यह बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत होने लगती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले ही बोल ना सकता लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज़ सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों की मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है।
0: वो क्या भाभी?
2: वो ये कि कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये बच्चे की पहली सुरक्षा कवच है।
0: तो साफ संदेश ये है आपका कि पहला पीला दूध फेंकना नहीं है, बच्चे को देना है।
2: जी बिल्कुल, और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है और बच्चा भी सीख रहा होता है, तो ऐसे में नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
1: सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
0: बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन भाभी, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
2: हाँ, नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग से सलाह न दे। शहद, घुट्टी, पानी या कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, न पानी, न शहद, न घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
0: और जब गर्मी है और गर्मी में बच्चे का गला सूखे या उसके उसको प्यास लगे तो गर्मी में भी पानी नहीं देना चाहिए।
1: पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दे। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हर रोना भूखा नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंडक, नींद या पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना चाहिए। सिर्फ सलाह देना काफी नहीं बल्कि काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
0: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और आखिर में इसकी जरूरत क्यों है?
1: त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधे लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कांगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। यह खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्म बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। ये केवल शरीर की गर्माहट नहीं है बल्कि ये भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
0: भैया, क्या पिता भी ऐसा कर सकता है?
1: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं, खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वह थकी हुई हो। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुले रहें, बच्चा दबे नहीं और वह आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है।
2: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है।
0: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
2: और सच्चाई कि पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
0: और अब दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
1: पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग सलाह न दे।
0: तीसरी गलतफहमी, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दें।
2: और सच्चाई ये है कि पहले सही स्तनपान की सहायता लें। माँ को दोष ना दें, स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें।
0: अब आते हैं चौथी गलतफहमी पर, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
2: बिल्कुल नहीं, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी, ये सब की भूमिका होती है।
0: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
1: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
2: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
0: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
1: ये याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
2: हर घर 5 संकल्प ले सकता है। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का दूध ही देंगे और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
1: 6वां संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
2: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चे को जीवन की सुरक्षित शुरुआत देते हैं।
0: बहुत स्पष्ट बात है कि बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
1: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता ले, ये सीखने की प्रक्रिया है।
2: माँ को ताना नहीं, सहारा चाहिए। बच्चे को घुट्टी नहीं, माँ का दूध चाहिए। परिवार को अफवाह नहीं, बल्कि सही जानकारी चाहिए।
0: साथियों, आज की 5 जरूरी बात याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें और उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथा, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है, जिसे कंगारू केयर विधि भी कहते हैं। पांचवा, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
2: और 6ठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार न करें।
0: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिल कर लेंगे सेहत की शपथ।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: पहला दूध पहला प्यार,
2: पहला घंटा जीवन का आधार,
0: माँ का साथ पिता का हाथ,
2: बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत,
0: सेहत सही लाभ कई।

0: निभाए।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो भाई, क्या हाल है आप सभी का? आप सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाएं ताकि हम अपना प्रोग्राम शुरू कर सकें, जिसका नाम है
2: सुन सहेली
3: विद आरजे समता एंड
4: आरजे अंशिका।
3: यस, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो और एक साथ एक ही फ्रेम में। आइए प्यार से क्या बोलना है,
2: शुभ दोपहरिया।
5: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और भाई मूड है जबरदस्त और मजेदार, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा याद करने वाले हैं जो बहुत मजेदार होता है।
3: हाँ, और वो याद करके ना मन में एक होती है गुदगुदी और सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अंशिका, आज हम लोग साथ में बैठे हुए थे, हम सब टीचर्स, तो एक टॉपिक पे बात निकली थी, उस टॉपिक को भी आप मुझे बस खाली याद दिलाना, ठीक है? वो टॉपिक भी हम बताएंगे, और मैं बता दे रही हूँ कि वो न्यू ईयर के कार्ड्स को लेकर के थी, ठीक है? बस इतना हिंट है ना, इतना हिंट मुझे दे देना।
4: बिल्कुल।
3: तो मैं बताऊंगी, क्योंकि आज है हमारा बचपन का दिन, यानी बचपन की प्यारी प्यारी बातें, सच्ची मुच्ची बातें, सपनों को साकार करने की हिम्मत, और अपनों से बेहद प्यार, अपनों से दूर जाने का डर, और जो हमारे दूर बैठे हैं उन्हें पास बुलाने की खुशी।
5: बिल्कुल। और भाई, दिन है जबरदस्त और हम दोनों ही हैं बहुत ही मस्त, और वो मस्त इसलिए हैं क्योंकि होता है ना कि जब धूल छट जाती है या बादल हट जाते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ, सुंदर और नीला
3: निर्मल सा हो जाता है,
5: दिखाई देता है। कुछ वैसा ही है, क्योंकि लाइफ होती है ना, उसमें धुंध हो जाती है कई बार, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप थोड़े से परेशान होते हो, लेकिन जब हम उस परेशानी से हट जाते हैं तो हमें सामने सब साफ साफ दिखने लगता है। और आज के दिन तो परेशानी की एंट्री हमने हमारे सुन सहेली में स्टॉप कर दी है, क्योंकि हम बच्चे बनने वाले हैं,
3: बिल्कुल
5: बचपन याद करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, नो रोना धोना, नो सैडनेस, कुछ भी नहीं। और आज तो सैड होना बनता भी नहीं, क्योंकि आज मैम बहुत अच्छी लग रही है।
3: थैंक यू सो मच। और इस अच्छे लगने के कारण एक अच्छे इंसान से मिलना है मेरा, मैं उसको रिवील करने जा रही हूँ कि एक अच्छा इंसान हमारी जिंदगी में जब हो जाता है तो हम अपने आप को खुशनुमा साबित करने लगते हैं, और वो खुशनुमा इंसान हमारे पास बैठा हुआ है, जो कि है हमारी आज अंशिका, जो कि हमें इधर काफी दिनों से मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे से हमें पुश करती हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करती हैं, और ये भी कहती हैं कि आपके साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, और वैसा हो भी रहा है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक दिल से अच्छी सी दुआ जब यूनिवर्स तक पहुंचती है, तो वही दुआ जो होती है वो आशीर्वाद बनकर उस इंसान पर बरसती है।
5: बिल्कुल।
3: तो यही प्यार, यही आशीर्वाद मेरे पे बरस रहा है, कुछ ऐसे खास मेरे अपनों के कारण से, और मैं यही चाहती हूँ कि बस यही दुआ प्यार मुझे मेरे अपनों से मिलता रहे, ताकि मेरी जिंदगी में अब कोई भी परेशानी ना हो।
5: बिल्कुल ना हो, और यही है दुआ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अभी मैंने बताया ना कि जब बहुत बादल होते हैं बिल्कुल काले काले, और उसके बाद जब आसमान साफ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह किसी ने लाइफ में बहुत कुछ देखा हो, अरे यार कहाँ तक कोई देखेगा। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद बाद में थोड़ी सी खुशियाँ हो।
3: हाँ।
5: और वो उसकी अपनी, और वो हर किसी को मिलनी चाहिए। और एक बात और है कि जब आप किसी के लिए कहते हैं ना कि खुशियाँ हो, आप किसी के लिए दुआ मांगते हो, तो वो दुआ उसे तो लगती ही है क्योंकि आपने उसके लिए खुशी के साथ मांगी है, लेकिन उससे भगवान खुश भी होता है क्योंकि आप किसी की खुशी मांग रहे हैं। हम कहते हैं ना जब भी भगवान के मंदिर में जाइए तो हमेशा किसी की खुशी मांगिए, अपनी मांगिए आप, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे पहले किसी और की अगर मांगेंगे ना तो आपकी झोली खुद ब खुद खुशियों से भरी रहेगी। ये स्वार्थ नहीं होता है, ये भगवान आपको देता है कि आपने किसी के लिए अच्छा सोचा तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा।
3: बिल्कुल।
5: उसी का उल्टा मान लो आप मंदिर गए और आपने किसी के लिए कुछ बुरा कह दिया, वहीं खड़े हो देख लेना, या तो निकलते टाइम कुछ हो जाएगा या कुछ ना कुछ उस पूरे दिन में आपके साथ बुरा होगा। इसलिए कभी किसी के लिए मंदिर में तो क्या, कहीं खड़े होकर के कुछ भी बुरा कहने से पहले दो बार सोच लेना कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपके साथ ही हो जाए। तो हमेशा अच्छा कहिए, और मैम के लिए तो हम अच्छा ही कहते हैं क्योंकि ये इतनी स्वीट सी हैं, प्यारी सी हैं, क्यूट सी हैं, बुरा कैसे कहूंगी, मतलब मैं नहीं कह सकती।
3: मतलब जो जब अपने इंसान कोई भी होता है, कोई भी हो, चाहे वो अपना घर का हो चाहे बाहर का हो, जब इंसान बहुत ज्यादा प्यार में होता है ना, जब हम चाहते हैं ना कि हम किसी को बहुत अच्छे से प्यार करें चाहें, और उनकी सारी बातें, उनकी खराब बातें भी हमें अच्छी लगने लगती हैं, या फिर उनकी छोटी सी भी एक केयर ना लगती है कि यार उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे ये बोला, तो पता है एक दिल ना एक अलग सा एक बाग बाग हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। हाँ, ओ माय गॉड,
5: कौन कह रहा है और कितना प्यारा लग रहा है सुनने में। मतलब तो ऐसे जैसे वो मौसम होता नहीं है जब फूल ऐसे गिरते हैं, वो वाला मुझे
3: वो झार होते हैं फूल, रात कली वाले, रात कली जो होती है ना फूल जो होती है, वो
5: कौन सा मौसम होता है उसमें फूल ही फूल होते हैं,
3: अरे सावन।
5: हाँ, तो वो आपकी मुंह से जैसे सावन की बारिश की जैसे लग रहा था।
3: अच्छा, थैंक यू सो मच,
5: कही कही और प्यारा लग रहा, अच्छा लग रहा
3: जी, थैंक यू। हो गया हो गया, आगे बढ़े।
5: हाँ, हम बढ़ते हैं बढ़ते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं,
3: कोई सवाल ही नहीं उठता है,
5: आगे बढ़ेंगे।
3: तो चलिए अब चलते हैं, अभी टाइम हो गया है पोयम का, और आज की बचपन की जो प्यारी सी पोयम है वो लेके आती हैं आपकी आज समता एंड रियल फैक्ट्स ऑफ लेकर के आती हैं आपकी आज अंशिका। तो टाइम हो चला है पोयम का, बस देर किस बात की, आइए पोयम की ओर चलते हैं,
5: चलते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो आज शुरू करते हैं कुछ ऐसे, आ गया है बरसात का मौसम, आ गया है बरसात का मौसम, दिल बड़ा ही बेकरार है, प्यार का नया एहसास अब दिलों में बरकरार है।
3: ओह माय गॉड,
5: मौसम खूबसूरत है क्योंकि हमारा दिल हमारे पास नहीं है, वो तो उन्हीं के पास है। चलिए हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ शरारतों को फिर से ढूंढ लाते हैं, और आज पोयम सुनते हैं आरजे समता से।
3: जी, थैंक यू सो मच,
5: यू वेलकम।
3: मौसम है आशिकाना, इतना ही आता है, लेकिन मुझे ये गाना बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है कि हाँ ये गाना सुनना चाहिए।
5: बिल्कुल सुनते हैं,
3: ठीक है। तो वो बचपन की शरारतें, आइए टॉपिक पे आ जाते हैं, वरना टॉपिक से जब हम बिखर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो सहेलियों की तो चिटचैट चलती रहेगी,
5: चलती रहेगी।
3: मतलब हम लोगों को चाहे आप 4 बजे तक बोल देंगे ना बोलने के, तो हम लोग बोलते ही रहेंगे
5: और आप ये सुनते रहेंगे,
3: ये सुनते रहेंगे,
5: तो ऐसा नहीं करते हैं, जो सुनाने आए वो सुनाते हैं।
3: जी, तो वो बचपन की शरारतें, ये आज की पोयम का शीर्षक है। तो क्या है शीर्षक की, कागज की वो कश्ती थी, पानी का किनारा था, शरारतों का वो दौर कितना प्यारा था। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि तुमने नाव बनाई है?
5: हाँ,
3: बनाई है, सच्ची वाली बनाई है ना, खेली हो नाव, जैसे पानी की बूंदे होती थी और बारिश होती थी, तो उसमें कागज की कश्ती बना करके, नाव बना करके हम लोग अपने घरों में, मतलब जैसे होता था ना, ऐसे पानी बरसता था छत पे, नहीं हमारे तो घर में आगे आंगन में ही, तो हम लोग क्या करते थे पता है, बचपन की शरारतें, जैसे याद आ गई कि जो नाली होती है ना ऊपर से वो लोहे की वो लगी रहती है जाली, तो हम लोग क्या करते थे शरारत में कि वो जाली बंद कर देते थे।
5: अरे वाह,
3: अच्छा, हम लोग का घर छत पे है, मतलब ऊपर है, तो नीचे क्या होता था कि एक ही बड़ी सी नाली हुआ करती थी कि पूरे छत का पानी वो एक ही से जाता था।
5: जी जी।
3: तो हम लोग उसको बंद, एक ही मेन वो था, मतलब जैसे कहते हैं निकास, वो उसको हम बंद कर देते थे किसी कपड़े से, पोछे से, कुछ
5: जी
3: भी
5: जी जी।
3: अच्छा, हम तीनों लोग, मतलब भाई बहन हम और हमारे कजिन्स जो नीचे रहती थी, वो लोग ऊपर आती, छोटे छोटे थे, अब हम लोग क्या करते थे कि वो पूरा आंगन हमारा पहले अभी पैक्ड हो गया है, पर पूरा ये खुला होता था और थोड़ी ढलान होती थी उसमें, तो जब हम लोग उस नाली को बंद कर देते थे तो क्या होता था कि उसमें पानी मतलब पैर से 3-4 फुट तक वो पानी भर जाता था उसमें।
5: ओह माय गॉड,
3: है ना। और मम्मी अंदर कमरे में, हालांकि हम लोग उसके बाद तो जो हम लोग की धुलाई होती थी, लेकिन मजा भी बहुत आता था। तो हम लोग पहले मम्मी को बहुत बहला फुसला के परमिशन ले लेते थे। तो मेरी दादी भी कहती थी, अरे करने दो ना, बच्चे ही तो हैं, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो मम्मी और दादी को हम लोग मतलब पटिया लेते थे कि मम्मी को अभी बातों में फंसा के रखना। चाची को भी कहते थे कि आप लोग बैठो आराम से, आंटी को आप लोग बातें करो और हम लोग यहाँ जा रहे हैं मस्ती करने। बस जैसे बारिश शुरू हुई नाली को बंद कर दिया। उसके बाद में क्या होता था कि हम लोगों ने वहीं पर तैरना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी भर जाता था पूरे आंगन में। वहीं तैरना, वहीं बारिश हो रही है, वहीं हम लोगों ने डेक लगा देते थे क्योंकि सबसे बड़े हम थे। तो ये मस्ती की जो प्लानिंग होती थी शैतानी की, वो मैं ही करती थी।
5: आप
3: वो प्लानर हम ही होते थे। मतलब तुमको सुन के लग रहा होगा ना अभी की मतलब ये कैसे, लेकिन मैं ही प्लानर होती थी और मार से बच हम जाते थे, बाकी सब मार खाते थे।
5: वाह,
3: ये जो बिग बॉस होता था ये बच जाता था।
5: मतलब तैयारी भी खुद,
3: तैयारी भी हम ही करते थे कि
5: बचाओ,
3: हाँ कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, पर मैं बच जाती थी, बाकी सब मार खाते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि हम लोग कागज की नाव बनाते थे, ये वो सब कुछ उसी में होता था। और फिर हम लोग क्या करते थे कि एक बहुत तेजी से गाना चला देते थे, और कौन सा, चक धुम धुम। एक कौन सा गाना था कि कोई लड़की है जब वो हंसती है,
5: और
3: सब लोग, बारिश ऊपर से होती थी, हम लोग सब लोग वहाँ पर डांस करते थे। मतलब वो दिन, मुझे वो सीन सामने आ रहा है अंशिका, कि वो सीन, मतलब गॉड से कि वो सीन वापस आ जाए लाइफ में। लेकिन इतना ज्यादा मजा आता था, इतना ज्यादा मजा आता था वो बारिश के दिन, और वो नाव की जो कागज की कश्ती से मुझे अभी याद आ गई वो सारी बातें। और उसके बाद जब हम लोग नाली खोलते थे ना, कपड़ा हटाते थे, तुम्हें पता है क्या होता,
5: क्या
3: था?
5: क्या होता था?
3: इतनी भयंकर से आवाज से होकर के पानी क्रॉस होता था कि नीचे अगर हमारे बाबूजी आराम कर रहे होते ना दिन में, तो वो उठ के बाहर आते थे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, नाली फट गई, क्या नाली फट गई। फिर मेरी दादी कहती थी, नाली नहीं फटी है, इन बच्चों ने कुछ किया है ऊपर,
5: उधम कर रहे होंगे ऊपर।
3: हाँ, उधम कर रहे होंगे। और पूरा घर हम लोग सर पे उठा लेते थे जब बारिश होती थी।
5: My
3: तो
5: God.
3: वो इतनी तेज से आवाज हो करके बम से पूरा, जैसे जैसे लगता था नाली फट रही है, वो पानी क्योंकि ज्यादा हो जाता था और नाली से जब उसका निकास होता था तो आवाज करके निकलता था, और फिर पूरा नीचे घर पानी पानी पानी। फिर मार खाना तो लाजिम,
5: मतलब वो तो रिवॉर्ड होता था भाई,
3: मार खाना लाजिम। चाची अपने बच्चों को मारे, मम्मी हम लोगों को मारे, तो
5: बचपन की मस्ती।
3: तो लेकिन उतनी मस्ती के बाद में अगर थोड़ी सी मार पड़ जाती थी तो वो हम लोग खा लेते थे।
5: वो नहीं, वो हाँ। जैसे आप खाते हो ना दाल चावल सब्जी के साथ में अचार,
3: अचार
5: तो वो वाली फीलिंग,
3: वो बोनस होता था अचार।
5: हाँ, कि चलो कोई बात नहीं, दाल चावल तो खा लिया, अब अचार मिल रहा है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर।
3: हाँ, वो बोनस होता था अचार, बट बहुत ज्यादा मजा आता था। तो अच्छा लगा तुम्हें सुनकर,
5: बहुत अच्छा लगा। और ये भी पता चला कि आप प्लानिंग भी करते थे शरारत।
3: मैं गुड प्लानर हूँ ये बता दूँ,
5: गुड
3: प्लानर हूँ। और मुझे पता है कि अगर मैं प्लानिंग अभी फिर से शुरू कर दूँ ना, तो हमारे घर में रोज मस्ती कुछ ना कुछ हो। ये तो अभी होता है, चलो ठीक है यार बड़े हो गए अब नहीं करना है, बट अगर ये चीजें प्लानिंग अगर हम लोग करते रहे ना, तो आज भी वही वाला माहौल बन सकता है। ये तो हम अपने घर के बच्चों को बिल्कुल इस समय वो टाइट बना के रखते हैं, वरना रोज ऐसी मस्ती हो। तो कहते हैं ना, आखिर दिल तो
5: बच्चा है जी,
3: बच्चा है जी। तो आइए चलते हैं फिर से अपनी स्टोरी की ओर। शरारतों का वो दौर कितना प्यारा था, न सुबह की फिक्र थी न शाम का ठिकाना, बस हर वक्त सूझता था कोई नया बहाना, बिना बात के हंसना, बात बात पर रूठना, मम्मी को सताने का कोई मौका न छूटना, गुल्लक से वो चुपके से सिक्के चुराना, और पकड़े जाने पर मासूम सा मुंह बनाना, दोपहर की धूप में छुपकर घर से भागना, एग्जैक्टली हम लोग करते थे। दोस्तों के साथ मिलकर आम के पेड़ को ताकना, पत्थर मारकर वो कच्चे आम गिराना, फिर मालिक को देखकर सरपट भाग जाना, दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाना, तकिए की लड़ाई में सारा रुई उड़ाना, ओ माई गॉड, कई तकिए फाड़े हम लोगों ने, वो घुटनों के छिलकों पर रो रो कर चिल्लाना, पर पापा के आते ही एकदम संभल जाना, दौड़ती भागती जिंदगी में वो वक्त कहीं खो गया, ना जाने क्यों आज इंसान इतना बड़ा हो गया, लाख कीमती हैं ये आज के ऐशो आराम, पर उस शरारत की कीमत लगती है तमाम।
5: माय गॉड, मतलब बहुत याद दिला दिया। और क्या याद दिला दिया कि वाकई में, मतलब वो आम तोड़ने को मैं क्या कहूँ कि मैंने मैम को बताया हुआ है कि आम और अमरूद तोड़ने के चक्कर में मैं कितना गिरती थी और कितना मैं मेरे नाना से डांट खाती थी। मतलब वैसे तो मैं घर में इकलौती हूँ, तो मुझे बिल्कुल डांट नहीं पड़ती थी, नाना मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब बात आती थी अमरूद तोड़ने की या कुछ ऐसा करने की तो वो बहुत डांटते थे कि तुम लोग चढ़ जाती हो, मान लो गिर जाओगी, किसी दिन ज्यादा लग जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। तो हम लोग कहते थे अरे लगेगी तो देख लेंगे ना, देखा जाएगा, जब चोट लगेगी तब देखा जाएगा। और बहुत मजे करते थे, मतलब एक लेवल अप मस्ती करते थे कि वहीं पे खाने लगते थे, मतलब उसको ऐसे ही फोड़ के खाने लगते थे। ना ये होता था कि अरे साफ करो, ना ये होता था कि चक्कू से काटो, कुछ नहीं होता था। ये होता था पेट में वो जानी चाहिए। और बताए दिवाली में जैसे जो मिट्टी के खिलौने आते थे पहले मैम, चूल्हा वगैरह, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग उसको सेव करके पन्नी में भर के रखते थे। और फिर जब जैसे बारिश होती थी तो हम लोग जब किचन सेट में वो खेलते थे, घर घर बहुत खेलते थे किचन सेट के साथ।
3: किसी बच्चे ने ऐसा नहीं होगा जो नहीं खेला होगा।
5: तो हम लोग सच में पकौड़ी उसमें बनाते थे, उसमें तेल भर के, और उसमें बनाते थे और खाते थे। और बहुत छोटी छोटी बनती थी, मतलब वो बचपन का था, लेकिन 7-8 बन जाती थी। और फ्रेंड्स में एक ही एक मिलती थी, लेकिन बहुत मजा आता था। वो खिलौने की थाली होती थी, अरे मतलब लगता था यार पूरा दिन ऐसे ही बीत जाए तो बहुत अच्छा है।
3: बिल्कुल।
5: और मेरे यहाँ तो नाना के जब हम लोग घर जाते थे तो छत पे सीढ़ी नहीं थी चढ़ने के लिए, दरवाजे से चढ़ते थे हम लोग। हाँ, वो बिल्कुल कमरे के बिल्कुल
3: बगल से लग करके
5: दरवाजा था, और थोड़ा पुराने टाइम का दरवाजा था, तो उसमें निकली थोड़ा जगह स्पेस निकली हुई थी, तो वो आराम से आप छत पे चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हम लोगों को डांट जरूर पड़ती थी कि दरवाजे से चढ़ रहे हो, पैर फिसल जाए, अभी कुछ हो जाए, लेकिन तब वो नहीं होता था। और हम लोग पास करते थे, पता है 5-6 बच्चे होते थे और हम लोग पास करते थे, तुम पन्नी लेके चढ़ जाओ, तुम ये लेके चढ़ जाओ, हम लोग ये लेके चढ़ जाते हैं। और फिर पूरा दिन मस्ती होती थी, बहुत मजा आता था। टेंट लगाना, हम लोगों ने तो टेंट भी बचपन में लगाए हैं। Oh my God.
3: तो चले अंशिका,
5: क्या याद आ जाता है, यही मन करता है कि फिर से अगर 20 साल
3: सच्ची
5: हम
3: में
5: पीछे जा
3: पीछे बैक हो सकते थे तो
5: बहुत अच्छा होता। लेकिन फिर हम आपके साथ कैसे बैठे होते।
3: हाँ, ये भी बात सही है,
5: ये भी सही है,
3: ये भी।
5: तो फिलहाल आप भी अपने बचपन की कुछ मीठी मीठी यादों को याद करिए, लेकिन सब याद करने से काम नहीं चलेगा। माना कि बारिश है और आपको भुट्टे खाने भी होंगे, लेकिन भुट्टे खाते हुए अपनी उंगलियों को दीजिए थोड़ी सी तकलीफ और बढ़िया से अपनी बचपन की कुछ यादों को टाइप करिए, चैट बॉक्स में भेजिए हमारे लिसनर्स, क्योंकि हम पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि आपने अपने बचपन में क्या क्या शरारतें किए। और शरारतें करना चाहिए, क्योंकि शरारत जो करते हैं ना, उनके पास ऐसी ढेर सारी यादें होती हैं अपनी शरारतों को बताने।
3: एग्जैक्टली।
5: तो हमारे पास
3: बहुत सारी है, बहुत, मेरे पास तो बहुत सारी है, उन्होंने क्योंकि बहुत मस्ती करी है बचपन में,
5: बहुत ज्यादा।
3: तो चले अंशिका, आप ब्रेक का टाइम ले लेते हैं, बहुत ज्यादा वाली बातें हम लोगों ने कर ली है। अब ब्रेक का टाइम है और लिसनर्स को सॉन्ग सुनाने का टाइम है। हम आते हैं, बस हम यू गए यू आए, आइए सुनते हैं इस पैर से गाने।
4: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है?

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

0: गा साथिया, बिल्कुल तेरे मेरे प्यार में कितना दम है। और भाई बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और बहुत ही प्यारी हमारी दिव्या भारती जी और गोविंदा जी की जोड़ी। तो आप सभी को कुछ याद आया इस मूवी से? भाई इतनी प्यारी मूवी और मुझे लगता है कि सभी ने कम से कम 2-3 बार या उससे ज़्यादा बार तो देखा ही होगा। तो आज सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे होने वाले हैं क्योंकि मूड बहुत अच्छा है और मूड के साथ हमारा दिन भी बहुत अच्छा है, जो कि है ट्यूसडे हमारे दोस्तों के लिए, हमारे नन्हे मुन्ने छोटे से प्यारे से दोस्तों के लिए। उनकी बातें होंगी, कुछ उनकी केयर को लेकर बात होगी और बहुत सारी और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले पहले पहले आप सभी से कहना चाहेंगे, फटाफट से आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी बातें करिए। तो चलिए बताते हैं कि आज हमारे पास आपके लिए क्या है। तो आज जो है, जैसे कि हम बात करते हैं जब बच्चों की, तो भाई बच्चों के साथ आती है एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोचेंगे कि बचपन में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन बचपन में भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि कहीं ना कहीं होती है हमारी पढ़ाई। पढ़ाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर बचपन में किसी की नींव कमज़ोर हो जाती है पढ़ाई में, तो फिर उसे आगे चल करके प्रॉब्लम होती है। इसलिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपनी मस्ती में और बाकी चीज़ों पर फोकस करते हैं, उतना ही फोकस अपनी पढ़ाई पर भी करना चाहिए। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, उन्हें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी मस्ती और अपनी पढ़ाई दोनों के बीच बैलेंस बनाते हैं ना, बात तभी निकल करके आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे मेरा बच्चा बहुत शरारती है लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है, पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, तो सही लगता है। लेकिन अगर बच्चे सिर्फ शरारत में हो और बिल्कुल पढ़ाई में ना हो, तो अच्छा नहीं लगता।
1: मेरी तरह?
0: आपकी तरह?
1: मेरी तरह कि मैं ना पढ़ाई में तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ और मैं शरारती हूँ।
0: ये कब हुआ? ऐसा कब हुआ?
1: ये हो गया था आज से 25 साल पहले।
0: ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो आप यहाँ होती, बताइए।
1: हाँ, ये भी बात सही कह रही हो।
0: नहीं, मैं पढ़ाई टीचर है मैम।
1: नहीं मैम, नहीं मैं बहुत अच्छी मैं अपनी मैं मतलब मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी रही है।
0: फिर?
1: और मैं बताऊं कि मैं हमेशा से मतलब गॉड की, मेरी ईश्वर की मेरी ऊपर इतनी अच्छी असीम अनुकंपा है कि मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ।
0: वाह, ये तो अच्छी बात है।
1: समझ में आया?
0: यस।
1: मतलब क्लास LKG टू 12th एंड BA एंड BCom या BSc जो भी मैंने किया, मैं कभी भी मैं सेकंड में क्लास में नहीं बैठी, मतलब मैं फेल नहीं हुई।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है और कभी होना भी नहीं चाहिए। और अगर इन केस बच्चों के साथ
1: के मामलों में फेल हुई, लेकिन
0: ऐसा कुछ नहीं है।
1: ऐसा नहीं है ना?
0: ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन जो कि मैम ने ये बात छेड़ ही दी है, तो मैं बता देती हूँ आपको आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि मुझे सडन याद आ गया कि सफर में गलत हम सफर मिल जाए और आप राह भटक जाए उसकी वजह से, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ढूंढने से सही मंजिल और सही हम सफर मिल जाता है। लेकिन गलत हम सफर मिलने का मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी या कोई गलती है। आपका हारना उस गलत इंसान की वजह से, आपकी वजह से नहीं। इसलिए न रिश्तों में कभी हारे और पढ़ाई में तो अगर फेल भी हो जाते हैं ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई पेपर डिसाइड नहीं करता कि आप अपनी लाइफ में क्या बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी पढ़ाई को बिल्कुल ही निगलेक्ट करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे कुछ होते हैं ना, वो इतने मस्तीखोर होते हैं कि उनको पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं होती और वो पढ़ाई पे अपने ध्यान नहीं देते। लेकिन कई बार हम बच्चों को क्या करते हैं कि अरे तुम्हारी तो आदत है ना, तुम तो ऐसे ही हो। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है। लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि सीखने में प्रॉब्लम।
1: ओके।
0: सीखने में प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। लर्निंग डिसऑर्डर बच्चे को 5 साल के बच्चों से लेकर के और बड़े होने तक उन्हें किसी भी एज में हो सकता है। बड़े होने तक का मतलब है कि 20 जब वो क्रॉस कर जाएंगे फिर वो रिलैक्स है, लेकिन जब तक वो 20 जैसे 5 to 20 में है, तब तक ये कभी भी हो सकता है।
1: ओके।
0: जिन भी बच्चों को लर्निंग डिसऑर्डर होता है, ये जानने के कुछ तरीके होते हैं कि उन्हें लर्निंग डिसऑर्डर है या नहीं है। तो आप कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले जानने का तरीका है ये है कि बच्चे जब बोलना सीखते हैं, तो शुरुआत में सभी तुतलाते हैं।
1: हाँ।
0: मतलब छोटे बच्चे तुतलाते हैं नॉर्मली, हम लोगों ने भी बचपन में मतलब तुतलाया है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है इन द सेंस कि बच्चा अगर कोई शब्द बोल रहा है, कोई वाक्य बोल रहा है, और वो 8 साल का हो गया है, 9 साल का, लेकिन वो तुतलाता ही है, वो साफ शब्दों को नहीं बोल पाता है, तो इट मींस कि बच्चे में लर्निंग डिसऑर्डर है.
1: Okay.
0: कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों को साफ बाहर नहीं निकाल पा रहा है. और उस पर उसे टोकना चाहिए. जैसे जब कोई कभी बनावटी बोलता है, मतलब कभी भी मस्ती में जब मैं तुतलाती हूँ तो पापा मेरे मुझे टोकते हैं कि ये तुम्हारी उम्र अब तुतलाने की रह गई है, और ऐसे बोलोगी तो ऐसे ही हैबिट पड़ जाएगी. मेरे यहाँ दीदी की बेटी है मेरी, वो अभी 4 साल की है मोस्ट, और जब आती है कभी तो मौसी मौसी मतलब मस्ती में बोलती है, मोची मोची ऐसे करके तुतलाती है. तो हम लोग उसको बहुत टोकते हैं कि ये गलत आदत
1: कहीं आदत में. हाँ. मतलब ऐसा हो जाता है ना कि कोई बच्चे ना शरारत में भी बोलते हैं और फिर वो उसको आदत में ले लेते हैं बच्चे. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लेकिन पता है अंशिका पेरेंट्स को पसंद भी आता है फिर.
0: हाँ,
1: क्योंकि वो उनकी अभी छोटी उम्र होती है
0: तो
1: उन्हें बहुत अच्छा लगता है. लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि वही वो उनका शरारत जो होती है वो हैबिट हो जाती है.
0: हैबिट हो जाती है, इसलिए हम लोग उसको बहुत डांटते हैं कि मस्ती में बोल रही हो एक बार बोलो, ये बार बार नहीं, आराम से साफ शब्दों में बोलो. और अगर बच्चा कोई साफ शब्द नहीं बोल पाता, जैसे मान लीजिए आ बोल रहा है या छोटा आ बोल रहा है या पापा बोल रहा है, तो बहुत बच्चों की आदत है पापा ऐसे फंसते हैं. तो आप उनको बार बार उस चीज को स्पीक कराइए, 5 बार 6 बार बोलने के बाद वो साफ बोलने लगेंगे.
1: बिल्कुल.
0: कभी बच्चों की इस हैबिट को इग्नोर मत करिए, क्योंकि अगर ये आदत बन गई तो फिर कभी नहीं जाएगी. दूसरी बात आती है कि बच्चे में लर्निंग डिसऑर्डर तब होता है जब वो चाहकर भी पढ़ नहीं पाता है. मान लीजिए 6 साल 7 साल का आपका बच्चा है, आप उसको सारी सुविधाएं दे रहे हो, आप ट्यूशन लगवा रहे हो, आप 2 घंटे खुद बैठ के पढ़ा रहे हो, बच्चा पढ़ भी रहा है, लेकिन उसे वो उसके माइंड में नहीं जा रहा है, उसे याद नहीं रह रहा है, वो भूल जा रहा है. इन शॉर्ट वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअसली पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इट मींस लर्निंग डिसऑर्डर है. उसमें आपको ये समझना होगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पा रहा है. तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हम गुस्से से काम करें. ज्यादातर माँ बाप को क्या लगता है कि बच्चा छोटा है, शरारती है, अपनी शरारत के आगे वो पढ़ना नहीं चाहता. बट ऐसा नहीं है. लर्निंग डिसऑर्डर ठीक भी हो सकता है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए पेशेंस की जरूरत पड़ती है. ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए. बहुत ज्यादा वो हो जाना कि अरे नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है ना. एक चीज और बच्चों के साथ की जाती है, जैसे कई बार जब हमारा ईगो हर्ट होता है तो हम उस काम के पीछे पड़ जाते हैं. जैसे कहने का सेंस ये है कि अगर मम्मी गुस्सा होती हैं और मुझसे कहती हैं कि ये तुम नहीं कर पाओगी, तुम कर ही नहीं पाओगी, तुम है ही नहीं, तुम्हारे अंदर कैलिबर ही नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी, छोड़ दो, हटाओ, रहने दो, हम करेंगे, तो मुझे जब गुस्सा चढ़ जाती है ना कि इन्होंने मुझे कैसे कहा.
1: हाँ.
0: अब तो मैं ही इसको ठीक करके दिखाऊंगी. तो वो काम हम कर लेते हैं. इसलिए अगर अपने ईगो को भी आप कभी लेते हो ना अपने ऊपर, तो पॉजिटिव साइड
1: पॉजिटिव
0: कि मुझे कहा कैसे कि मैं ये काम नहीं कर सकता.
1: तो सेम अंशिका इस बार मेरे साथ यही हुआ है कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम नहीं जा पाओगी. तो मैंने वो कर दिखाया, मतलब मुझे लगा कि मतलब अभी 50% कर दिखाया है, 50% अभी करना बाकी है,
0: वो 100 हो जाएगा.
1: तो 100 हो जाएगा. एंड आई होप सो कि हाँ हम 100% ये इस काम में हमें कामयाबी मिलेगी.
0: बिल्कुल मिलेगी. इसलिए जब
1: भी मेरे ईगो को हर्ट किया गया था.
0: हाँ. तो जब भी अपने ईगो को हथियार बनाइए तो हमेशा सही चीज के लिए
1: बनाइए.
0: और जब जिस दिन आपने अपने ईगो पे लिया ना कि मुझे कहा कैसे कि तुम अच्छे नंबर से नहीं पास हो सकते हो, अब की तुम देखो.
1: हाँ.
0: अब की तो हम 15-16 है, अब की तो हम 80 लाएंगे, चलो देखते हैं.
1: सही.
0: तो जब ये एक एटीट्यूड अंदर आ जाएगा ना, तो वो फिर काम होके रहेगा. कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, और कोई आपके ऊपर क्लिक करे तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए. यार कहने दो, यार कह दिया होगा, ये नहीं होना चाहिए. फिर चाहे बात कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो,
1: बिल्कुल
0: अपने ऊपर लीजिए और उसको करके दिखाइए. लेकिन इसके साथ पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा लाइटली हैंडल करें. क्योंकि उसको देखिए, लर्निंग डिसऑर्डर क्या है कि एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें इंसान चाहता है कि वो पढ़े, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन इस तरह की हो जाती है कि वो उस चीज को नहीं ज्यादा समय तक याद रख पाता है. तो उसके लिए ठीक करते हैं, और ठीक करने की जिम्मेदारी किसी को देते हैं?
1: मुझे. क्योंकि मैं ठीक बहुत अच्छे से,
0: मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम बता सकती हूँ, मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ. ठीक करने का डिपार्टमेंट हमारी सासू माँ का है. तो माँ जी बताएं.
1: तो सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट है वो है इसकी जल्दी पहचान कर लेनी चाहिए, जिसमें जितनी कम उम्र में ये अगर प्रॉब्लम का पता चल रहा है तो उसका सलूशन उतना ही आसान तरीके से और बेहतर होगा. इसका मतलब है कि अगर आपने, आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम अगर बचपन से ही है, सलूशन भी हम बचपन से ही अगर करना शुरू कर देते हैं तो प्रॉब्लम आगे जा करके वो और बढ़ नहीं जाती है. ठीक है
0: जी मैम.
1: सेकेंड पॉइंट इज की स्पेशल एजुकेशन. स्पेशल एजुकेशन में क्या है कि इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो एजुकेटेड जो कि पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेटेड जो कि है ना वो एटमॉस्फेयर भी ढूंढते हैं कि वहाँ पर जाकर के उन बच्चों की जहाँ पर खेल खेल में उनकी देखभाल हो या फिर चित्रों के माध्यम से जब हम उसको कहते हैं ना कि विजुअल करके या गानों के जरिए या अलग तरीके से वो उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं उन वर्ड्स को दोबारा दोबारा बुलाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो अटक रहे हैं. ठीक है. एंड उसके बाद आती है कि मल्टी सेंसरी लर्निंग. उसमें क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ बुक्स के बजाय उन्हें छूकर और देखकर सुनकर सीखने की आदत डालें जैसे मिट्टी के अक्षर हो गया फ्लैश कार्ड हो गया. तो इससे क्या होता है कि उन बच्चों को पता चलता है कि हाँ ये चीज़ ये है. जैसे मिट्टी जैसे कहा गया कि मिट्टी से अक्षर बनाना. मिट्टी से अक्षर बनाने का इसका मतलब हुआ कि आजकल डिजिटल आपको पता है कि पूरा ज़माना हो गया है
0: जी माँ.
1: लेकिन इन बच्चों को जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है उन्हें कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको कैरोन्स बोलते हैं जो उनसे उन बच्चों को दीजिए और उन कैरोन्स से जा करके वो उनसे अक्षर बनाएं बड़ा छोटी ई या 1 2 3 ए बी सी. तो उनको वो लर्निंग पावर खुद से उनमें थोड़ी सी इंक्रीज होती है.
0: बिल्कुल
1: ये पॉइंट है. सेकेंडली है कि आप एक्यूपेशन थेरेपी कर सकते हैं जिसको ओटी बोला जाता है. अगर बच्चे को लिखने या पेंसिल पकड़ने में दिक्कत है तो ये थेरेपी उनके हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है. ठीक है. लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप उनकी आप अगर इन बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो आप उनकी तारीफ करें आप उनका हौसला अफजाई करें. उसमें क्या होता है कि इन बच्चों को डांटने के बजाय उनके छोटे छोटे प्रयासों की तारीफ करें क्योंकि बार बार अगर वो असफल हो रहे हैं तो उनसे उसका विश्वास जो है आत्मविश्वास टूट जाता है. तो कभी भी ये काम ना करें. आप उनको प्रोत्साहित करें आप उनको पुश करें आप उनकी हौसला अफजाई करें ताकि मतलब एक कदम भी अगर उसने अच्छा बढ़ाया है तो आप उसको चार कदम के लिए बोलें अरे वाह बेटा बहुत अच्छा आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं और आपसे ही ये होगा. तो ऐसा करने से ना बच्चे आगे बढ़ते हैं और उन्हें खुशी मिलती है.
0: खुशी मिलती है और खुशी मिलनी भी चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि नन्हे मुन्ने प्यारे से जो फूल होते हैं उन्हें हमेशा खुशी का एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए. तो चलिए खुश खुश माहौल के साथ हम भी बहुत खुश हैं और थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो और खुश हो जाएंगे.
1: बारिश का मौसम तो नहीं लग रहा है अंशिका बाहर में भी गई थी और हल्की सी धूप आ गई है. हवाएं बहुत चल रही हैं बट अभी बिल्कुल भी वो वाला माहौल नहीं है. कभी धूप आ रही है तो कभी छांव आ रही है लेकिन आई होप सो मुझे लग रहा है कि शाम तक बारिश का मौसम बनाएगा.
0: तो चलिए चलते हैं बारिश के मौसम को याद करते हैं और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं एंजॉय करते हैं. बस यू गए यू आए स्टेडियम.

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता और साथ में आरजे आरजे
5: अंशिका।
4: हम लोग अब ऐसे बोलेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे समता
5: और मैं हूँ आरजे अंशिका
4: जी। तो हम दोनों लोग वेलकम करते हैं फिर से, क्योंकि अब जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक है, क्योंकि हर घर में हर किसी को लगता है कि हम लोग कुछ ना कुछ पेट्स रखें। तो मुझे पेट्स में पता है क्या पसंद है?
5: क्या मैम?
4: मुझे पेट्स में ना वो रैबिट्स पसंद है, जो छोटे छोटे रैबिट्स होते हैं ना, वो मुझे पसंद है। मुझे डॉगी नहीं पसंद है, मतलब हाँ रखना चाहिए बट मुझे थोड़ा सा ना वो डर लगता है उनसे। और या तो मुझे फिर वो लॉयन के छोटे छोटे बच्चे पसंद है।
5: लॉयन के छोटे छोटे
4: वो मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब या तो फिर वो रैबिट्स या फिर वो लॉयन। बस शेरों की पसंद है,
5: शेरों की पसंद है, मतलब शेरनी की पसंद,
4: शेरनी
5: है
4: की पसंद है।
5: शेर के बच्चे ही पसंद आ सकते हैं,
4: कुत्ते थोड़े पालेगी वो।
5: बिल्कुल नहीं नहीं, आप कुत्ते नहीं पाल सकती है या? नो नो नॉट सुटेबल।
4: कुत्तों को पालना बंद कर दिया आप मैंने।
5: वो नहीं नहीं, उनको नहीं, अच्छे लोगों को, अच्छी प्रजाति के,
4: अच्छी प्रजाति के लोगों को पालेंगे।
5: बिल्कुल जी। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि भाई मॉनसून शुरू हो गया है और ये प्यारा सा जो मौसम होता है ना, ये हमारे लिए तो बहुत खुशनुमा होता है, पेट्स के लिए भी बहुत खुशनुमा होता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो एक हैं
4: आपके ब्लैकी,
5: हाँ अच्छे से प्यारे से जो हैं, वैसे वो अच्छा सा प्यारा सा है नहीं, मतलब हम लोग सब कहते हैं इतना शरारती कि पूरा घर सर पे किए रहता है
4: जी।
5: तो जैसे बारिश शुरू होती है मैम और मतलब रूम में से पता चल जाता है कि हल्की फुल्की हो रही है, उसी टाइम उनका शुरू चक्कर लगाना।
4: अच्छा
5: हाँ,
4: बारिश में भीगने का
5: पूरा प्लानिंग करता है कि मैं किसी भी तरीके से मैं भीगूं, और उसके बाद बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ते हैं तो भी उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब सब हमें ही करना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि आप पेट्स को अपने बिल्कुल बारिश के पानी में भीगने न दें, क्योंकि बारिश के पानी में भीगने से उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे यहाँ तो मानता नहीं है, जंजीर में बांध के रखना पड़ता है, फिर वो नहीं जाता है उसको। तो इसी तरीके से आपने घर में कोई भी पेट रखा है, यहाँ तक कि अगर आपने पैरेट भी रखा है, क्योंकि हम लोग पैरेट भी कैरी कर चुके हैं, मिट्टू था हमारे घर पे, तो हम लोग उसको क्या करते थे कि चारों तरफ से पिंजरे को कवर कर देते थे अगर बाहर है तो, अदरवाइज अगर आप रूम में रख रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
4: फिर तो कोई दिक्कत नहीं है,
5: लेकिन अदरवाइज अगर आपने बाहर टांगा है, क्योंकि मैंने ज्यादातर लोगों के घर में देखा है कि घर के बाहर टंगे हुए,
4: बाहर टंगे रहते
5: पिंजरे, तो वहां पे आप हल्का सा किसी भी प्लास्टिक की जो बोरी आती है उससे या किसी कपड़े से उसको कवर कर दीजिए। बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, अगर बारिश का पानी चला जाता है तो इससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि बारिश में डाइट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, पेट्स के लिए स्पेशली, डॉग के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे यहाँ पे है तो मैं जानती हूँ कुछ चीजें कि जब भी आप, जैसे भुट्टा हम लोग बहुत खाते हैं, बारिश में तो सभी के घरों में होता है, कभी भी डॉग्स को स्पेशली भुट्टे के दाने नहीं देने चाहिए।
4: क्यों?
5: बहुत टाइट होता है मैम और वो उनको इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जा सकता है, क्योंकि उनका सेंसिटिव होता है, हम इंसान हैं हम तो खा लेते हैं, हमें वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन डॉगी को डाइजेस्ट नहीं होता है। और ये एक बार हुआ क्या कि एक बार मतलब लाए हुए थे पापा मेरे, तो उसने भौंक भौंक के उनसे मांगा तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि हम लोगों को भी शुरू में नहीं पता था कि नहीं देना चाहिए, बाद में जब हमने दिया तो 2-3 दिन तक वो बीमार हो गया, तो जो हमने डॉक्टर को फोन किया, उन्हें बुलाया, तो उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में हल्की चीजें देनी चाहिए। अगर आप बारिश के मौसम में हल्की चीजें देंगे तो इससे क्या होगा ना कि वो अच्छे से, उनको कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर आपने रैबिट रखा हुआ है घर पे, कोई भी पेट है आपके घर पे, तो बारिश के मौसम में उसे हमेशा हल्का खाना ही दीजिए। हल्का खाने में खिचड़ी हो सकती है, मतलब बिना तेल मसाले का, प्रोटीन, उबली हुई सब्जियां दे दीजिए। सबसे अच्छा पता है क्या होती है? कद्दू। कद्दू आप उबाल करके ऐसे ही दे दीजिए नमक डाल के, आराम से वो खा लेंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। या ऐसे भिंडी होती है, मतलब कोई भी सब्जी जो भी आती है, लौकी होती है, हल्का नमक डाल के बना के दे दीजिए। कहने का सेंस ये है जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए।
4: ओके
5: okay. अगर रोटी आप दे रहे हैं तो रोटी को बिल्कुल हाथ से मैश कर देना,
4: एंड घी नहीं लगना चाहिए उसमें। हाँ, हाँ, घी सादी घी लगी रोटी नहीं देना चाहिए पेट्स को।
5: सादी रोटी देनी चाहिए, सादी दीजिए और उसमें मतलब कोई भी
4: आप तुम कुछ मुहावरा याद आ गया,
5: कुछ याद आ गया था इसलिए हंसी,
4: मुहावरा याद आ गया था और वो मुहावरा मुझे भी मेरे जहन में भी आ गया था, बट वो मुहावरा हम किसी और के लिए यूज करते हैं,
5: यूज करते हैं
4: इसलिए हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं।
5: वो हंस भी मतलब जस्ट कुछ याद आ गया था फनी वे में, तो वो निकल गया, मतलब हंसी निकल गया।
4: मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले लिसनर्स को वेलकम कर लूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे जो लिसनर्स है वो भी नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों हमारी फीमेल लिसनर्स नहीं आती है। भाई सुन सहेली प्रोग्राम आप सभी के लिए बना है, एंड आप सभी लोग ही नहीं आते हैं, तो सबसे पहले सुनील जी, चमन जी एंड सुनील जी अगेन, एंड प्रमुख जी और चमन जी, हरिश्चंद सविता जी, काफ़ी दिनों के बाद हरिश्चंद सविता जी का मैंने मैसेज देखा है, एंड प्रमुख जी आपको बेहतर तरीके से पता है कि हम ऐसे लिंक्स के सॉन्ग्स नहीं लेंगे। खैर कोई नहीं, आपने भेज दिया है, इट्स ओके। एंड आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में, एंड सभी को शुभ दोपहरिया। साथ ही साथ चमन जी लिख रहे हैं कि बच्चों को डराना है क्या मैम, लॉयन ही क्यों, एक्चुअली मुझे पसंद है लॉयन के बच्चे, मतलब जब हम एक बार जू अभी भी मैं जल्दी से एक जू गई थी, वहाँ मैंने देखा था तो अच्छे मतलब जैसे ना छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, हालांकि मुझे पता है कि हम लोग उसको पेट्स नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, बिल्कुल बढ़िया लगता है। कमल नयन जी गुड आफ्टरनून, तो चलिए आगे प्रोसेस शुरू करते हैं
5: जी। और साथ ही साथ में खाने के साथ में पानी की भी बात आती है, अगर आप पानी दे रहे हैं तो बॉयल किया हुआ पानी, मानसून में बॉयल किया हुआ पानी देने से क्या होगा कि इससे उनकी इन्फेक्शन, अगर जैसे कुछ खा भी ले रहे हैं तो वो उतना असर नहीं करेगा और उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। सबसे मेन बात कि आप जिस भी बर्तन में खाना देते हैं या पानी देते हैं वो डेली की डेली उसको आप साफ करें, ऐसा ना हो कि एक दिन के बाद साफ किया, दो दिन के बाद साफ किया, तो इसमें फंगस जम जाती है जो पेट को उनके बहुत जल्दी खराब करती है और कहीं ना कहीं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए उनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और खाने में ज़्यादातर जो चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं देना चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर पे डॉगी है तो ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए उसे, क्योंकि केयर करने की जरूरत
4: नहीं। मैंने सुना है अंशिका कि चाहे वो कोई भी पेट हो ना, उसको मीठा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ना उन लोगों को एलर्जी हो जाती है।
5: हाँ।
4: और एलर्जी उनकी स्किन पे हो जाती है, क्योंकि देखिए इंसानों और जानवरों में इतना तो फर्क है कि स्किन एलर्जी उन लोगों को ज्यादा हो जाती है, तो हमेशा से फिर क्या कहते हैं वो रैशेस पड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है अंदर, मतलब बालों के अंदर तक खुजलियां हो जाती है उन्हें, तो बारिश के मौसम में क्या मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो हमेशा से मीठे को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि खेलते खेलते में उनको बिस्किट दे देते हैं, तो ये भी एक सही नहीं होता है, अगर मतलब लगता है कि हाँ मतलब पेट्स को बिस्किट देना भी, क्योंकि डॉग के जो बिस्किट्स होते हैं ना वो अलग होते हैं
5: बिल्कुल,
4: तो अगर आपको क्या कहते हैं उनको बिस्किट देना ही है तो डॉग्स वाले ही बिस्किट्स आप उन्हें दें।
5: बिल्कुल सही।
4: क्या हुआ, तुम पार्ले खिलाती हो?
5: नहीं, मैं पार्ले नहीं खिलाती हूँ, मुझे कुछ याद आ गया।
4: क्या
5: क्या करता है ना, जब मतलब जैसे हम लोग कुछ भी अगर खा रहे होते हैं, अगर गलती चाय भी शाम को पी रहे होते हैं, रस भी खा रहे होते हैं, तो तुरंत पहुंच जाता है घूम के और बेड पे चढ़ जाता है दोनों पैर के, भाव भाव भाव करता है, मतलब मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी खाना है, फिर चाहे उसका कोई भी इफेक्ट हो, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, हल्का सा पीस तोड़ते हैं और ऊपर का और उसको दे देते हैं, किलो खा लो, फिर जब क्या करते हैं जमीन में रख देते हैं, तो जमीन में रखा हुआ नहीं खाता है तो जान पूछ के चला जाता है, जो हम लोगों को उसको कोई चीज नहीं देनी होती है तो हम लोग जमीन में रख के देते हैं, चलो अब तुम खाओ
4: खाओ,
5: और जानते हैं कि अगर बर्तन में उसके नहीं दिया है तो वो नहीं खाएगा, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि जब नहीं खिलाना होता है तो फिर उसको इस तरह देते हैं।
4: गुलफ्सा गुलफ्सा, कभी कभी है ना वो टंग ट्विस्ट हो जाती है, तो
5: गुलफ्सा
4: जी कैसी हैं आप, और गुड आफ्टरनून आपको भी। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे एक नए टॉपिक की ओर, तब तक आप भी पानी पी करके आएं, हम भी पानी पी करके आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वाली है, और इसी हंसी मजाक को यहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए विराम, हम बस यूं गए और यूं आए, लेकिन आपको करना नहीं है आराम, हम लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा विराम, लेकिन आपको करना नहीं है आराम, क्योंकि हम लेकर के आ रहे हैं बहुत ही अच्छी सी एक मॉरल स्टोरी, एंड उसके साथ में अभी एक और टॉपिक है। तो सुनते रहिए हमारे साथ 89.6 FM, क्योंकि ये शहर की गुंडा शहर की है
5: धड़कन
4: धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो अब हो गया है टाइम हमें अपनी कुछ कही अनसुनी चीज़ों को सुनाने का। जैसे कि एक होता है ना कि हम किसी एक सपोर्ट के माध्यम से हम अपनी पूरी ज़िंदगी क्या कहते हैं बिता सकते हैं, वो होता है एक मॉरल सपोर्ट। तो मॉरल सपोर्ट के साथ में आज की स्टोरी हमारी है मॉरल स्टोरी, जिसका जो अर्थ निकलता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है और ख़ास करके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है। तो आप ज़रूर से सुने और हमें बताएं इसका फीडबैक।
7: बिल्कुल, तो जिनके सहारे पार लग जाती है सभी की नैया, तो चलिए आज सुनाते हैं कहानी आपको श्री कृष्ण कन्हैया की। श्री कृष्ण कन्हैया यानी कि हमारे कृष्ण भगवान जो हैं, उनका उनकी पूरी लाइफ यानी कि उनकी लाइफ की एक एक आप देखेंगे ना जो घटना है, वो कहीं ना कहीं सीख है, बस समझने की देर होती है। तो आज मैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को कहानी सुनाऊंगी भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की। क्या है चलिए जानते हैं। शिशुपाल जो थे वो रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई लगते थे, यानी कि उनके बुआ और फूफा के बेटे।
0: ओके।
7: लेकिन जो शिशुपाल थे उनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी में ये हुआ था कि उनका जो अंत होगा वो श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। तो उनकी माँ जो थी उन्हें जन्म से ये पता था कि वो श्री कृष्ण के हाथों मरेंगे, तो इससे वो बहुत डरी हुई और बहुत ज्यादा ये रहता था उनके मन में हमेशा कि वो कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण उनके साथ ऐसा कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसका एक उपाय करूंगी, और वो श्री कृष्ण के पास गई और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे एक वचन चाहिए, तुम वचन दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है आप वचन मांगिए और मैं आपको वचन दूंगा जो भी आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम वचन दो कि तुम शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर दोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मैं उनकी 100 गलतियों पे कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा और उसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। भगवान जो श्री कृष्ण थे उन्होंने वचन दे दिया। शिशुपाल की माता के मन में ये था कि अपनी पूरी जिंदगी में अगर वो गलतियां करेगा तो कितनी करेगा, 100 गलतियां बहुत है, उससे ज्यादा गलतियां तो वो करेगा नहीं, और जब वो श्री कृष्ण माफ कर देंगे तो वो उसे मारेंगे भी नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ये हुई थी कि वो बहुत गुस्से में उसे मारेंगे। तो उन्होंने सोचा कि जब गलतियां माफ कर देगा तो गुस्सा भी नहीं होगा, वो निश्चिंत हो गई। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब शिशुपाल बड़े हुए तो वो बहुत ज्यादा अहंकारी, घमंडी और अत्याचारी बन गए। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का अपमान करते थे और यही कहते थे कि ये क्या कर लेगा, इसकी तो कोई वो नहीं है, हमेशा उन्हें अपमानित करते थे। लेकिन जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था, वो चुपचाप शांत रहकर उनकी हर बात को, उनके हर अपमान को सह जाते थे और सिर्फ मुस्कुरा देते थे। भगवान श्री कृष्ण इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता था, उनकी जो सहन शक्ति थी वो बहुत ज्यादा थी, वो हर चीज को बर्दाश्त कर लेते थे। उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। कुछ समय बीतने के बाद जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें उन्होंने सबको बुलाया, मतलब सारे देवी देवता सारे ऋषि मुनि सभी को बुलाया उन्होंने। उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी बुलाया और शिशुपाल को भी बुलाया। जब वहाँ भगवान श्री कृष्ण गए तो पांचों पांडवों ने उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया और उन्हें अग्र पूजा का अधिकार भी दिया। अग्र पूजा का मतलब होता है कि सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी, फिर हम कोई पूजा पाठ अनुष्ठान आगे शुरू करेंगे। तो जब उन्हें अग्र पूजा का अधिकार दिया गया तो शिशुपाल को बहुत गुस्सा आया कि उसने ऐसा क्या किया है कि आप उनको सबसे पहले पूजा करने का अधिकार दे रहे हैं, ये तो ये है ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत उल्टा सीधा उन्हें कहा और वहाँ उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनकी सौवीं गलती थी। सौवीं गलती वहाँ उनकी पूरी हो चुकी थी और वो जो कर रहे थे वो 101वीं बार था। तो भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम बाद जब बहुत ज्यादा उन्होंने भगवान शिशुपाल ने बोल दिया तो भीम को गुस्सा बहुत आता था।
0: हाँ।
7: पांचों पांडवों में भीम अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे और वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब बस हो गया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो उन्हें लेकर के। तो जब वो मारने के लिए आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वहीं रुक जाइए और आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है और जहां तक मेरी हद है मैं वहां तक बर्दाश्त करूंगा। बर्दाश्त किया उन्होंने, लेकिन जब एक टाइम गया तो वो 101वीं बार हो गया और जैसे ही 101वीं बार हुआ वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को कहा कि आप वो करिए और जैसे
0: उसका ही संहार कर दिया।
7: जैसे ही उन्होंने सुदर्शन चक्र को छोड़ा उसने शिशुपाल के सिर को काट दिया और वहीं वो मर गया। जब वो सभा में ही मर गया तो सभी ने ये कहा कि अधर्म है और ऐसा नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर से ये कहा गया कि आप इनको सजा दीजिए। तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आज बच्चों को बताती हूँ, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी भी अपने घमंड में किसी का इतना अपमान मत करो कि उसकी सब्र की सीमा टूट जाए।
0: बिल्कुल,
7: क्योंकि जब सब्र की सीमा टूटती है तो इंसान तो इंसान भगवान भी इस पर आ जाता है कि अब तुम देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बर्दाश्त किया लेकिन वहाँ उनकी बर्दाश्त की सीमा हो गई थी और वहाँ उन्होंने एक बात कही थी कि जब आपकी सब्र की सीमा से कोई चीज़ पार हो जाए तो या तो तोड़ देनी चाहिए। और देखिए जब हमारी सब्र से कोई चीज़ पार हो जाती है ना तो रिश्तों की मर्यादा वही टूट जाती है और जिस रिश्ते में मर्यादा नहीं

जेगा और मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक, यानी कि अंशिका एक गाना जाते जाते सुना देते हैं, छोटू सा गाना है एक सुना देते हैं, और उसके बाद आते हैं हम ब्रेक के बाद मॉरल नहीं, उसके बाद आते हैं टिप ऑफ द डे। तो टिप ऑफ द डे बहुत अच्छा है, आप सभी भी सुनिए और एंजॉय करिए। बस हम यूं गए यूं आए।

0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे क्या था आज का?
1: आज का टिप ऑफ द डे क्या है वो ये है कि अभी हमने पढ़ाई से रिलेटेड बात की थी।
0: देखिए टिप ऑफ द डे ये है, मैं अंशिका का एग्जाम ले रही थी। मेरी आदत शुरू से है, जब मेरे साथ और भी कोई सुन सहेली में था, मैं ऐसे ही उनको भी फंसा देती थी कि बताओ। मैं देखना चाहती थी कि ये यहीं पर है कि कहीं बाहर है, बट ये पूर्ण रूप से यहीं है मेरे साथ। तो अंशिका पता है मेरा बचपन, जैसे हम लोग अभी बात करते रहते हैं ना कि हम लोग अपना बचपन कैसे बिताए, तो टिप ऑफ द डे मैं उन बच्चों को यही देना चाहूँगी जो बच्चे क्लास फिफ्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है, आपको अपनी लर्निंग पावर को तेज करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप उसको रट्टा नहीं मारिए। अगर आप उसको रट्टा मार के पढ़ेंगे तो आप कभी ना कभी उसे भूल जाएंगे। एग्जाम्स के बाद बिल्कुल उसे भूल जाना है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि आप उसको समझ के पढ़ें। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स लिया है, आपने मैथ्स लिया है, तो मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला है तो आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको समझ के पढ़ना है, ठीक है। साइंस में कोई भी अगर ऐसा कोई भी है तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला है तो आपको उसको रट्टा नहीं मारना है। आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, आपको उसको समझ के पढ़ना है। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपको आपको अपनी लर्निंग पावर और स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसको लिख के आपको आपको समझ के पढ़ना है।
1: जी
0: समझ रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसको पढ़ने के बजाय उसको लिख के याद करो। उसको आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने इसको हमने इसको जब लिखा है ना, जब आप उसको लिखोगे ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ पूरी।
1: जी
0: जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो वो आजीवन के लिए आपके दिमाग में बैठी रहेगी कि हाँ मैंने इसको ऐसे लिखा था और वो आज मुझे याद है। तो ये आपका टिप ऑफ द डे है कि उन स्टूडेंट्स के लिए खास करके कि जो लोग चाहते हैं कि मुझे जो कि पढ़ाई है वो हमेशा से याद रहे, फॉर्मूले याद रहें, मैथमेटिक्स के सम्स याद रहें, तो आप उन्हें क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, उसे लिख के याद करना है।
1: बिल्कुल, तो इस टिप ऑफ द डे को याद रखें, पढ़ें, इंजॉय करें, मौसम बहुत प्यारा है, भुट्टे ज़रूर खाएं, भुट्टे खाना बिल्कुल ना भूलें।
0: भुट्टे खाना ना भूलें, जाते जाते भी इनको खाने की याद आती है। तो चलिए भाई अब हम दोनों को दें इजाजत, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 88-40-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

हाँ जी दोस्तों, तो वक्त हो गया है आपके फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा का। लेकिन उससे पहले आज का जो मौसम है, ओहो क्या बोले भाई, बस यही है कि बस थोड़ी सी बारिश की कमी रह गई है। मौसम तो कल रात से ही जो हवाएं चल रही हैं कि मैं क्या ही बोलूं, मतलब आप अगर एसी में थे, कूलर में थे, फिर भी अगर आप एक पल के लिए भी अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में यानी पे छत पे निकले होंगे तो आपको वो चीज़ फील हुआ होगा कि एसी कूलर वाकई कुछ भी हो, बनावटी चीज़ तो बनावटी होती है, टेम्परेरी चीज़ टेम्परेरी ही होती है, और जो ओरिजिनलिटी होती है, जो नेचुरल चीज़ होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो उसी तरह का कुछ मौसम अभी भी बना हुआ है, बद्री छाई हुई है, लेकिन बारिश आने में थोड़ा सा विलंब कर रहा है और उम्मीद है कि बारिश भी हाल फिलहाल में ज़रूर आएगी। और ये मौसम कहीं और का नहीं, आपके अपने गोंडा शहर का है। जी आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। भाई शो शुरू हो गया है और शो का आगाज करेंगे आपके पसंद के नगमों से, लेकिन उससे पहले हम अपनी पसंद का नगमा आप तक भेजेंगे। लेकिन अगर आपको भी अपने पसंद का नगमा ट्यून करवाना है दोस्तों, साथियों, जनाब, मेजबान और मेहरबान कदरदान, तो बस आपको नंबर यही मिला लेना है, वही आपके स्टूडियो वाला पुराना और लेकिन सबसे प्यारा। हाँ, क्योंकि भाई आपकी डिमांड को कंप्लीट करते, वैसे बोलते ना कि डिमांड दुनिया में केवल एक ही दो लोग हैं जो कंप्लीट कर पाते हैं, समटाइम्स आपके मम्मी पापा, समटाइम्स आपके दोस्त यार, समटाइम्स कोई खास हो सकता है, बाकी तो बस आप पे ओवर रूल करना चाहते हैं, मतलब आप पे थोपना चाहते हैं चीज़ों को। तो भाई इसके अलावा भी एक नंबर है जो आप डायल करके अपनी डिमांड को कंप्लीट करा सकते हैं, वो आपके, जी हाँ, रेडियो गानस्थली 89.6 FM की स्टूडियो का नंबर, नंबर वही है 6393316429 यानी कि 6393316429। तो चलिए शो का आगाज करते हैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की पसंद का एक सॉन्ग प्ले करके। आज थोड़ा सा हटके सुनेंगे, थोड़ा सा अलग वे में जाके सुनेंगे, क्योंकि कारण है मौसम का। और जब मौसम ऐसा होता है तो ख्यालात हमारे दिल से होके जाते हैं, और जब दिल की बात होती है तो नगमे ऐसे होने चाहिए कि आप किन्हीं की यादों में डूब जाएं। हो सकता है भविष्य की यादें हों, हो सकता है आपके भूत काल की यादें हों, और कभी कभार तो भाई वर्तमान की भी यादें हो जाती हैं। हाँ, जस्ट बनी ही होती हैं और आप जस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं कि आपके जहन में आ रहा होता है कि भैया हमने तो सब्जी वाले ठेले वाले भैया जी से पूछ लिया कि क्या भाव है, लेकिन हमने गाड़ी रोकना ही मतलब वाजिब नहीं समझा और हम गाड़ी लेके ही निकल लिए। अब वो गाड़ी वाले भैया नहीं पूछ रहे होंगे, सब्जी वाले भैया सोच रहे होंगे भैया ये हमसे भाव पूछ रहा था या पूछ रही थी, अब भाव खा के चली गई है। तो ऐसा हो जाता है समटाइम्स। फिलहाल बढ़ते हैं आज के पहले गाने की ओर, और ये गाना है हमारी प्लेलिस्ट से, और बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। फिलहाल बड़े ही दिनों बाद आज हम आवाज सुनेंगे इस मूवी के, इस सॉन्ग की। मूवी है, मूवी मैं चाहूंगी आप खुद ही बताएं, क्योंकि ये इसी मूवी का टाइटल ट्रैक है। चलिए देखिए, इतना प्यारा सा हिंट भी दे दिया है, देखते हैं चैट बॉक्स में कितने जवाब आते हैं। लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा गाना, और ये गाना हम गुनगुनाना भी पसंद करेंगे। तो सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, हाँ जी, फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा विथ योर आरजे आकांक्षा। और आपकी डिमांड्स तो हम तक आ ही रही है, लगातार कॉल आ रही है, पर फिर भी चाहेंगे अगर किसी की डिमांड रह गई हो तो जरूर कॉल करें। और आज मैं कोशिश करूंगी कल जिनकी डिमांड्स नहीं हुई थी और लगातार जिनकी लगातार कॉल मतलब डिमांड्स हो रही है उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी की डिमांड्स ली जाए। लेकिन ये ऐसा हम करेंगे शुरुआत में नहीं, आधा शो पूरा होने के बाद। फिलहाल एंजॉय करिए इस प्यारी सी डिमांड को हमारी तरफ से आप सभी के लिए, और उन लोगों के लिए खासकर जो हमारे दिल के करीब रहते हैं, यानी आप सभी उसमें आते हैं ना, ये तो सोचने क्यों लगते हैं। एंजॉय द ट्रैक।

हाँ जी भाई, फीडबैक आना भी शुरू हो गया है और जाहिर सी बात है मौसम मौसम होगा तो गाने भी ऐसे ही बजेंगे। थैंक यू सो मच रीना जी, हमें सुननी है रुड़की उत्तराखंड से और फीडबैक आया है, गाना बहुत प्यारा है। थैंक्स अ लॉट।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारी पसंद से, हमारी प्लेलिस्ट से ये वाला गाना। भाई मौसम मौसम था तो हमने कहा भाई आज बजा ही देते हैं ये गाना और लगा ही देते हैं बाजीगर की बाजी। अब बढ़ते हैं आज की पहली डिमांड के साथ में, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है सबीहा जी की। और सबीहा जी के सॉन्ग के बाद हम आएंगे आरजे अमन जी के सॉन्ग के साथ में, जो हमें सुने हैं बिहार से। उसके बाद होंगे हमारे अमित कुमार जी, और फिर होंगे हमारे अब्दुल मुजीम साहब, फिर आरसीएम से बबलू पांडे जी हैं, और देन हमारे प्रबल मिश्रा जी उर्फ पंडित जी। और उसके बाद में बहुत सारे श्रोताओं की डिमांड्स आई है, लेकिन लेते हैं सबसे पहली डिमांड आज की और एंजॉय करते हैं इस बेहद खूबसूरत से डिमांड।

भाई क्या बात है, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी सबिया जी। और अभी हम बढ़ते हैं आरजे अमन जी की डिमांड की ओर, जो हमें सुने हैं बिहार से। और बिहार से एक लिसनर हमारे और सुन रहे हैं भाई, जिनका मैसेज हमको मिला है कि वो सिवान बिहार से सुने, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। तो महोदय आपसे चाहेंगे कि आप अपना नाम ज़रूर बताएं ताकि हम उसको ऑन एयर बता सकें अपने श्रोताओं से। और एक बात और कहनी थी कि भाई बोलते हैं कि गुस्से में इंसान लाल पीला हो जाता है, आज मुझे दिख भी रहा है। मुकेश जी आप किस बात पे लाल पीले हो रहे हैं, आपका मुख मुझे दिख रहा है लाल पीला, कारण बताएं ताकि मैं उसका समाधान कर पाऊं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। 3 से 4 के सफर में मैं आपकी होस्ट हूं दोस्त आरजे आकांक्षा, और शो आपका पसंदीदा जी हाँ फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। गाना बड़ा ही प्यारा है भाई, इसका क्या ही बोले, मन कर रहा है पोस्टमार्टम कर दे, लेकिन करेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। 90s हिट्स में से एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जो कि फिल्माया गया है शाहरुख खान जी और शिल्पा शेट्टी जी पे, और गाना वही है भाई, क्या क्या पढ़ा है सबने, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या कभी किसी ने किसी का दिल निकाह या बेजुबान कही गई बातों को पढ़ा है। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

हैं और जो हमें सिवान बिहार से सुन रहे हैं उनका नाम आ गया है। नामकरण इनका इनके माता पिता ने किया था देवानंद जी। ओ माय गॉड, देवानंद जी, क्या बात है, बड़ा ही प्यारा नाम है। तो सुनते रहिए और इस प्यारे गाने का आनंद उठाइए।

भाई सारे जवाब तो काफी अच्छे थे, लेकिन भाई जो यहाँ पर लिख के आ रहा है मैं पढ़ना चाहूंगी। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हुए हैं भाई। हमने पूछा था क्या क्या लिखा है बताइए, तो सभी ने अपने हिसाब से जिसने जो पढ़ पाया है वो उसने लिखा है, पढ़ा है। ओके, फिर रोशनी जी ने तो भाई स्माइल पढ़ा है। रोशनी रावत जी हमें सुन रही है, मैंने लुधियाना बोला था आज, कहाँ से सुनने में भूल गई, प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। हाँ, और मुकेश यादव जी लिख रहे हैं कि वैसे ही हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, ये सिर्फ आवाज आ रही, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, हम कैसे बताएंगे भाई। दिव्य दृष्टि का यूज करिए। और अब्दुल मजीम साहब कह रहे हैं नीला, अरे बाप रे इतना भयानक मत बता दीजिए दादा, हम डरा गए। और आरजे अमन जी लिखते हैं, मंगे लिखी, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी। ओके, और प्रमुख जी का कहना है हमने कुछ नहीं पढ़ा है। माय गॉड भाई, हमारे पंडित जी ने तो भाई सबसे अलग बता दिया, लेकिन मेरा फेवरेट वाला बता दिया। इन्होंने कहा पूरी सब्जी, दाल चावल, चाउमीन, टिकिया, यही सब लिखा है। बहुत जानते हैं आप। हाँ चलिए, आप ही सिखाएंगे, आते हैं मिलते हैं आपसे, हमारे मुंह बोले भाई साहब हैं, और भाई साहब से तो खर्चा करवाना बनता है। और गुलफशा अंसारी जी हैं, नहीं गुलफशा सिद्दीकी जी हैं। ओके, और ये लिखती हैं आंखें पढ़ी हैं, दांत पढ़ा है, नाक पढ़ा है, गाल पढ़ा है। ओह माय गॉड, और ये सब गढ़ा किसने है ये भी बता देती, लगे हाथ। चलिए फिलहाल बहुत मज़ा आया आप लोगों के मैसेजेस को पढ़ा हमने। ओके, हाँ चंडीगढ़ से सुन रही हैं, और सुनील यादव जी हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, जो हमें लाइव सुन रहे हैं। ओके, कल हमने आपका सॉन्ग बजाया था, थोड़ा लेट से बजाया था सुनील जी, आप शायद चले गए थे। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे अमित कुमार जी की है। गाना बड़ा ही प्यारा था अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते हैं अब अमित कुमार जी के सॉन्ग की ओर। और भाई ये देखिए, दो तीन गाने ही नहीं हुए अभी और 3:23, इतनी जल्दी कैसे भागता है वक्त, बड़ा दुख होता है। खैर कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहिए एक से बढ़ के एक नगमों को 3 से 4 के सफर में, आपके अपनी आरजे आकांक्षा को और आप सभी की प्यारी डिमांड्स को। और हाँ, ये गाना स्पेशली हमारी रीना शर्मा जी के लिए, जो मैं रुड़की उत्तराखंड से सुनी है, और इनके यहाँ सुबह से बारिश हो रही। भाई थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, इधर भी आ जाए, ढकेल दीजिए ना, मतलब इंसानों को नहीं ढकेलना, बारिश को ढकेलना है। हमारे गोंडा में भी थोड़ी सी बौछार हो जाए, बस थोड़ी सी।

और भाई रीना जी का कहना, हमने तो बादलों से बोल दिया आकांक्षा मैम के यहाँ जाके बरसो, तो बरसो रे मेघा मेघा। वैसे मेघा बरसे तो पानी पानी वाले मेघा बरसे, मतलब बादल बरसने चाहिए। अगर सोचिए अगर ढेर सारे मेढक बरसने लगे तो क्या होगा, टर टर टर जैसे गिरेंगे उतने टर टर टर की आवाज होगी। ओ माई गॉड, मैं क्या इमेजिन कर लेती हूँ, वॉट अ माइंड आई हैव, कुरा बाती।

जी हाँ, अमित जी की डिमांड अभी आपने एंजॉय की, तमन्ना है कि जोरों की बरसात हो जाए। भैया तमन्ना आप ही की नहीं, अकेले अमित जी हमारी भी है और पूरे देशवासियों की है कि बरसात होनी चाहिए जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई है, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अगर ऐसा प्यारा वाला मौसम हो और फिर बारिश ना हो, माई गॉड, ऐसा लगता है ना कि किसी ने मुँह तक निवाला डाल करके वहाँ से छीन लिया है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं RCM से बबलू पांडे जी की आई हुई है डिमांड और भट्ट PCM सुनते हैं। तो चलिए इनकी डिमांड भी सुनते हैं, गाना बहुत ही प्यारा है, मौसम के अकॉर्डिंग वाला है, तो चलिए सुन लेते हैं स्पाइसी डिमांड को, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिमांड अब्दुल मजीम साहब की लेके, उसके बाद पंडित जी आपकी डिमांड होगी और आपकी डिमांड के बाद एक प्यारा सा डिमांड होगा और वो आपके नाम करना चाहेंगे हम।

0: ओह माय गॉड, मतलब इतनी सारी उपाधियां मिली थी वो तो मेरे को समझ आ रही थी, आपने मुझे डॉक्टर साहिबा भी बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से लिखते हैं, सभी मरीज की दवा है आपके पास, इसलिए मैम जी डॉक्टर। ओके थैंक्स।
1: जू है तुम्हारी,
0: क्या बात है।

जी हाँ दोस्तों, एवरग्रीन सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया है और आवाज थी बाला सुब्रमण्यम जी की। क्या आवाज है वाह, और बहुत ही सुकून सी मतलब फील होता है इनकी आवाज को सुनने के बाद में। और अब हम चलेंगे अब्दुल मुजीम साहब की डिमांड की ओर, जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से, और चलेंगे मदीने की ओर और फिर आते हैं पंडित जी आपके डिमांड के साथ में। और आपके सॉन्ग के बाद में एक सॉन्ग है हमारे पास में जो हम आप ही को डेडिकेट करना चाहेंगे। जी हाँ, एंजॉय करते रहिए।

जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इल्तिजा है हमारे अब्दुल मजीद साहब की, और मैं तो ये कहूँगी आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को मदीना फरमाएं, ऊपर वाले रहम करम हो उनका आप सभी पर। फिलहाल अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पंडित जी की। आइए सुनते हैं इस प्यारी सी डिमांड को, और फिर आते हैं रीना शर्मा जी की डिमांड को लेकर के, जो हमें रुड़की उत्तराखंड से सुननी है, लेकिन वो सॉन्ग हम डेडिकेट करेंगे पंडित जी को। एंजॉय द ट्रैक। और मैसेजेस भी काफी सारे आए हुए हैं, लेकिन वही जो वक्त होता है 3:40 पे हम आते हैं चैट बॉक्स की ओर, आप सभी के पैगाम मात की ओर।

भाई अब्दुल मजीम साहब, आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज आया है। प्रमुख जी का कहना है कि भाई इतने दिनों से मैं ये कव्वाली ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, आज जाके मिला है, तो इसके लिए आपको थैंक यू बोला गया है। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस प्यारे से ट्रैक को। और हाँ, गुलाबी हो जाते हैं लोग जब वो ब्लश करते हैं, यानी किसी के प्यार में होते हैं या बाकी आप समझदार हैं, खुशी से भी कभी कभी इंसान मुस्कुरा के गुलाबी हो जाता है। और हाँ, एक टाइम और होता है जब आपका एग्जामिनेशन होता है, आपको कुछ समझ नहीं आता, बहुत नर्वस याद आते हैं, तो भी कान और गाल आपका गुलाबी हो जाता है।

क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी और हमने कई दिनों बाद, ना जाने कितने दिनों बाद, इस डिमांड को एंजॉय किया, मतलब इस सॉन्ग को स्पेशली। और जो मैं सॉन्ग अब बजाने जा रही हूँ वो भी बहुत दिनों बाद मैं एंजॉय करने वाली हूँ। और ये डिमांड हमारे रुड़की वाली लिसनर यानी की उत्तराखंड वाली लिसनर यानी की रीना शर्मा जी की, और इसको हम डेडिकेट करना चाहेंगे अपने पंडित जी को। एंजॉय द ट्रैक।

0: कह दिया। अखियां मिला के तूने दिल को चुराया, लूटा लूटा लूटा मेरा जिया, हो मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया,
1: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया।
0: हाँ जी दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी भाई, मज़ा आ गया हमको तो, हमने काफ़ी एंजॉय किया। और नेक्स्ट गाना भी आप एंजॉय ही करेंगे क्योंकि ये है हमारी समरीन जी की डिमांड, और समरीन जी की डिमांड भी कुछ कम नहीं होती है। एंजॉय करते हैं इश्क रिश्क मूवी से टाइटल ट्रैक। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है।

है। जी हाँ, राहत जी की आवाज में एंजॉय किया अभी आपने ये ट्रैक, और इसकी डिमांड की गई थी समरीन जी की ओर से। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और जो नेक्स्ट डिमांड हम तक आई हुई है वो आई हुई है हमारे गुलफशा सिद्दीकी जी की ओर से, और उसके बाद आएंगे हम आप सभी के मैसेजेस को लेंगे। तो चलिए चलते हैं इस नेक्स्ट नगमे की ओर और सुनते हैं कि गुलफशा जी क्या सुनना चाहती हैं।

हाँ जी, और बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। वाह क्या बात है भाई, बंधन हो तो ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज होना ही नहीं चाहिए। बहुत सही बात है। और एक बात और कहनी थी मुझे, रोशनी जी की डिमांड आई, मेरे को ये समझ तो आया कि वो आपने सॉन्ग गुलफशा जी को मतलब डेडिकेट किया, किस साइड से वो प्रमुख जी पे सूटेड है, बस इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ मैं आपसे। रोशनी रावत जी, वो गाना किस साइड से हमारे प्रमुख जी को मतलब सूट करता है, बस इतनी सी बात बता दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं उस ओर जहाँ आप लोगों के पैगाम आए हुए हैं, यानी आप लोगों के संदेश, और संदेश आते हैं आप सभी के चैट बॉक्स में। तो चलिए चैट बॉक्स की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि किसका क्या मैसेज हम तक आया हुआ है। और जो सबसे पहला मैसेज मुझे दिख रहा है हमारे चैट बॉक्स में, वो है हमारे प्यारे लिसनर का, और वो हैं कौन ये भी हम आपसे बता देते हैं। तो ये हैं हमारे प्यारे लवली सिंह जी। भाई बड़े ही टाइमली इन्होंने ओके गुड आफ्टरनून बोला है, लेकिन गलती से ये भूल गए थे कि शो का टाइम किसके शो का था। खैर कोई बात नहीं, हमने माफ़ किया, क्योंकि आप अगर भूल जाएंगे तो हम आपको याद दिला देंगे। चलते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर। गुलफशा जी हैं हमारे साथ में, और इसके अलावा चमन जी हैं, बड़े दिनों बाद भाई चमन जी आए हुए थे शो में, और प्रमोद कुमार जी हैं लुधियाना से, राधिका सिंह जी हैं, ओके नाम चेंज हो गया, क्या बात है, अच्छा लगा वैसे पढ़ के मुझे। और इसके बाद में दरक्षा अंसारी जी हैं। मुझे भी एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस चाहिए। हाँ जी आपको ज़रूर मिलेगा, प्रमुख जी आइए, प्लीज़ आइए, आपका बहुत स्वागत है। दरक्षा अंसारी जी हैं, गुड आफ्टरनून डियर गुलाबो, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं जैसी हूँ। और सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स का मोस्ट वेलकम है। प्रमोद कुमार जी लुधियाना से लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डियर गुलाबो, कैसी हैं आप? ओ माई गॉड, कॉपी पेस्ट करना भी आता है। हाँ कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आरसीएम से बबलू पांडे जी हैं भटपी से, आकांक्षा मैम और सभी साथियों को राम राम। राम राम भैया आपको भी, और ईश्वर आपको बहुत अच्छे से रखे। आरजे अमन जी हैं रेडियो हॉट स्टार से, बिहार से हमको सुनते हैं। आकांक्षा जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत वेलकम आपका, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक वाला स्वागत है। प्रबल मिश्रा जी हैं, लिखते हैं अच्छा हुआ जो हंसने का बिल नहीं आता, वरना हम लोग तो कर्ज में ही डूब जाते यार, जब देखो तब ही करते रहते। गुड आफ्टरनून राधे राधे राधे राधे पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई हंसाने के लिए। सचिन शुक्ला जी हैं जो हमें दिल्ली से सुनते हैं, नमस्ते बोला है, नमस्ते आपको भी। और इसके बाद नेक्स्ट मैसेज में थैंक यू सो मच भाई, कितनी तारीफ करते हैं आप, थैंक यू सो मच अमन जी। और राधिका सिंह जी हैं, वेरी गुड आफ्टरनून आरजे आकांक्षा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभ दोपहरिया। और अशोक मिस्त्री जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम है सर। मुकेश यादव जी हैं गोंडा से, यानी कि हमारे मुकेश अंबानी जी जो हमें दिल से सुनते हैं, गुड आफ्टरनून डियर मैम आरजे आकांक्षा जी, हाँ जी थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला हाँ जी। और उसके बाद में सवाल आए चाहे ना आए, हम तो आ गए, ओहो हो क्या बात है, क्या बात है, मजा आया। और बाजीगर मैम ओके थैंक यू सो मच गुलफशा जी। और प्रमुख जी ने भाई लंबा वाला मैसेज डाला है, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लिखते हैं आरजे आकांक्षा बड़ी निराली बातों में जैसे मिश्री की डाली, ओके हंसी बिखेरे हर एक पल में, खुशियां भर दे दिल के आंगन में, शरारत उनकी सबसे प्यारी, ये वैसे सभी कहते हैं, थैंक यू सो मच। बात बात में छेड़े यारी, ओहो कभी कभी किसी को हंसा दे, कभी मजाक में खूब फंसा दे, ओहो आवाज़ में है ऐसा जादू, सुनते ही मिट जाए आंसू, चुलबुली बातें मीठी बोली, महफिल कर दे रंगों वाली, मस्ती उनकी पहचान है, हर मुस्कान में बसी जान है, ऐसी प्यारी ऐसी न्यारी, सबकी अपनी आरजे आकांक्षा प्यारी ही। ये लास्ट में जो आपका ही था वो मुझे बड़ा पसंद आया, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट फॉर मी। और उसके बाद में नंबर वन सॉन्ग बोला है राधिका जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद में ओके थैंक यू भाई, इतनी तारीफ करते हैं आप लोग कि हम बस खाली शर्माते रहते हैं, सोचते हैं कि दो चार मिनट बाहर जाके पहले ही आ ले तब आके अंदर शो करें, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमल नयन जी हैं, बाजीगर मूवी का गाना इन्हें बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने बता भी दिया भैया भी कि बाजीगर मूवी का सॉन्ग है, ओके और गुलफशा जी ने भी यही बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और रोशनी रावत जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से, इस बार मैंने सही बोला है वरना मैं फिर से बोलती लुधियाना से। हाँ और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में हमें
दिख रहे हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से। आकांक्षा जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया, गाना बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप भी स्वाद लेते हैं हमारी ही तरह, ये बात जान के काफी अच्छा लगा, क्योंकि हर एक चीज का एक स्वाद होता है और स्वाद सब कुछ है, इंसान कमाता भी है कहीं ना कहीं इसीलिए कि वो शाम को आराम से जाके परिवार के साथ में बैठ के सुकून से खा पी सके, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैसेज में आप सभी के ही मैसेजेस हैं और फिर आ गए हैं हमारे बीच में अब्दुल मुजीम साहब, ओके आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आगे बढ़ रहे हैं तो सुनील यादव जी हैं जो हमें दिल्ली से सुनते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। और आज ओके कन्यालगंज से सुनते हैं फिलहाल, और रहने वाले कन्यालगंज के हैं और सुनते हैं दिल्ली से। और इसके बाद में, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए, ऐसा कहना है हमारे बबलू पांडे जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुष्का जी आ गई श्रावस्ती से, गुड आफ्टरनून अक्की और गुलाब जामुन मैम जी, थैंक यू सो मच मिठास बढ़ाने के लिए। के गुप्ता जी हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, भाई इन्होंने हमें डॉक्टर साहिबा बना दिया, थैंक यू। और इसके बाद में दरक्षा अंसारी जी हैं, भाई बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं अगर किसी का मैसेज छूट जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि वक्त की कमी है और मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, डिमांड भी उतनी ही सारी आई है जितने सारे मैसेजेस आए हुए हैं, फीडबैक के तौर पर भी बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं और मैं फिलहाल खोज रही हूँ कि किसी का मैसेज मुझसे छूटे नहीं। अरे बाप रे, नीना जी आई हैं और इनका मैसेज छूटा तो चंगू जी, तो भाई क्लास में वैसे क्लास टीचर क्लास लगाती लेकिन हमारे बच्चे लगा दिया करते हैं, तो चंगू जी आपका भी स्वागत है। और मंगू जी आजकल नहीं दिख रही है, मुझे लगता है कि अपने बच्चों के साथ में बिजी हैं, भाई स्कूल्स खुल गए हैं सभी माओं के, तो मतलब खुलते तो बच्चों के लेकिन क्लास लग जाती है माओ की। चलिए अब चलते हैं उस सॉन्ग की ओर जो हमारे पास में आई हुई है बरसात स्पेशल लेकर के, और ये गाना आपने कई दफ़ा सुना होगा और ये गाना आप सभी को पसंद भी बहुत ज़्यादा होगा, और ये डिमांड है हमारे प्यारे शहनवाज जी की। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और फिर आते हैं धर्मेंद्र मोहन भारती जी आपकी डिमांड के साथ। सुरेंद्र यादव जी हैं, रईस साहब हैं, और इसके अलावा हैं हमारे बीच में अलीशा जी, एक मिनट इसको पढ़ के अभी बताऊंगी कौन है। रोशनी रावत जी की डिमांड है, निशा जी की डिमांड है, अशोक कुमार जी की डिमांड है, अनुभव जी की है, मुकेश जी की है, अनुष्का जी की है, बहुत सारी डिमांड है और वक्त मात्र 13 मिनट, नाइंसाफी है, बहुत बहुत बड़ी वाली नाइंसाफी है, एंजॉय करिए।

और अब ये सॉन्ग की डिमांड है हमारे रई साहब की। भाई अब आज हम उनकी डिमांड्स लेंगे जिनकी कई दिनों से छूट रही है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी अपने धर्मेंद्र मोहन भारती जी से। आप अपनी डिमांड कल रखिएगा, और जिनकी डिमांड बहुत दिन से नहीं हो पा रही उन सभी की डिमांड्स अब लेने का वक्त आ गया है। मात्र 10 मिनट ही दे पाऊँगी मैं, और इसके बीच में हमारे

हाँ जी, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी रईस साहब, आपकी रईसिया से निकला हुआ बहुत ही शानदार नगमा था। और अभी हम बढ़ते हैं उस सॉन्ग की ओर जो कि डेडिकेशन में आया हुआ है रोशनी रावत जी की ओर से चंडीगढ़ से, और डेडिकेशन में आया हुआ है प्रमुख जी, गुलक्षा जी और ओके आकांक्षा मैम को भी है। थैंक यू। चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, और इस ट्रैक के बाद आते हैं अलीशा जी आपके सॉन्ग के साथ। रफ्तार तेज करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग्स हम ले पाएं। एंजॉय दैट ट्रैक।

0: बड़ी मुश्किल।
1: ऐसा क्या सच में?
0: किसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल।
1: और दोस्तों जाते वक्त इतनी कॉल्स आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही इतनी कॉल्स आ क्यों रही है।

मुकेश जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, प्लीज रीसेंड योर लिंक, प्लीज रीसेंड योर लिंक। और सुरेश जी, आपसे भी मैं माफी चाहूंगी, आप भी कल अपनी डिमांड करिएगा, क्योंकि एक ही वक्त में मैं सभी की डिमांड नहीं ले सकती। और इसके बाद मैं लूंगी अलीशा जी की डिमांड, फिर होंगी हमारी निशा जी, और फिर होंगे हमारे अशोक जी। और मुकेश जी, प्लीज अपनी लिंक को शेयर करिए, वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग्स प्ले करने की।

होगी बड़ी मुश्किल भाई, मुश्किल होनी चाहिए और सर फिर का दिल भी आना चाहिए, यही तो जिंदगी है और जिंदगी का फलसफा है भाई। थोड़ा बहुत अगर मतलब नोक झोंक नहीं होगी तो लाइफ कैसे हंसी और खुशी के साथ में आगे बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर भाई, अलीशा जी की डिमांड हमारे पास में है। और एक बात और कहेंगे कि दोस्तों अब लास्ट वक्त पे आप लोग कॉल्स क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं किसी की भी कॉल ले ही नहीं पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। लगातार 5 से 6 कॉल हो चुकी है अलग अलग नंबर से, लेकिन वाइंड अप करते हुए मैं गाने ही प्ले करना पसंद करती। एंजॉय द ट्रैक। भाई किसी भी शादी में इस गाने पे कोई ऐसा है नहीं जो नाचता ना हो, और अपन भी नाचता है इस गाने पे।

हाँ जी, और अब चलते हैं निशा जी की डिमांड की ओर। भाई बहुत परेशान हुई है ये अपने गाने के लिए, चलिए अब एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। बहुत ही प्यारी सी डिमांड है, प्यार का अंजाम किसने सोचा, बेवफा मूवी से, और उसके बाद लास्ट डिमांड आज की लेंगे हम।

हाँ जी दोस्तों, आज जिन जिनकी डिमांड रह जाएगी उनसे मैं माजरत चाहूंगी, और बस ये कहूंगी कि कल अगर आप डिमांड करेंगे तो पहली डिमांड मैं आपकी प्रायोरिटी पे रखूंगी। जैसे मैंने कल वादा किया था, जिन जिनके गाने नहीं होंगे, मतलब आज नहीं होंगे, उनको मैं कल लूंगी, तो आज मैंने लेने की पूरी कोशिश की है। और जिन जिनके गाने नहीं आज हुए हैं उनके कल मैं जरूर लूंगी। जैसे धर्मेंद्र मोहन भारती साहब हैं और सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, और अनुष्का जी आपकी भी डिमांड रह जाएगी। अनुभव जी, आपने जो गाना भेजा है वही सेम रीना जी ने भेजा था उत्तराखंड से, तो आज की मैं लास्ट डिमांड फिलहाल लेने जा रही हूँ अशोक कुमार जी को, और इसी में मैं ऐड करूंगी अपने मुकेश अंबानी जी को। चलिए इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं, और अभी मुझे दीजिए आप आज के इस सफर से अलविदा। मिलते हैं कल आपसे आपके अपने शो जी हाँ कॉलर ट्यून गोंडा के साथ ही, और अपनी अपनी डिमांड तैयार रखिएगा, कल पूरे इंसाफियत के साथ में आप सभी की डिमांड कंप्लीट की जाएगी। ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो गाना सिटी 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
11: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदमली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदमली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोदमली में, स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395-84। 88404-3395-84। 88404-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला पे, जहां लर्निंग होती है बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। जी हाँ, जब लर्निंग की बात करती हूँ तो मैं हर मंगलवार आप लोग को अलग अलग अलग अलग दायरों में आपकी जो कहते हैं ना लर्निंग को बढ़ावा देती हूँ। लेकिन आज के डेट में जो सबसे बड़ा सवाल है वो हमारी हेल्थ का है, हाइजीन का है, और बढ़ता टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमारे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये इशारा करता है कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ धीरे धीरे और ज़्यादा ओरिजिनेट होने लगती है। मतलब कि बढ़ता टेम्परेचर, ये तो हमने सुना ही होगा कि गर्मियों में दाल या कोई भी खाना जल्दी खराब हो जाता है। क्यों सर्दियों में नहीं खराब होता? क्योंकि गर्मियों में बढ़ता टेम्परेचर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का मौका देता है। फिलहाल आप सोच रहे होंगे आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो दिखता तो नहीं है आपको माइक्रोस्कोप से भी, पर हमारी जिंदगी की सांसें रोक सकता है। अब चाहे वो कोविड वायरस हो, चाहे वो इबोला हो, चाहे वो रेबीज कॉज करने वाला वायरस हो, ये सभी

वायरसेस हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी सांसों को रोकने की शक्ति रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस क्या ही कर लेगा, और बहुत सारे लोगों ने तो हमें बताया है कि वायरस तो जिंदा होता भी नहीं है, खुद सांस भी नहीं लेता, खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता, खुद रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है, फिर भी हमारी जिंदगी पे इफेक्ट डाल रहा है। क्यों, ऐसा क्या है वायरस में खास? भाई वायरस में खास है तभी तो उसने लॉकडाउन लगा दिए, और ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो आने वाले समय में पैंडेमिक फिर से हो सकती हैं। अब पैंडेमिक नाम सुन के थोड़ा घबराइए मत, वापस से आपकी याददाश्त पे जोर डालने की कोशिश करूंगी मैं कि भाई जो दुनिया में व्याप्त हो जाए बीमारी उसी को पैंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक वो बीमारियां होती हैं जो एक किसी लोकलाइज एरिया में फैलती हैं। तो फिलहाल बहुत सारे ऐसे वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल इबोला, और न्यूज में आप लोगों ने सुना ही होगा कि आजकल जो चूहे हैं उनका जूठा खाना खा लिया तो हम मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सलाइवा में, उसके पिगमेंट में बहुत सारे वायरसेस हैं जो आने वाले समय में हमें बीमार करके इनफैक्ट हमारी सांसें रोक सकते हैं। बात वायरस की शुरू हो ही गई है तो क्यों ना वायरस के बारे में थोड़ा और जान लिया जाए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम छोटे से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी दुनिया बदल सकता है। एक छोटा सा मोबाइल गैजेट जो हमारे पूरे के पूरे दुनिया को एक साथ रख सकता है, वैसा ही वायरस भी है जो छोटा होते हुए बड़ा धमाका करने की क्षमता रखता है। तो चलिए आज शुरू से शुरू करते हैं वायरस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, कहानी शुरू हुई 1892 में। एक रसायन वैज्ञानिक थे, या कह सकते हो कि एक केमिकल साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था दिमित्री इवनवॉस्की। नाम बड़ा गजब का है ना। तो दिमित्री जी ने देखा वायरस को पहली बार। उन्होंने तंबाकू के पत्तों को या तंबाकू के पौधों में देखा कि कुछ अजीब से मतलब स्पॉट्स बने हुए हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के। उन्होंने छानबीन की और पता चला ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। उन्हें लगा, दुनिया ने सोचा बैक्टीरिया होगा, लेकिन पता चला बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। अब आप सोच रहे होंगे जीवाणु से भी छोटा है कोई, उसे विषाणु कहते हैं। जी हाँ, वो निकला वायरस। नाम इसका कैसे पड़ा? इसके बाद आ जाता है साल 1898। एक डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्टिनस बिजरनेक। बिजरनेक जैसे ही नाम में नीक है इनके, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीक थे, इन्होंने मार्टिनस नाम दिया और इसे वायरस कहा। लैटिन भाषा में वायरस का मतलब जहर होता है, इसीलिए इसे विषाणु भी बोलते हैं। ठीक है, जिंदा या मुर्दा, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि वायरस जिंदा है या मुर्दा है। फिर वायरस की सबसे कमजोर या कह सकते हैं डरावनी बात पता चली कि हवा या जमीन पर ये जिंदा नहीं होता है, यानी कि अगर हवा में वायरस है तो वो निर्जीव है, और हवा और जमीन पे होने के साथ साथ ये जीवित कब होता है? जब किसी जिंदा जीव पे जाता है, यानी कि अगर ये हमारे ऊपर है तो ये जिंदा है, और अगर ये टेबल, कुर्सी, मेज या हवा में है तो ये निर्जीव है। ये थी इसकी असली कहानी। और अपनी फौज खड़ी कर सकता है जैसे कोई ज़ॉम्बी, वायरस हमारे अंदर जाके अपनी फौज खड़ी करता है, जबकि टेबल पे बैठ के वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको और भी बहुत कुछ वायरस के बारे में बताना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में कुछ ज़रूरी वैक्सीन्स आ जाती हैं जिनको हमें ज़रूर लगवाना चाहिए। तो सबसे पहले आती है BCG की वैक्सीन, जो लगती है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये बच्चे में जन्म के तुरंत बाद लगा दी जाती है, ये फेफड़ों को सुरक्षित रखती है। दूसरे नंबर पे आती है OPV या फिर IPV, जिसे पोलियो की वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन जो हैं ओरली भी आपको दी जाती हैं और एक इंजेक्टेबल के फॉर्म में भी दी जाती हैं। दो बूंद जिंदगी का नाम तो याद ही होगा। ये जो वैक्सीन है ये आपको चलने फिरने वाले जो वायरसेस हैं उनसे बचाती है, यानी कि वो जो आपकी हड्डियों में संक्रमण करते हैं उनसे बचाती है। ठीक है, अगली आ जाती है DPT की वैक्सीन, जिसे डिप्थीरिया या फिर काली खांसी या टेटनस भी बोलते हैं। ये 3-in-1 कॉम्बो पैक है, ये तीन खतरनाक बीमारियों से हमें एक साथ बचाती है। चौथे नंबर पर आ जाती है MMR वैक्सीन, जिसे मीजल्स भी बोलते हैं, खसरा या मम्स, रुबेला। बच्चों को लाल दानों और इन्फेक्शन से बचाने का ये अचूक हथियार होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जो कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी से हमें बचाती है। ये लीवर में होने वाला खतरनाक इन्फेक्शन है और ये कैंसर से भी हमें बचाती है। अगली वैक्सीन आ जाती है PCV की, जिसे हम बोलते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन।
इसे ये वैक्सीन हमें निमोनिया से बचाती है।

है। और मैं अगर आपको बताऊं तो बच्चों को छाती के इन्फेक्शन और सांस लेने वाली बीमारियों से बचाने में मदद करती है। वैक्सीन का काम क्या है? अब आप सोच रहे होंगे वैक्सीन शरीर में जाकर ऐसा जादू क्या करती है कि वायरस हमारे अंदर जाता भी और कुछ कर भी नहीं पाता है। तो सुनिए, वैक्सीन हमारे अंदर जाके हमारे अंदर लड़ने वाली जो फौज है वो तैयार करती है। जैसे वो अपने ज़ॉम्बी वायरसेस बनाते हैं, वैसे हमारे अंदर ये वैक्सीन जाके अपनी एंटीबॉडी बनाती है जो कि वायरस के खिलाफ काम करती है। जब हमारे शरीर में जाती है वैक्सीन तो हमारे बॉडी में डिफेंस टीम को तैयार कर देती है। असली डिफेंस टीम को हम इम्यून सिस्टम या कह सकते हैं कि वो जो दुश्मन के लिए अगेंस्ट काम करती है। ये डिफेंस सिस्टम हमारे ब्लड में मौजूद कुछ सेल्स होती हैं उनसे काम करती है। एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एक होती है टारगेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये जो है स्पेशलाइज सेल हमारी बॉडी में बनाती हैं, फाइटर सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में अलग अलग बीमारियों के खिलाफ बनने वाले वायरसेस से हमें बचाती है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो वायरसेस हैं ये ना सिर्फ जिंदगी के दुश्मन हैं बल्कि पूरी के पूरी सोसाइटी में अलग अलग एज ग्रुप को ये अपना शिकार बनाते हैं। मैं आप लोगों को चलते चलते यही मतलब कहना चाहूँगी, इस मतलब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोग को पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग वायरस की गंभीरता को समझें। अपनी जो छोटी मोटी गंदी आदतें हैं, जैसे कि गंदी आदतों में मैं आपको जनरली बताना चाहूँगी, हाथ ना धोना, खाना खाने के पहले हाथ ना धुलना, किचन में बर्तनों की सफाई ठीक से ना रखना, कॉकरोच घूम रहे हैं तो घूमने देना, चूहे वगैरह हैं तो डांस कर रहे हैं किचन में, तो ये सारी चीज़ें ही हमें बीमारी की ओर ले जा रही हैं, ठीक है। तो जैसा कि मिस्ट्री है वायरस की वो बहुत बड़ी है, हमें नहीं पता था कि ये जीव है या निर्जीव है, तो बाद में पता चला कि ये लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। ये हमारी कोशिकाओं पे कब्जा करता है। अब एड्स की बात कर लें तो एड्स भी हमारे शरीर में, एड्स का वायरस भी हमारे शरीर में जाके हमारी ही कोशिकाओं पे कब्जा करता है और हमारी ज़िंदगी पे विराम लगा देता है। आपको भी पता होगा एड्स की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो वायरस है इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। इनका शारीरिक निर्माण बहुत ही आसान सा आपको लग रहा होगा, बैक्टीरिया जैसा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सरल शरीर है भाई। जिसके शरीर में कुछ है नहीं तो क्या ही होगा, मतलब एक छोटी सी मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल। अगर देखें तो इनका शरीर कैप्सूल की तरह या कैप्सिड की तरह होता है, जो कैप्सूल जो है वो प्रोटीन का बना होता है और यही प्रोटीन इनको जिंदा रखता है, ठीक है। कुछ वायरसेस का नाम बता दूं, चेचक का नाम तो सुना ही होगा, स्मॉल पॉक्स वायरस या वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी के नाम तो सुने ही होंगे। इतिहास में सबसे क्रूर वायरस ये माना गया है, इसने करोड़ों लोगों की जान ले रखी है, लेकिन इंसानी इतिहास का ये सबसे बड़ी जीत है कि वैक्सीन की मदद से हमने इसे ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इन्फ्लुएंजा वायरस तो बहुत ही कॉमन है, साल 1918 में आए स्पेनिश फ्लू की तबाही भी इसी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हुई थी, और आज भी हमें सर्दी खांसी आती है तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है, ठीक है। अगला है एचआईवी। एचआईवी के बारे में कौन नहीं जानता, एड्स कॉज करता है, ठीक है। ये सीधे हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि उन कोशिकाओं को, मतलब जैसे अगर किसी के देश को हराना है, सरल भाषा में समझें, किसी देश को लड़ाई में हराना है तो हम क्या करेंगे, जाके उसके घर, उसके देश के बच्चों से लड़ेंगे, बूढ़ों से लड़ेंगे? नहीं, उसकी सेना को हराएंगे, क्योंकि उसकी सेना ही तो हमें लड़ेगी, तो हमने सेना को ख़त्म करना है। तो ये एचआईवी वायरस जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून की जो सेल्स होती हैं उनको टारगेट करता है, तो मतलब जो हमें बचाने वाला उसी को आप मार दोगे तो हम बचेंगे कैसे? तो इसीलिए एड्स जैसी बीमारी का अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। अगला है सार्स कोव 2 कोरोना वायरस, जिसने हाल ही में पूरी दुनिया में लॉकडाउन से लेके ना जाने क्या क्या करा दिया। जब से वायरस आया मतलब दुनिया में रहना सहना सब कुछ बदल गया ना, जिंदगी का एक जैसे कहते पलटी हो गई, जैसे कहते ना कि किसी ने उठा के पूरा सिस्टम ही बदल दिया वायरस के आने से। तो ये वायरस की क्षमता है, और अब भी अगर हम वायरस को गंभीरता से ना समझे तो मतलब आने वाले समय में हमारा भविष्य थोड़ा अंधकार में हो सकता है। अगर दुनिया के सारे समुद्रों के वायरस को इकट्ठा करके एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो एक लाइन, वो लाइन जो है वो 10 करोड़ प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जानते हैं, लाइट ईयर में कितने मतलब वो होती है, कितना दूरी होती है,
10 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी तय हो सकती है और समुद्र के जो खरबों वायरस हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान को वो नुकसान नहीं पहुंचाते। सारे वायरस बुरे नहीं होते, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। कुछ वायरस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को जाके मारते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस होते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक है।

0: और आप सभी को बता दूं कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो हमारे शरीर में जाके हमें बचाते हैं। हमारी गंगा नदी का पानी सालों साल खराब क्यों नहीं होता है? इसमें बैक्टीरिया वायरस की वजह से ही ये पानी खराब नहीं होता और ये वायरस इन्हें बचा के रखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं वायरस की बहुत तारीफ नहीं करूंगी फिलहाल, वायरस की बुराई करने के लिए मैं बैठी हूं, लेकिन आपको नुक्कड़ नाटक की तरफ ले जाना चाहूंगी जहां से हमारी बातें शुरू हो जाएंगी और हम जानेंगे वायरस को और ज्यादा। तो आज मैं आपको वायरस की जो गंभीरता है वो बताने के लिए, और वायरस ना दिख के भी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, इस बात को बताने के लिए एक छोटे से नाटक की ओर ले जा रही हूँ, एक छोटा सा प्ले जो आपको एक मैसेज देगा कि वायरस क्या है और वायरस क्यों हमारे आसपास नहीं होना चाहिए और वायरस को हमारे आसपास हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक नाटक की ओर, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा जिससे ऐसा ना हो कि आप कोई इम्पोर्टेंट पार्ट छूट जाए और आप फिर रिग्रेट करते रहे, ओह माय गॉड विज्ञान शाला का ये वाला पार्ट छूट गया। तो लेट्स गो, और आप जो ट्यून कर चुके हैं 89.6 FM, ये ट्यूनिंग आपकी बरकरार रहनी चाहिए अगले 4-5 घंटे के लिए, क्योंकि बहुत देर तक आपका बहुत सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है।
1: चिंटू कितनी बार कहा है बाहर से आकर हाथ धोया करो, स्कूल से आते समोसे पे टूट पड़े।
2: अरे मम्मी आप भी ना, ये हाथ धोने का क्या नाटक है, इतनी छोटी सी चीज, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, देखिए मेरे हाथ क्लीन है एकदम।
3: हाँ हाँ बिल्कुल सही चिंटू बच्चे, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे जैसे लापरवाह लोग, तुमने हाथ नहीं धोए और मैं सीधे तुम्हारे शरीर के अंदर दाखिल हो गया।
2: अरे ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है, कौन हो तुम?
3: मैं हूँ वायरस, इतना छोटा कि तुम मुझे नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन धमाका बड़ा करता हूँ। याद है पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त को इन्फ्लुएंजा फ्लू हुआ था, वो मेरी ही मेहरबानी थी, और जो तुम्हें अभी कॉमन कोल्ड जुकाम और हल्का बुखार आ रहा है ना, वो भी मेरा ही जलवा है।
1: देखा चिंटू, ये वायरस हवा में गंदे हाथ पर और छींकने खांसने की बूंदों से फैलता है, अगर एक बार ये शरीर में घुस गया तो डेंगू चिकनगुनिया और ना जाने क्या क्या बीमारियां फैला देता है।
3: हाँ हाँ बिल्कुल सही, मेरा तो खानदान बहुत बड़ा है, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने के लिए मेरे पास मच्छरों की फौज है, तो पोलियो और हेपेटाइटिस के लिए दूषित पानी और खाना, एक बार हम शरीर के सेल्स कोशिकाओं पर कब्जा कर लें फिर तो बंदा बिस्तर पर।
2: नहीं नहीं मुझे बिस्तर पर नहीं पड़ना, मुझे तो कल क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे इस वायरस से बचाओ, मम्मी डॉक्टर अंकल को बुलाओ।
4: घबरा मत चिंटू बेटा, जब तक प्रोफेसर साबुन और विज्ञान शाला के नियम यहाँ है तब तक ये वायरस तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता।
3: अरे बाप रे, ये साबुन कहाँ से आ गया, मुझे इसके झाग से बहुत डर लगता है।
4: हाँ डॉक्टर वायरस अब तुम्हारी खैर नहीं। सुनो चिंटू, वायरस से बचने का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता और साफ सफाई, खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खांसते और

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
9: गोंडा शहर की धड़कन।
10: सो लिसनर्स, इस छोटे से नाटक से हमें ये तो पता चल गया कि वायरस जो है वो ना सिर्फ हमारे आसपास है, बल्कि आसपास होने के साथ साथ वो बहुत कॉन्फिडेंट भी है कि अगर आपने हाथ नहीं धोया तो वो आपके अंदर सीधे जाएगा। आपने जोर से पब्लिकली अच्छू किया, मतलब एक पूरी की पूरी क्राउड को आप अपने साथ बीमार करने के लिए तैयार कर ले गए। तो ये तो रही वायरस की कहानी, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को वायरस के साथ साथ ये बात अपने साथ भी रिलेट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कई मर्तबा हमारे साथ हो जाता है कि हम ध्यान नहीं देते, ट्रेन में बैठे हैं, नाक में उंगली डाल रहे हैं, फिर पता नहीं क्या मोबाइल छू लिया। सबसे खास चीज मैं जो बताऊंगी, जो मुझे मेरे अनुभव से लगता है कि हाँ ये हमें बीमार करती है, जो कॉमन गंदी आदतें हैं लेकिन हमें पता नहीं है, हमारी रेगुलर यूज की चीजों को हमें रेगुलर सैनिटाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप को रेगुलरली सैनिटाइज करना चाहिए। मोबाइल फोन है, उसको भी सैनिटाइजर से क्लीन करना चाहिए। जिस भी एरिया में हम रेगुलर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जिस चीज को यूज कर रहे हैं, सोफे पे हाथ रखें, तो उन सब को सैनिटाइज करने की, साफ रखने की जरूरत है, जिससे कि आप आने वाले समय में बीमार बिल्कुल भी ना पड़ पाएं। और मैं अब कुछ कॉमन वायरसेस के बारे में भी आप लोग को बताना चाहती हूँ, उन वायरसेस की बात करना चाहती हूँ जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया में तहलका मचा रखा है, बल्कि हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वो भी बड़ा वाला यानी

कि हमें सोचना पड़ेगा कैसे हम वायरसेस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ हंटा वायरस की, जो कि आज की डेट में सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस वायरस की बात करने वाली हूँ, ये कैसा वायरस होता है। जी हाँ, ये वायरस आपके आसपास अपनी जो कहते हैं ना कि दुनिया पसार रहा है, ठीक है। और ये वायरस जो है, इससे जो होने वाली बीमारियां हैं वो धीरे धीरे आसपास फैल रही हैं और चूहों से ये हम तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता दूं कि कैसे कैसे ये इसके सिम्टम होते हैं, क्या इसका प्रिकॉशन है और कैसे हम खुद को बचा सकते हैं हंटा वायरस से। जी हाँ, नाम ही जैसा है वैसा ही इसका काम भी है और ये हमें बीमार भी उसी तरह से कर रहा है और हमें इससे बचने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए हम इसके सिम्टम, कॉज और इसके प्रिकॉशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे हमें हंटा वायरस हर तरह से परेशान कर रहा है आज की डेट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूहों से संक्रमित होने वाला ये वायरस हमारे मल मूत्र के संपर्क में आने से फैलने की एक कह सकते हैं कि दुर्लभ या गंभीर बीमारी है। इसके शुरुआती लक्षण जो हैं वो फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक थकान और बहुत सारे मतलब ऐसे लक्षण हैं जो वैरी करते हैं इंसान से इंसान। और इसके लक्षण जो हैं प्रारंभिक 1 से 8 दिन में यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये दिखना शुरू हो जाते हैं। तेज बुखार आना, ठंड लगने लगना, शरीर और पीठ और जांघों में जहां भी मस्कुलर एरिया वहां बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्रैम्प्स होंगे। इसके साथ ही साथ आपको थकान बहुत ज्यादा लगेगी, कमजोरी बहुत ज्यादा होगी, पेट में सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, मतली होगी, उल्टी होगी, दस्त होगा, ये सारी चीजें। अब इसमें जो गंभीर चरण है मतलब बहुत क्रॉनिक इसका पार्ट कौन सा है, फेफड़ों में और हृदय की समस्याएं बढ़ जाती हैं। हंटा वायरस, इसको HPS भी बोलते हैं, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इसमें जो है हमारे जो फेफड़े हैं वो इफेक्ट होते हैं वायरस से, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जकड़न हो जाती है, तेज खांसी आती है और फेफड़ों में पानी जमा होने लगता है। अब बात आती है इसकी, क्या कोई वैक्सीन है? इस वायरस की अभी तक कोई पर्टिकुलर वैक्सीन तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ इलाज से लोग इसको कंट्रोल करते हैं। अगर CDC की यानी कि सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की बात करें तो चूहों को और उनके घोंसलों को साफ करने से और दस्ताने पहनकर उन वायरसेस वाले चूहों को एक दूसरी जगह शिफ्ट करने से हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को इस वायरस से बचा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, जागरूक तो हम सभी को होना पड़ेगा क्योंकि ये वायरस हमें मतलब ये कह सकते हैं कि मौत तक ले जा सकता है। और फैलने का मैंने आपको जरिया बता दिया कि ये चूहों से फैलने वाला मतलब वायरस है। इसके अलावा थकान भी इसमें लगती है और इसको ध्यान रखने के लिए हम बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम घर में साफ सफाई रखें, खाने को खूब ढक के रखें, ब्लड टेस्ट वगैरह रेगुलर करा लें अगर हमें लग रहा है। अच्छा, क्या क्या और सिम्टम इसके दिख सकते हैं? आपकी बॉडी में ब्लड काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो थोड़े बड़े हो जाएंगे नॉर्मल साइज से, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल भी आपका कम हो सकता है, ठीक है। अब इलाज क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीजन थेरेपी हो सकती है, डायलिसिस हो सकता है, ECMO हो सकता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है आपकी बॉडी में कम कर सकता है। अच्छा, अब और क्या कर सकते हैं आप लोग खुद को बचाने के लिए? भाई साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने एक नाटक के माध्यम से आपको बताई, उस बात पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये तो बात हो गई हंटा वायरस की और मुझे पता है कि आप लोग इस बात पे अब थोड़ा ज्यादा फोकस भी करेंगे और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इग्नोर करने वाला है। अब मैं बात करने वाली एक और वायरस की जिसका नाम है इबोला वायरस, जो कुछ दिनों के लिए तो दुनिया से थोड़ा गायब सा हो गया था, या कह सकते हैं इसके जो केसेस थे लोगों में, बीमारियों के केसेस जो थे वो कम हो गए। लेकिन WHO के मुताबिक कांगो लोकतांत्रिक गणराज DRC और युगांडा में फिर से इबोला ने अपना पैर पसार लिया है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ने ये बात घोषित की है, ठीक है। ये स्थिति वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर और चिंताजनक स्थिति बताई जा रही है क्योंकि इबोला वायरस बहुत ज्यादा तेजी से लोगों के अंदर कहते हैं ना कि अपना संक्रमण करता है और डेथ केसेस भी बहुत जल्दी इससे बढ़ जाते हैं। इबोला का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है बंडी बुग्यो वायरस, ठीक है। नाम थोड़ा सा खतरनाक सुनने में लग रहा होगा पर ये इसका नया
जो वेरिएंट है वो सामने आया है। ठीक है, फिलहाल अगर देखा जाए तो इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं तैयार है। इतिहास में अगर देखें तो केवल 3 बार ऐसा हुआ है जब इसका दुर्लभ वेरिएंट की पहचान की गई है। ठीक है, इबोला के लक्षण क्या हो सकते हैं? 2 से 21 दिन के भीतर इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, सिर दर्द। इसके अलावा उल्टी, लिवर किडनी में समस्या, आंतरिक या बाहरी रक्त स्राव हो सकता है और अलग अलग चरण में हमारे शरीर में फैलता है। इबोला को कैसे फैलते हुए हम जानते हैं, मतलब कैसे ये फैलता है, लोगों तक कैसे पहुंचता है? जानवरों से इंसानों तक, फिर मानव से मानव तक, मतलब इंसान से इंसान, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये क्या करता है, कॉज करता है डिजीज, जानवरों से इंसानों में, इंसानों से जानवरों में, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। ये वायरस जो है फल खाने से, ये फन खाने वाले जैसे चमगादड़, जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता है। संक्रमित जानवर जैसे बंदर, चिंपैंजी से भी लोगों के खून में जा सकता है। ठीक है, बंदर काट लेता है ना तो भी ये बीमारी हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति के खून या पसीने या लार के सीधे एक हेल्दी इंसान के कॉन्टेक्ट में आने से भी ये फैल सकता है। अब मैं बात करूंगी संक्रमित कपड़े, जैसे आप कपड़े वगैरह ये सारे बिस्तर भी शेयर कर रहे हो ना तो भी ये वायरस फैल सकता है। ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारे वायरसेस का सुना होगा जो सलाइवा से नहीं फैलते, लेकिन ये सलाइवा से और हमारे छूने से, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, छुआछूत वाली बीमारी है ये। ठीक है, रोकथाम की बात करूँ तो रोकथाम और नियंत्रण की बात हमें अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि संक्रमित व्यक्तियों को, जो भी इंसान जिसको इबोला वायरस ने इन्फेक्ट किया है, उसे हमें पब्लिकली थोड़ा दूर रखना होगा, 21 दिन तक निगरानी में रखना होगा। मृतकों को सुरक्षित अंतिम संस्कार करने के बाद संक्रमित क्षेत्र को पर्टिकुलरली सैनिटाइज करना होगा। इबोला के लिए अरवेबो और जबडीनो जैसी वैक्सीन्स बनी थी, उनका प्रयोग करके हम बंडी बुग्यो वेरिएंट का भी थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, प्रॉपरली क्योर हम नहीं कर सकते। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी WHO ने जो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद की हैं इसके लिए, क्योंकि ये बीमारी पेंडेमिक हो जाएगी तो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब मैं इससे होने वाली मृत्यु की बात करना चाहती हूँ। अब तक 300 से अधिक संदिग्ध मामले मिले हैं जिसमें 88 की मौत हो चुकी है। अधिकांश मामले कांगो के इटूरी प्रांत के हैं, लेकिन अगर मैं युगांडा की बात करूं, युगांडा की राजधानी जो कंपाला है वहां पे भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे आने वाले आंकड़ों में भी वृद्धि होगी। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए है वो ये है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले समय में आपको अगर बीमारी हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी खुद भी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जो कहते हैं ना कि साफ सफाई, हाइजीन की ध्यान नहीं रखते हैं। और ज्यादातर हम अपनी हाइजीन को ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तभी हम बीमार पड़ते हैं, छींक आती है, तो ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लमेटिक दिखती हैं। अब मैं आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहती हूँ कि हाल ही में कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें सुनने में आया है कि जो आपका वाटरमेलन है, जिसे तरबूज भी बोलते हैं, गर्मियों में काफी ज्यादा हम लोग खा रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, सतर्क करना चाहती हूँ कि वाटरमेलन में कुछ बैक्टीरियाज ने अपना घर बना लिया और उस बैक्टीरिया का नाम है सेलमेनला प्रोलीमेलन करके नाम है, मुझे पूरा नहीं, लेकिन हाँ सेलमेनला बैक्टीरिया है ये मुझे पता है। और ये बैक्टीरिया उस तरबूज से आपके पेट में जा सकता है और आपके बॉडी का तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, और ये फैटल भी है, मतलब ये मृत्यु भी कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा है। तो कुछ देर तक खुला रहने वाला जो वाटरमेलन है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। वाटरमेलन कट किया आपने तो उसको तुरंत कंज्यूम करिए। देखिए, अगर वाटरमेलन पहले से उसकी सतह साफ नहीं है तो आप उसको नहीं काटेंगे। वाटरमेलन को लाने के बाद कुछ देर तक ठंडे पानी में रखेंगे, साफ करेंगे अच्छे से। मैं तो कहती हूँ उसे 2-3 बार अच्छे से धुलिए, उसको कुछ देर के लिए पानी में रखिए, फिर खाइए। ठीक है, और अगर तरबूज का स्वाद थोड़ा सा खट्टा या झाग लग रहा है तो वो तो बीमारी का घर 99% है ही। तो आपको पहचानना है कि कौन सा तरबूज खाने लायक है और कौन सा तरबूज खाने लायक नहीं है। तो ये बहुत सारी जानकारी देते हुए अब मुझे आप लोगों से विदा लेने का भी समय हो चुका। आज तो बहुत सारी बातें हो गई, नुक्कड़ नाटक भी आपको आपके सामने रख दिया जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली।
और अगर मैं बात करूं जानकारी की, तो जानकारी तभी शुरू होती है जब हम जानना शुरू करते हैं। तो जैसा कि चिंटू की बात हमने दी, चिंटू ने हमें बहुत कुछ सिखाया, डॉक्टर वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रोफेसर साबुन ने भी बहुत कुछ सिखाया। तो हमारे जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने आके आज एक छोटी सी कोशिश की है जागरूकता के लिए, उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी आरजे बीना की तरफ से। और वायरस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही ही उनकी ताकत बनती है। मतलब आप सोच रहे होंगे वायरस छोटा है तो कैसे वो बड़ा बनता है, उसे बड़ा हम बनाते हैं अपनी लापरवाहियों से। तो बदलते मौसम में आपको ख्याल रखना है, छींकते खांसते समय रुमाल का प्रयोग करना है, सतर्कता बरतनी है। मैंने कहा ना, बढ़ता तापमान इनके लिए समझ लीजिए पार्टी का टाइम है। जैसे कहते हैं ना कि अरे मौसम आ गया शादियों का, तो शादियों का मौसम नहीं आता है, हमारे लिए पार्टी का मौसम आता है। हम लोग बहुत खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसे ही बढ़ता तापमान इनके लिए पार्टी है, क्योंकि बढ़ते तापमान में आसानी से संक्रमण फैला सकते हैं और टेम्परेचर के साथ अपनी रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। और मैं बताऊं तो आज मेरी विज्ञान शाला की लैब पूरी भरी हुई थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाह रहे थे, तो जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली। तो वो अदृश्य छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनसे हमें बचना है, उनके लिए मुहिम हम सभी को एक साथ चलानी है। तो क्या कहते हैं आप लोग, मेरा साथ दे रहे हैं या फिर यहाँ पे विज्ञान शाला में आके बस गाने सुन के जाने वाले हैं? तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे थे विज्ञान शाला, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। बाय बाय।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टर्स

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: अरे ओ मेरे प्यारे शिष्य सद्गुणी
3: जी। गुरुदेव,
2: कबीर का कोई दोहा तो सुनाओ।
3: अभी सुनाता हूँ। कबीर तेरे दुनिया में, कबीर तेरे दुनिया में कैसे कैसे हैं इशू, कोई मांगे कपड़ा लता तो कोई मांगे टिशू टिशू टिशू।

0: ऐसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
4: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में, क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कम्प्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमैटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

किसी को कोई वक्त कहता है, किसी को कोई वक्त का पैगाम कहता है, लेकिन कोई है जो हर पल आपके साथ रहता है। जी हाँ, वो जो आपसे बेहद प्यार करता है, वो जो बेहद आपसे प्यार करता है। सो वेलकम, आप सभी का स्वागत है आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला, आज बिना वाला में। एंड यस, आज बात होगी बहुत सारी आपसे प्यार वाली। सो आज की शुरुआत प्यार के अंदाज से होगी, यानी कि प्यार की कुछ ऐसी कहानियों से होगी जिनका मतलब कहते ना कि जिनकी शुरुआत तो प्यार से हुई लेकिन बीच में तन्हाई आई, फिर वापस से प्यार ने दस्तक दी। जी हाँ, जैसा कि मैं हर बार हर मंगलवार को बताती हूँ कि कभी कभी हम लोग आपको बताते हैं कि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो सच्ची हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो काल्पनिक हैं। काल्पनिक कहानियाँ सच्ची जैसी लगती हैं और सच्ची कहानियाँ कभी कभी काल्पनिक जैसी लगती हैं। तो आज की कहानी सच्ची होने के बावजूद आपको ऐसी काल्पनिक लगी। देखिए, काल्पनिक चीज़ें या इमेजिनरी चीज़ें हमें वही लगती हैं जो लगता है यार ऐसा कहाँ हो सकता है। तो ऐसा कहाँ हो सकता है, उसी के लिए ये कहानी आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और प्यार की वो हद बताऊँगी जिस हद से गुज़र के बहुत रेयर कहते हैं ना कि दुनिया में, मतलब आपने वो पढ़ा होगा इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं ना बुद्धिमता, बुद्धिमानता, या फिर इंटेलिजेंस को एकदम एग्जैक्ट वर्ड क्या कहते हैं जरा मुझे आप लोग बताइए। मतलब बुद्धिमान अगर व्यक्ति है तो कहते हैं ना कि जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी वाले होते हैं जिनका IQ 120-130 के ऊपर होता है, हाँ, तो बुद्धि लब्धि उसको बोलते हैं ना IQ को, तो वो जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो बहुत कम होते हैं। ऐसे ही प्यार के केस में भी है भाई, ऐसे मतलब बहुत कम लोग हैं जो प्यार को सच्चे दिल से निभाना जानते हैं और प्यार के लिए हद से गुजरना जानते हैं। और एक कहानी तो मैंने आप लोग को प्यार के हद से गुजरने की सुनाई ही थी, लेकिन आज की कहानी उससे भी बिल्कुल अलग और जुदा है। मतलब एक इंसान ऐसा है प्यार में जो अपने रिश्ते को तोड़ के कहीं दूर भागना चाहता है, और दूसरा इंसान ऐसा है जो प्यार के सफ़र में हर वो चीज़ करना चाहता है जिससे कि वो अपने, मतलब कहते हैं ना कि सामने वाले पार्टनर को वो किसी तरह वो दूर ना जाने दे। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव नहीं करती कि लोग ऐसे होंगे कि सामने वाला आपको बिट्रे कर रहा है, धोखा दे रहा है, आपके पास रहना भी नहीं चाह रहा, फिर भी सामने वाला क्या कर रहा है उसके लिए उसकी खुशी जहाँ भी है वो ढूंढने को तैयार है। आपको लगता है कि कोई ऐसा होगा दुनिया में जो सामने वाले का नेगेटिव, कहते हैं ना कि प्लस माइनस होने के बावजूद भी प्लस ले आए? हाँ, माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, लेकिन माइनस और प्लस वापस से प्लस हो जाए, ये प्यार में ही हो सकता है। और प्यार में कुछ ऐसे किस्से हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यार हाउ इट वॉज पॉसिबल। तो आज की कहानी भी एक ऐसे सच्चे प्यार की है जो हमारे, मतलब इंडस्ट्री से ही है। जैसे हम अक्सर, मतलब कहते हैं ना कि जब प्यार की कहानी सुनाते हैं तो बॉलीवुड काफ़ी बदनाम हो जाता है, कहते हैं यार बॉलीवुड में तो प्यार सच्चा कहीं कोई दिखता ही नहीं है, जहाँ देखो सब 2-3 शादियाँ करके बैठे हैं, प्यार एक बार होता है कि 4 बार होता है, बहुत लोग उसे कहते हुए सुना है मैंने। लेकिन सच में प्यार की ऐसी अमर कहानियाँ बॉलीवुड में हैं जिनके बारे में हम पढ़ें, समझें, जाने ना, तो हमारी ज़िंदगी सवर सकती है, सच बता रही हूँ। आप कहेंगे बड़ी कॉन्फिडेंटली, आरजे बिना आज ऐसा कह रही हैं जैसे लगता है कि क्या, मतलब हाँ, मतलब मैं 2 कहानियाँ आज आपको सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जिसमें सामने वाला बिट्रे करता जा रहा है, धोखा देता जा रहा है, लेकिन एक पार्टनर है जो उसे पाने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रयास कर रहा है जो उसे नहीं करने चाहिए थे। तो दोनों ही कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत गजब का इम्पैक्ट डालेंगी। तो फिलहाल कौन कौन रेडी है कहानी सुनने के लिए? फिलहाल तो मेरी कहानी यही है कि आपसे शुरू आप पे ख़त्म है। यानी कि आरजे बिना शाम, मतलब मेरी, जैसे कहते हैं किसी की दिन की शुरुआत हो रही, मेरी शाम की शुरुआत होती है शाम से, अगली शाम तक मेरा दिन जो पूरा होता है। सो फाइनली मेरी शाम कल की बीती है और आज की शाम के साथ मैं वापस हूँ आप लोग के बीच। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एंड यस, अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है जिसको सुन के या सुना के आपका दिल भी भर आता है, या आपको लगता है कि इसे तो दुनिया को जानना चाहिए। अच्छा, आपके दिमाग में कभी कभी आता है ना, आरजे बिना इतनी सारी कहानियाँ क्यों ही आखिर सुनाती है? मॉरल स्टोरी हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है,
समझा के जाती है। और सीखने और समझाने के लिए हमारे मतलब गुरुजन कहते हैं, हमारा जो शिक्षा मतलब जो हमारी कहते हैं ना एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि कहानी से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, नहीं कहानी से बड़े भी बहुत जल्दी सीखते हैं। सो कहानी ऐसी सुनाऊंगी जो मेरे नहीं आपके नहीं हर किसी के जीवन में इम्पैक्ट डालेगी, और हम अपने रिलेशनशिप्स को लेके जो बहुत बड़ा सा मतलब एकदम कहते हैं ना दिमाग में एकदम मैस हो रखी खिचड़ी बनी है यार, क्या है सही क्या है गलत समझ ही नहीं आता, तो आज सही गलत के बीच में आपको समझ बनाने वाली कहानी सुनाऊंगी मैं। तो आप कहेंगे इतनी भूमिका बना दी आज बीना ने, क्या कहने वाली क्या सुनाने वाली है। फिलहाल ये गाना सुनिए, जिस गाने को सुनने के बाद आपके मन में भी आएगा कि यार आज बीना ने गाना बड़ा अच्छा सा सुना दिया, अब तो पक्का भरोसा हो गया, अब तो पक्का भरोसा हो गया कि कहानी मस्ती होगी। तो चलिए सुनते हैं, प्यार की दास्तां शुरू होती है आहिस्ता से, तो गाना भी मैं सुनाऊंगी आपको आहिस्ता से, जिसको सुनने के बाद आपके मन में भी लगेगा यार प्यार की कहानी तो ऐसे ही शुरू होनी चाहिए। लेट्स एंजॉय। और हाँ भाई, गोंडा शहर में रिमझिम गिरे सावन भी हो गया है, और रिमझिम गिरे सावन से ही शुरुआत करते हैं पहले, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे आप लोगों से। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ओल्ड सॉन्ग जो हमारे सिचुएशन को रिलेट कर रहा है। मतलब मैं आते समय भीग गई हूँ लिटरली, अभी मेरे कपड़े सूख रहे हैं फिलहाल। तो रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, इसके बाद क्या होगा ये तो आप लोग बताइए। सो अमिताभ बच्चन की उस फिल्म का गाना जिसने धूम मचाई थी अपने टाइम में, और स्पेशली म्यूज़िक की बात करें इस फिल्म के गानों ने सबके दिलों पर राज किया था। फिल्म का नाम है मंजिल, और अमिताभ के साथ मौसमी की केमिस्ट्री इस फिल्म में और अदाकाराओं से कम नहीं है, बहुत प्यारी लग रही है मौसमी इसमें। तो चलिए एंजॉय करते हैं 1917 की फिल्म मंजिल से ये गाना लता की आवाज़ में।

सो आहिस्ता बातें करते करते शाम तो गुजरती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर प्यार किसी से हो तो वो लंबे सफ़र तक चलता है। तो पहला मॉरल आज की कहानी का यही है, पहले बताती हूँ कि प्यार की शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए, कभी भी किसी रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना अपनी जिम्मेदारियों को किसी पर थोपना चाहिए, ना अपनी ज़रूरतों को किसी पर थोपना चाहिए, और ना ही सामने वाले के मतलब ख्वाहिशों को तुरंत मानते जाना चाहिए कि भाई सामने वाले ने कहा कुएं में कूदना है, भाई मुझे कूदना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता।

0: तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पे जहाँ से वापस आने का आपका मन तो नहीं करने वाला, फिलहाल मेरा भी नहीं करने वाला। और जब मन ना कहे कहीं से आने का तो कुछ देर वहाँ रुक जाना चाहिए। तो चलिए साथ में चलते हैं और वापस आने की भी तैयारी साथ में ही करेंगे। और देखिए आज की शुरुआत होगी मतलब म्यूज़िक, मुझे ये लगता है यार म्यूज़िक भी प्यार का ज़रिया है। आपको क्या लगता है, गाने सुनने के बाद भी किसी से प्यार हो सकता है क्या, किसी की आवाज़ सुनने के बाद भी किसी से प्यार हो सकता है क्या? हो ही सकता है। तो चलिए पहली कहानी जो है मैं थोड़ी सी मतलब दर्द भरी सुनाती हूँ। दर्द भरी कहानी आपको ना मैसेज देगी, अच्छा वाला मैसेज देगी कि भाई जो आपको ज़्यादा परेशान करे ना उससे तो बात नहीं करने का। क्या मुकेश जी आपको मेरी आवाज़ में क्यों हॉरर कहानी सुननी पसंद है, मैं तो स्वीट स्वीट कहानियाँ, इतनी प्यारी सी कहानियाँ सुनाती हूँ, आप लोग को तो हमेशा मेरी आवाज़ में डर ही महसूस होता है। क्यों क्यों, मतलब मैं तो स्वीट कहानी सुनाने के लिए आई थी, आपको हॉरर स्टोरी सुननी है क्या है ये? मतलब माना कि मेरी आवाज़ थोड़ी हॉरेबल भी है, पर ये थोड़ी ना कि मैं हॉरर स्टोरी सुनाती फिर शाम के समय जहाँ लोग प्यार करने के बारे में सोचते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करती हूँ आज मैं एक कहानी की, जो कि मतलब अगेन एक सेलिब्रिटी की है। तो चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी लड़की की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने प्यार में बहुत कुछ सहा और अपने प्यार को पाने के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या मतलब सफ़र किया। तो सबसे पहले तो दिव्यांका त्रिपाठी की आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। और दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा की कहानी। फिलहाल तो दिव्यांका की शादी विवेक दहिया से हुई है, पर इनकी फर्स्ट लव स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। तो चलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस कहानी से कुछ सीखें, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखें। और दिव्यांका त्रिपाठी जो थी वो स्टार्टिंग में मतलब उन्होंने मतलब शुरुआत की, एक सीरियल आया था, टीवी सीरियल था बनू मैं तेरी दुल्हन, और इस सीरियल में दिव्यांका त्रिपाठी लीड रोल थी और साथ में इनके शरद मल्होत्रा थे। और 2006 में जैसे सीरियल शुरू हुआ धीरे धीरे इनके रिश्ते की भी बुनियाद शुरू हो गई। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, कई बार सेट पे एक दूसरे के साथ घंटों बैठ के बात करना और रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों एक जैसी महसूस करना बड़ा मज़ेदार लग रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों ने सोचा कि लाओ यार लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का जब सोचा तो लगा कि हाँ यार चलो हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। तो दोनों लोग कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, सोशल मीडिया से छुपा के रखा अपना प्यार, कभी लोगों के सामने जाहिर नहीं करते थे, फिर फाइनली एक दूसरे से इजहार किया सबके सामने भी। लेकिन शरद का प्यार शायद झूठा था। शरद उन्हें कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि मिसगाइड कर रहे हैं या उनसे प्यार नहीं निभाना चाहते। इनकी लव स्टोरी अब लोगों को पता चल चुकी थी और दिव्यांका के मन में था कि वो अपनी जो पहला प्यार है उसे वो कभी नहीं जाने देगी। जैसे टीवी पे कोई कपल आता है तो हमें मतलब दुनिया की नज़र में रहता है ये तो असली में कपल होंगे, तो वो सच में असली में कपल बन चुके थे। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपनी रजामंदी से एक दूसरे को पसंद किया था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया शरद कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने लगे, शरद शायद किसी और से प्यार करने लगे थे। दिव्यांका कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जब उनका प्यार जा रहा था तो उन्होंने हर प्रयास किया, खुद को बदलने की कोशिश की। उन्होंने ये तक कहा कि मैं टीवी शो छोड़ देती हूँ तुम अगर कहो, उन्होंने ये तक किया कि मतलब जो जो वो कहते थे वो सारी चीज़ें मानती जा रही थी, और सिर्फ इसलिए कि शरद उनके साथ रहें, शरद उनको छोड़ के कहीं ना जाएं। पर जो कहते हैं ना कि किस्मत के लिखे कोई बदल नहीं सकता, तो ऐसा ही दिव्यांका के साथ भी था। दिव्यांका की ज़िंदगी में कुछ और लिखा था और इसीलिए दिव्यांका वो चीज़ बदलने को तैयार नहीं थी। एंड फाइनली एक बार ऐसा आया कि मतलब दिव्यांका को लगा कि दिव्यांका से किसी ने कहा कि यार मतलब तुम एक काम करो, किसी मतलब तांत्रिक के पास जाओ और तांत्रिक जो है वो तुम्हें कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन देगा। तो वो यहाँ तक चली गई कि मतलब तांत्रिक के पास गई और शरद को वापस बुलाने का मतलब ये सब। तो इन्होंने कई साल इन सब चीज़ों में बिताए। फाइनली 8 साल बाद दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और दिव्यांका को ये सीख मिली कि अगर कोई इंसान आपको अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाना चाह रहा है या कोई आपसे मतलब बिट्रे कर रहा है तो आपको बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए और किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं निभाना चाहिए। और फाइनली दोनों का मतलब ब्रेकअप हो गया, वो भी बहुत दर्दनाक, जिसमें एक इंसान बहुत ही लायल था और दूसरा इंसान एकदम मतलब कहते हैं ना कि तोड़ने वाला था। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा आपसे मतलब अपसेट है या वो आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहता तो आपको भी फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट कहानी के लिए तैयार रहिए, लेकिन अभी पहले ये वाला गाना तो सुन लीजिए, फिर बताइए कि आपको क्या लगता है दिव्यांका ने सही किया, अगर सही ना करती तो उन्हें विवेक धैया कैसे मिलते। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ आपके और मेरे फेवरेट सिंगर विशाल मिश्रा।
1: ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है, सब झूठ बताता है।

जी रही हूँ ये दुआ करती हूँ, जब तक जी रही हूँ ये दुआ करती हूँ, तू हर रोज मरे मैं जिस तरह मरती हूँ।

मतलब सोचने पे मजबूर कर देती हैं ऐसी कहानियाँ कि यार किसी की लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है, और कैसे इंसान मतलब तड़पते हुए भी फिर किसी के लिए क्या इमेजिन करता है। फिलहाल पहली कहानी ने तो आपको रुलाया, लेकिन दूसरी कहानी डेफिनेटली हंसाने वाली है, और हंसाने के साथ साथ आपको बहुत बढ़िया सा मॉरल देने वाली है। ऐसा मॉरल जिसको सोच के समझने के बाद आपके मन में आएगा यार इसे तो होना चाहिए। तो गुड इवनिंग कमल, कैसे हैं? और मुकेश, ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, देखिए बारिश ऑलरेडी हो चुकी है और अभी आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बारिश ना होती तो मैं कहती कि हाँ भाई थोड़ी आंसुओं की नदियाँ बहाई जाएँ और गोंडा शहर में थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश की। और कहते हैं कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, कहते हैं कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो दो धड़कनों के बीच पलती हैं। ना कोई वादा बड़ा, ना कोई शेर, बस आंखों की भाषा में छिपा होता है प्यार का दौर। कभी बारिश की बूंदों में मुस्कुराती हैं, कभी बारिश की बूंदों में मुस्कुराती हैं, कभी चाय की चुस्कियों के साथ गुनगुनाती हैं, कभी रूठ कर भी अपनी पहचान बनाती हैं। यही तो मोहब्बत का वो हर पल है जो जीना सिखाती हैं। मिलना अगर किस्मत है तो निभाना इबादत है। जो हर मुश्किल के साथ खड़ा रहे वही सच्ची मोहब्बत की खूबसूरत आदत है। प्यार की कहानी का अंत एक जैसा होना ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर सच्चा प्यार दिल में हमेशा ज़िंदा रहे ये भी ज़रूरी नहीं। इसलिए प्यार कीजिए सम्मान के साथ। यही बात खूबसूरत प्रेम कहानी की बात खास बनाती है। सो चलिए अगली कहानी की ओर रुख करते हैं। अगेन एक रियल स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। कहानी काफ़ी सालों पहले शुरू होगी, 90s में शुरू होगी, और पता नहीं क्यों मतलब मुझे ये बात कहने में थोड़ा सा मतलब थोड़ा मैं नर्वस फील कर रही हूँ, या कहिए कि थोड़ा सा शौक में हूँ कि जितनी भी अच्छी या सच्ची कहानियाँ वो 90s से क्यों शुरू हुई हैं, क्यों नहीं 26 और 2020 से कोई कहानी ऐसी शुरू हुई जो बहुत ही रियल और मतलब अच्छी है। हैं, ऐसे नहीं है, बस परसेंटेज थोड़ा सा कम है। तो चलिए उस परसेंटेज के साथ आगे हम लोग चलते हैं, जितना भी परसेंट है, लेकिन अभी तो 90s वाली कहानी से ही शुरू करूँगी क्योंकि 90s वाली कहानी ने बहुत कुछ सिखाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक ऐसे इंसान के बारे में पहले बताऊंगी जो अपने सपनों को लेके बड़े शहर गया है, और कई बार ऐसा होता है, हम लोग यूपी बिहार वाले हैं तो हमें पता है कि सपनों को लेके शहर जाना क्या होता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं घर में रिश्तेदार में कोई ना कोई गया ही होगा कि भाई ये करना है चले जाओ दिल्ली, अच्छा वो करना है चले जाओ मुंबई, अच्छा कपड़े का काम करना है चले जाओ गुजरात सूरत, ये सब तो बड़े शहरों में भेजने का हमारे यहाँ मतलब ट्रेंड है, और शहरों में जाके हमने बहुत कुछ किया भी है। क्यों ऐसा है भाई? अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, सही समय पे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है, पर मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, वी आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स दैट रिक्वायर। तो कोई बात नहीं, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करती हूँ 90s के उस दौर की जब एक लड़का अपने घर से शहर जाता है एक क्रिकेटर बनने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं महेंद्र सिंह धोनी की कहानी नहीं है ये। तो एक लड़का अपने घर को छोड़ के जाता है शहर क्रिकेटर बनने के लिए, और इत्तेफाक से वो बनना भी चाहता है, बहुत हार्डवर्क भी करता है, सपनों को लेके जाता है, भारी मेहनत करता है, और जब भी आप बाहर जाते हो तो अपनी पहचान बनाने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। और जैसा कि उस लड़के की बात करूं, वो मतलब ऐसे बैकग्राउंड से था जहां कला को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उत्तर प्रदेश से रहने वाला था, सबसे ख़ास बात तो ये, तो यूपी का है तो टैलेंटेड तो होगा ही। अब मैं ये नहीं कह रही कि यूपी के लोग टैलेंटेड होते, पर हाँ यूपी की जलवायु ऐसी है जहाँ भी डाइवर्सिटी होगी जलवायु में वहाँ पे कला का कहते हैं ना ओरिजिनेशन होता है। सारे कलाकार दिल्ली मुंबई से नहीं बनते, बहुत सारे कलाकार दिल्ली मुंबई में जाके बने हैं लग रहा है, लोगों के सामने आए, पर जो उनके अंदर की जो ग्रूमिंग है वो उनकी बैकग्राउंड से हुई है, उनकी मातृभूमि से हुई है, और मातृभूमि ऐसी है जहाँ पे मतलब रिसोर्सेज नहीं है, चाहे वो यूपी से हो कोई, बिहार से हो कोई, पंकज त्रिपाठी की बात कर लेते हैं बिहार से हैं, यूपी बिहार से हमारे, और बहुत सारे मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जिनके अंदर कला है और वो शहर जाके अपनी कला को समझ पाए जान पाए। तो ऐसे ही

ये हमारे कलाकार हैं जिनका नाम है विशाल, विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज यूपी के बिजनौर ज़िले से चांदपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिनेमा से नहीं क्रिकेट से की थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया जिसके बारे में हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले उनकी उपलब्धियां बताती हूँ। वो एक निर्माता हैं, संगीतकार हैं और पार्श्व गायक भी हैं। हिंदी सिनेमा में काम करने के साथ उन्हें बहुत सारे राष्ट्र पुरस्कार भी मिले हैं, फिल्म फेयर में मिले हैं, पर ज़िंदगी की शुरुआत बेहद अतरंगी हुई थी। उन्होंने पढ़ाई हिंदू कॉलेज लखनऊ दिल्ली से की। दिल्ली में जब वो पढ़ाई करने लगे तो उनको लगा कि वो म्यूज़िक में अच्छा कर सकते हैं। पहले तो क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेटर बनने गए थे, घर वालों ने बोला भाई तुम क्रिकेटर ही बनना, लेकिन फिर वहाँ जाके उन्हें लगा कि यार मैं तो म्यूज़िक में भी अच्छा कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने एक हारमोनियम लिया और हारमोनियम पे शुरू के साथ खेलना शुरू किया। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो नहीं थे, लेकिन हाँ जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान टैलेंटेड बनने के लिए टैलेंट को कमाया जाता है, ऐसा नहीं कि आप बर्थ के साथ ही टैलेंट की दुकान लेके बैठे हो। आपके अंदर टैलेंट आपकी मतलब आदतों से, प्रैक्टिस से, मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ का रियाज, हर चीज़ की प्रैक्टिस ही आपको टैलेंटेड बनाती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि घर बैठा है सो रहा है वो टैलेंटेड है, नहीं। इंसान टैलेंटेड बनता है हार्डवर्क करने से किसी भी एक डायरेक्शन में। तो ऐसा ही विशाल ने भी शुरू किया। उन्हें लगा यार म्यूज़िक में अच्छा कर सकता हूँ। एक बार क्या हुआ, हिंदू कॉलेज में एक कॉन्सर्ट था, म्यूज़िक कॉन्सर्ट ऐसा था जहाँ पे मतलब कई सारे लोग थे और वहाँ कॉलेज के बच्चे भी परफॉर्म कर रहे थे। तो इनकी एक सीनियर परफॉर्म कर रही थी जिनकी आवाज़ सुन के ये दीवाने हो गए और इनके मन में लगा कि यार अब तो मुझे म्यूज़िक में और अच्छा करना है, ये लड़की गाना बहुत अच्छा गा रही है और इसे अपने दिल की बात तभी कह पाऊँगा जब मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा। फिलहाल आप लोग आवाज़ गेस करके बताइए वो लड़की कौन थी। मैं आपको उस लड़की का नाम नहीं बताऊँगी, आप आवाज़ गेस करेंगे फिर बताएँगे कि ये लड़की कौन थी जिससे मतलब जिसकी आवाज़ सुन के विशाल को ये मतलब कन्फर्म करना पड़ा भाई मुझे तो अब म्यूज़िक ही बनाना है या गाना ही गाना है। तो चलिए पहले आपको गाना सुनाती हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कि वो लड़की कौन थी। सो लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक एंड फिर कुछ ही देर में वापस से कहानी पे आते हैं। गुड इवनिंग धर्मेंद्र, गुड इवनिंग आशु जी, कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आप सभी का। और इस म्यूजिकल शाम के साथ थोड़ी सी बारिश भी हुई है तो उसको भी हम वेलकम करेंगे। तो बारिश का वेलकम, आपका वेलकम और इस कहानी का वेलकम।

0: सो जी हाँ,
1: जिसकी आवाज़ सुन के विशाल ने ये सोचा कि मुझे तो भाई म्यूज़िक में ही कुछ करना है। तो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आपकी हमारी पसंदीदा गायिका रेखा भारद्वाज की थी। रेखा भारद्वाज वहाँ पे उनके सीनियर थी। उनकी रूहानी आवाज़ से विशाल को प्यार हो गया। विशाल उनकी तरफ खींचते चले गए। लग रहा था मानो दुनिया में उन्हें कोई और दिख ही नहीं रहा। जैसा कि पता है कि वो शहर में गए थे अपनी पहचान बनाने, लेकिन आपको भी पता है कि किसी भी तरह का करियर शुरू करने में टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं कि एक ही दिन में अपनी पहचान बना लोगे। तो दोनों की जो प्यार की कहानी थी वो भी कुछ ऐसी ही हुई, एक ही दिन में सफल नहीं हुई। काफ़ी कोशिशों के बाद रेखा भारद्वाज को भी उनसे प्यार हो गया और दोनों काफ़ी समय साथ में बिताने लगे। दोनों एक दूसरे से संगीत की कहानी से शुरू किए। दोनों की प्रेम कहानी संगीत और विश्वास से बनी हुई थी। दोनों की मुलाकात उस समय हुई जब दोनों अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेखा को अपना करियर गायन में बनाना था और विशाल को संगीत दुनिया को देना था। संघर्षों के बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का प्लान किया, पर कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा आपको प्रूफ करने के लिए कहती है। तो ऐसा ही विशाल के साथ भी हुआ। विशाल को रेखा के घर वालों को बहुत प्रूफ करना पड़ा, क्योंकि उस समय उनकी आमदनी बिल्कुल ना के बराबर थी। एक म्यूज़िक बनाने वाला इंसान अपनी पहचान इंडस्ट्री में कैसे बना सकता है? और उस समय कोई ऐसा नहीं था कि इंसान कोई प्राइवेट कलाकार भी है तो अपने लिए म्यूज़िक बनवाता है, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने काफ़ी समझाया कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एंड फाइनली 1991 में दोनों की शादी हो जाती है। और उसी के बाद धीरे धीरे इनका करियर भी अपने, मतलब कहते हैं ना कि बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हो रहा था। और रेखा को भी लगा कि उनका सही लाइफ पार्टनर उन्हें मिल गया और दोनों एक दूसरे के इश्क में खोने को तैयार थे। आगे की कहानी और दिलचस्प है, बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं दोनों के इश्क में क्या था रेखा भारद्वाज की आवाज़ में।

जी हाँ, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, और इसी की तरह ये कहानी भी आगे बढ़ती गई। रेखा भारद्वाज और विशाल की ज़िंदगी में जो मोड़ आया वो फ़िलहाल जो है वो एक स्वीट मोड़ बन गया था। धीरे धीरे दोनों ने मतलब काम करना शुरू किया, दोनों ने अपनी पहचान बनाई और फाइनली विशाल को बड़े बड़े ट्रैक मिले, जो बड़े बड़े गाने उन्होंने बनाए और फिल्म आई ओमकारा। ओमकारा फिल्म का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और गाने भी सुने होंगे फिल्म का, वो गाना ओमकारा रे ओमकारा। तो इस फिल्म के गानों ने लोगों की ज़ुबान पे ऐसे मतलब अपनी पहचान बनाई कि हर आदमी ऐसा घूमता फिरता उसी फिल्म के गाने गाता था, और फाइनली विशाल एक बड़ी पहचान बन गए। विशाल की पहचान धीरे धीरे बढ़ती गई, बनती गई बनती गई, लेकिन वहीं रेखा को ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी पहचान धूमिल हो गई है, या उनको वो पहचान नहीं मिली जो एक्चुअली में मिलनी चाहिए थी। फिर रेखा जो है वो अपने प्यार से पीछे हटने लगी। गुड इवनिंग इम्तियाज़, कैसे हैं आप? और अपने प्यार से पीछे हटने के साथ साथ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, क्योंकि देखिए पहले के लोग जो प्यार करते थे तो वो या तो प्यार में जीना है या प्यार में मरना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था कि ऑप्शन बी। तो उन्होंने ओशो, आपने सुना होगा कि स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, ओशो को ज्वाइन किया। फिर वहाँ जाके वो रहने लगी, उन्हीं से मतलब उन्हीं की मतलब धर्म की बातें, पूजा पाठ यही सब, मतलब स्पिरिचुअलिटी कैसे है, आत्मा का कैसे ईश्वर से मिलन होता है, ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई और विशाल भारद्वाज से दूर हो गई। पर कहते हैं ना कि प्यार अपनी पहचान बना लेता है, तो विशाल ने पहले बहुत प्रयास किया, उनको समझाया, अपनी कोशिशें की, पर कहते हैं ना कि पति पत्नी के रिश्ते में वो ताकत नहीं थी। पर इधर इनको अपनी पहचान भी बनानी थी। विशाल भारद्वाज फिल्म निर्देशक भी हैं, अपनी मतलब पहचान उनकी एक अलग लेवल की बन गई, जबकि रेखा भारद्वाज एक गहरी और सूफियाना अंदाज की एक विशिष्ट आवाज के साथ भारतीय संगीत में आई। फिर विशाल ने ये डिसाइड किया, आपको क्या लग रहा होगा कि भाई उसका पार्टनर उसको छोड़ के चला गया स्पिरिचुअलिटी की तरफ और अपने आप को मतलब अपनी पहचान को बिल्कुल नकार दिया कि मैं सिंगर हूँ या कुछ हूँ। उनको ऐसा लगा कि मैं शायद अपनी पहचान नहीं बना पाऊंगी। फिर विशाल ने क्या किया, विशाल ने अपना भी काम छोड़ा, वो भी ओशो के पास आ गए। दोनों ने अब एक साथ स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना शुरू कर दिया कि भाई मेरा चाहने वाला जो करेगा मैं उसी के पीछे चलूंगी या चलूंगा। वो वाला सुना ना, गम ना।

आवे। तो इस गाने की जो बोल हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों के प्यार को बताते हैं। तो फाइनली दोनों जो हैं वो अपने प्यार के रास्ते पे वापस आने को थे, और वापस से रेखा भारद्वाज ने इनका हाथ थामा और दोनों वापस से म्यूज़िक की दुनिया में आ गए। तो प्यार वो है जो आपके बिछड़े हुए प्यार का साथ तब तक निभाता है जब तक उम्मीद होती है। और कोई होगा, कोई लड़का, मैंने हमेशा ये सुना है कि लड़कियां अपने प्यार के पीछे जाती हैं, अपने प्यार को मनाती हैं और टूटते रिश्ते को बचाती हैं। क्या कभी किसी लड़के को सुना है कि शादी के बाद, कई सालों बाद, वो अपने मतलब पति या पत्नी को जाता हुआ रोक ले? इनफैक्ट ये तो होता है ना, जाता है, जाने तो यार चलो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे या फिर मेरे पास बहुत काम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। और फाइनली दोनों एक दूसरे के हो गए और दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत सारे गाने गाए, लाइव कॉन्सर्ट्स किए एक साथ, एंड आज वापस से वो प्यार जिंदा है। ये उदाहरण सिर्फ एक प्यार की ताकत को नहीं बताएगा, बल्कि एक दूसरे के सपने पर विश्वास रखना और हर मुश्किल में एक दूसरे को साथ निभाना ये भी सिखाता है। उनका रिश्ता बताता है कि दो कलाकार एक दूसरे का कैसे सम्मान करते हैं। विशाल देखिए बहुत बड़ी पहचान बना चुके थे और वो कहाँ गायकी में ही अपनी पहचान बना रही थी, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से समझा और दोनों को एक पेशेवर यात्रा के लिए सपोर्ट किया एक दूसरे को। और ये सपोर्ट जब मिलता है तो आपको पता है पहचान कैसी होती है। तो चलिए हम सुनते हैं ओमकारा फिल्म का गाना, और मुझे लगता है कि आप सभी को मन कर रहा होगा ओमकारा का गाना सुनने का। सो लेट्स लिसन द टाइटल ट्रैक फ्रॉम ओमकारा फिल्म।

0: or action movies in
1: अरे धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओंकारा।
2: गांव में जाके सबको बता देना कि कप्तान शरद हार गया। अपना 100 रुपया मांग कप्तान से।
1: बिचुरी सांखों ढेर सर पे जिसकी तलवार।

अब ओमकारा का ट्रैक सुनने के बाद अब सोच रहे होंगे कि दोनों का सूफी इश्क भी थोड़ा सा महसूस कर लिया जाए, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, दम नाल दम भरंगी रांझे आवे।

सो जिन उम्मीदों पे आपको लगे कि कोई खरा नहीं उतर रहा, तो उन उम्मीदों को करना छोड़ दीजिए और अपनी नज़रों में ऐसे सपने पालिए जिनको पूरा करने के बाद सुकून मिले और लगे कि यार ये सपना तो मेरा ही था।

0: ओके रोनी
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: तो जैसा कि आप सभी ने आज की कहानी में बहुत कुछ सीखा, लेकिन देखिए सीखने के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सीखना और जानना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या समझ पाते हैं। अब ये नहीं कि मेरी बातों को सुन के आप किसी गलत रास्ते पे चल जाएं, या फिर आपका सामने वाला आपको सच में चीट कर रहा है फिर भी आप उसका साथ देते जाएं, तो प्यार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। और आज की कहानी से आपने जो भी सीखा होगा वो ये ज़रूर सीखा होगा कि शुरुआत कैसी होनी चाहिए। प्यार वो एहसास है जिसे अपनेपन और सम्मान, विश्वास और एक दूसरे की खुशियों की सच्ची परवाह में शामिल रखना चाहिए। प्यार वो है जहाँ किसी को बदले की जिद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। और साथ ही साथ प्यार वो भी है कि किसी भी मुश्किल समय में सामने वाले का साथ छोड़ने के बजाय उसका हाथ थाम लेना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो। और जब हाथ कोई थाम लेता है तो जीत आप ही की होगी, आपके हौसले की होगी, और एक गूंज आपको सुनाई देगी जो शायद दिखेगी नहीं, लेकिन हाँ आपको महसूस होगी कि लोग तालियां बजा रहे हैं आपकी इस सोच पे। प्यार वो नहीं जो खूबसूरत लम्हों के साथ बस बिताया जाए, प्यार वो भी है जो कठिन रास्तों पे एक दूसरे का साथ निभाया जाए। तो मुझे पता है कि आप लोग साथ निभाएंगे, और आज नहीं ता उम्र आप साथ निभाते ही रहेंगे। तो इसी के साथ आज की शाम को मैं यहीं विराम लगाते हुए बता देती हूँ कि कुछ ही देर में आप सुनेंगे गीत आपके नाम से, अपना फेवरेट शो, और अपने गीतों की फरमाइश बरकरार रखिए। और आपने क्या समझा आज की कहानी से चैट रूम में ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगली कहानी आप लोग के लिए कुछ और मेमोरेबल होगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगली वाली कहानी आपके लिए काल्पनिक लेके आऊँ, क्योंकि आज तो रियल स्टोरी सुन के आपको मज़ा ही आ गया होगा। तो चलिए अगला गाना सुनने के लिए तैयार रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन और नमन। अजीब सी उप शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना, महीने में महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, फरमाइशी गीतों के लिए आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के साथ, आपका दोस्त मनु। और आज बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता इम्तियाज जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, और मुकेश यादव जी ने भाई ये गीत डेडिकेट किया है उनको, मेरे नन्हे से फरिश्ते। आइए इम्तियाज जी के इस प्यारे से जन्म दिवस पर ये मुकेश यादव जी का प्यारा सा तोहफा हम पहुंचाते हैं इम्तियाज जी तक, जो बहुत प्यारे श्रोता है।

0: जी हाँ बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब चलते हैं भाई, शुभम यादव जी की फरमाइश है, हमको हमी से चुरा लो, बहुत ही प्यारा गीत, मोहब्बतें
1: हम जीत गए।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत भाई मोहब्बती फिल्म का। और अब चलते हैं अनुष्का जी जो हमको सुनती हैं श्रावस्ती से, और गीत है दिल है तुम्हारा, डेडिकेटेड है इम्तियाज जी को, और सॉरी माफ कीजिएगा अनुष्का श्रावस्ती जी, और गीत है दिल तो पागल है भाई, दिल है तुम्हारा तो बजने वाला है।

जी हाँ, और इसके बाद भाई अरमान जी की फरमाइश है दिल है तुम्हारा, और ये गीत भी डेडिकेटेड है इम्तियाज जी को, क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे।

जी हाँ, और आज से ही नहीं बल्कि अभी से दिल है तुम्हारा भाई। और अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे श्रोता श्री धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ, और बहुत ही प्यारी फरमाइश है मेरे महबूब, रुक जाओ। जी हाँ, और हम रुक भी।

0: गांव रूमी में तुम्हें सब मेहमानों से मिला था। कम यह है मेरी मंगेतर रूबी। रूबी
1: हेलो।

हमने एंजॉय किया धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर, अब चलते हैं निशा जी की फरमाइश और गीत है हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे और तरीका बहुत शानदार होगा, बिल्कुल इस तरह।

0: गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, बहुत ही प्यारा सा गीत। और भाई आज हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता इम्तियाज जी का बर्थडे है और उन्होंने ही फरमाइश भेजी है भाई का बर्थडे। जी हाँ, तो इम्तियाज जी की स्पेशल भाई का बर्थडे।
1: टाइगर जब वो आता है छा जाता है।

भाई तो भाई का बर्थडे है और इसके साथ ही भाई बहुत अच्छी बात यह है कि आशु मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ लखनऊ से। बहन जी प्रणाम आपको, और गीत बहुत प्यारा भेजा है, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए।

जी हाँ, मुसाफिर जाने वाले भाई गदर फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गीत हमने सुना। मिश्रा ऑप्टिकल्स जी की फरमाइश पर अब चलते हैं नीना जी, और नीना जी बताना चाहती हैं कि ये पूरा इंडिया जानता है, और पूरा को मुंबई या भाषा में अक्खा कहते हैं, तो जी हाँ ये अक्खा इंडिया जानता है। क्या जानता है ये हम नहीं, ये बताएगा ये गीत।

जी हाँ, ये अखा इंडिया जानता है, क्या जानता है आपने सुना। और अब चलते हैं भाई अपनी बहुत ही प्यारी श्रोता मोहिनी जी की तरफ, और गीत के बोल हैं हम दीवाने हैं तेरे, बहुत ही प्यारा सा गीत मोहिनी जी की फरमाइश पर।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: लग रहा
1: है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है, और वास्तव में उसके बाद इंसान के एहसास बदलते हैं। अब चलते हैं मनीष श्रीवास्तव जी जो हमको सुनते हैं भाई वशिष्ठ आप से, और गीत उन्होंने भेजा है बहुत ही प्यारा। राज कपूर साहब की क्या शानदार एक्टिंग है और आवाज़, आहा उनके ऊपर तो एक ही आवाज़ सूट करती थी और वो थी मुकेश कुमार की। जी हाँ, तो आइए चलते हैं मेरा जूता है।

जी मेरा जूता है जापानी, लेकिन हिंदुस्तान तो भाई अलग ही देश है, दिल हिंदुस्तान का रहेगा। और जब चलते हैं चांदनी जी की फरमाइश, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको।

जी हाँ, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, और अब चलते भाई मुशीर सिद्दीकी जी की फरमाइश पर, गीत है भीगे हूँ तेरे।

0: जी हाँ, चलते हैं भाई हमारे मनोज कुमार जी जो हमको सुनते हैं सोनी हरलाल से। उनकी बहुत प्यारी फरमाइश अमिताभ बच्चन ने पर्दे पर, और गीत है पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी।
1: बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ

जी हाँ, अब चलते हैं आज के आखिरी गीत की तरफ, और वो है कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। उसकी फरमाइश की है भाई हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता श्री विमल कुमार जी ने।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: मैं फिल्म में गुलुकारा की हैसियत से गई थी, लेकिन एक और रास्ते पर चल पड़ी। मैंने अदाकारा की हैसियत से अपनी सलाहियतों को जाहिर किया। आज की नौजवान नस्ल से पहले के लोग जानते हैं कि मैंने फ़न के किन पहलुओं को दरियाफ्त किया। वक्ती तौर पर गाने का शौक दब गया। फ़न भी पानी के चश्मे की तरह होता है, ज़मीन के नीचे तो चला जाता है, अपनी ताकत से ऊपर उभर आ जाता है।

आदाब और नमस्कार दोस्तों, इस्तकबाल है आप सभी का रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। दोस्तों, आज की रात फिजाओं में एक अजीब सी गहराई है, जैसे आज रात आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी के बीच में बहारे गजल में खुद चलकर आप सभी के पास आई है, वैसे आज की रात आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में गहरे शब्द, प्यारे शब्द, खामोशी भरे शब्द खुद ही साथ में चलकर आए हुए हैं। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के नाम ये महफिल सजा रहे हैं वो हैं उर्दू अदब के वो चिराग जिन्होंने हकीकत को खूबसूरती का लिबास पहनाया है, जावेद अख्तर साहब। आज हम उनकी नज़मों की परतों को अपने बहारी गज़ल के इस रात के रंगीन महफिल में खोलेंगे, जहां ज़िंदगी की कड़वाहट और मोहब्बत की मिठास एक साथ सफ़र करती हैं। सो, क्या आप सभी तैयार हैं आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में आपके इस रात की महफिल बहारे गज़ल में आपके सिंपल के साथ हाथों में हाथ डालकर, आंखों में आंखें डालकर इस महफिल को सजाने के लिए, और अपनी खामोशियों को मौका देना चाहते हैं अगर आप गुनगुनाने का, तो ये महफिल सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए है। सो, अपनी जज्बातों को, अपनी खामोशियों को, अपने खामोश गुफ्तगू को, अपने खामोश नैनों को, अपनी झुकी पलकों को, अपने खामोश चुप से उदास से होठों को खोल लीजिए और उनको मुस्कुराने का एक मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि आज की बहारी गज़ल की महफिल उन सब चुप्पी के नाम है जो कहीं कैद है किसी कोने में, चाहे दिल के किसी कोने में, चाहे दिमाग के किसी कोने में, चाहे जज्बात के किसी कोने में। सो आई नो आप सभी तैयार हैं, चलिए इंजॉय कर लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गज़ल, बहुत ही प्यारा सा गज़ल, खामोश लब हैं झुकी हैं पलके। सो इंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल और मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। आप सुन रहे हैं आपका रात का बहुत ही खुशनुमा सा बहारी गज़ल रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और स्वागत और इस्तकबाल है आपका अनिल शास्त्री गोरखपुर से, महक मुस्तफ़ा सऊदी से, नीना और सुजीत आप सभी का स्वागत है, मुमताज़ अंसारी जी सुरेश कुमार चौक से स्टेट।

0: एक बार फिर से स्वागत है, एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपनी रात की महफिल बहारी गजल में, आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। जैसा कि अभी म्यूजिकल ब्रेक पर जाते वक्त आपकी आरजे सिंपल ने कहा था कि आज इस बारे बहारी गजल की महफिल में जिक्र होगा तो सिर्फ और सिर्फ जावेद अख्तर का। जी हाँ दोस्तों, जावेद साहब की शायरी में एक अजीब सी खामोशी है। वो शोर शराबे और बहुचक्के हो जाने वाली दुनिया की शायरी बिल्कुल भी नहीं करते। वो दिल के अंदर उतरने वाली, भीतर उतरने वाली बातें करते हैं। उनकी एक नज्म याद आ रही है मुझे। जावेद अख्तर जी का कहना है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इश्क के खेल में हमने ये क्या गवा दिया, खुद को ही मिटा दिया और कोई सवाल भी नहीं। कितनी भीड़ है इस शहर में मगर ये देखना, कितनी भीड़ है इस शहर में मगर ये देखना, कोई भी तो अपना नहीं और ये कोई कमाल भी नहीं। अकेलेपन की इस सजा में भी एक सुकून है दोस्तों, अकेलेपन की एक सजा में भी एक सुकून है दोस्तों, कि कोई पूछने वाला भी है, हाले दिल का सवाल भी नहीं। दोस्तों इस नज्म की चौथी लाइन पर अगर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, कोई भी तो अपना नहीं और ये कोई कमाल भी नहीं, ये दुनिया की कड़वी हकीकत है। जावेद साहब हमें सिखाते हैं कि तन्हाई कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक हकीकत है, जिसे स्वीकार कर लेना, जिसे एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। जब हम खुद को तबाह कर लेते हैं और फिर भी शिकायत नहीं करते, तो हम एक ऐसी मंजिल पर होते हैं जहां हमें किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आत्मनिर्भरता का वो स्तर है जो शायद ही कोई शायर इतनी सादगी से बयां कर पाया हो जितनी सादगी से हमारे जावेद साहब ने आत्मनिर्भरता को अपने शब्दों में पिरोया है। सो आप लोगों की पसंदीदा पंक्ति जावेद साहब की कौन सी है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल ये पंक्ति तो उन्होंने लिखी थी खुद की तलाश और तन्हाई के फलसफे पर। अक्सर इंसान दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की इस भीड़ में, दुनिया की इस मोह माया में खुद को भूल जाता है दोस्तों। कभी किसी अपने के लिए, कभी किसी अपने को पाने की चाहत में ही कि वो अपना भी अपना नहीं रह जाता और हम खुद के भी अपने नहीं रह जाते और इंसान कहीं खो जाता है। कुछ गुम गया है उसको तलाश करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप गुम गए हो तो आपको खुद ही खुद को तलाशना बहुत ही मुश्किलात का सामना करवा सकता है। सो ये लाइंस उन्हीं खुद की तलाश और तन्हाई की फलसफे पे लिखी थी जावेद अख्तर जी ने। चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद में हम कुछ चंद नज़मों पर, जो बहुत ही बेहतरीन नज़म है और बहुत कुछ कहकर जाती हैं, बहुत कुछ सिखा के जाती हैं जावेद अख्तर जी की वो पेशकश, तो उन शब्दों को भी आप सभी के सामने रखूंगी। फिलहाल चलिए एंजॉय कर लेते हैं एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल। आप सभी के पेशकश में रखना चाहेगी आपकी अपनी आरजे सिंपल, हु इज़ नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम का बहारी गजल, रात का रंगीन मौसम जहां आपकी खामोशी को सुना जाता है, शब्दों में पिरोया जाता है और गजलों के थ्रू आप सबके बीच रखा जाता है।
1: रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा,
0: और पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए।

सो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने बाहरी गज़ल के रात के इस रंगीन महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.67। आपका इस्तकबाल है समीम आपके इस बाहरी गज़ल के महफिल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपकी बाहरी गज़ल की महफिल के जान हैं जावेद अख्तर जी। सो दोस्तों, अक्सर जिंदगी के सफर में कुछ मुकाम ऐसे आते हैं जहां रास्ते जुदा हो जाते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? अक्सर जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जहां रास्ते जुदा हो जाते हैं। हम शिकवा करते हैं, हम इल्ज़ाम लगाते हैं, और अक्सर उस इंसान को बेवफा का नाम देकर अपने दिल की आग को शांत करने की, अपने दिल की आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि क्या मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम है, या फिर मोहब्बत उस दूसरे की मजबूरी को समझ लेने का नाम भी है? अपनी मजबूरियां तो सबको दिखती हैं, लेकिन अगर किसी मजबूरी के वश में आके किसी ने आपके साथ में ऐसा गलत किया, आपकी मोहब्बत से उसने दूरी बनाई, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमें उसका साथ देना चाहिए। वो हमारे लिए कर रहा है, हमें उसके लिए करना चाहिए। लेकिन अपना अपना नजरिया होता है, कभी कभी तो लोग छोड़ के जाते ही जाते भी नहीं हैं। हाँ, वो कुछ समझाना भी चाहते हैं, कुछ शिकायतें ही करते हैं, कुछ इल्जाम

तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण जरूर होगा, किसी कारणवश उसने ऐसा किया होगा। तो जावेद अख्तर साहब जी को भी प्यार मोहब्बत इश्क बेवफाई में ये विवशता दिखाई दी। दोस्तों आइए उनके एक नज्म के जरिए हम उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। जावेद अख्तर जी ने क्या खूब कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हर एक खामोशी के पीछे एक दर्द छुपा होता है, हर एक खामोशी के पीछे एक दर्द छुपा होता है, यूं ही कोई जुदा नहीं होता। वक्त ने फासले बढ़ा दिए हैं दोनों के दरमियां, वक्त ने फासले बढ़ा दिए हैं दोनों के दरमियां। किस्मत भी अब साथ नहीं, ये कोई हादसा नहीं होता। मोहब्बत की राह में हमने जो खोया है वो बस यादें हैं। मोहब्बत की राह में हमने जो खोया है वो बस यादें हैं। मगर ये भी सच है कि हर जुदाई का एक अंत नहीं होता। गौर कीजिएगा दोस्तों, जावेद साहब यहाँ किसी को गलत नहीं ठहरा रहे, वो तो एक ऐसी खिड़की खोल रहे हैं जहां से आप सामने वाले के हालात देख सकें। अक्सर हम जिसे बेवफाई कहते हैं वो असल में हालात का एक ऐसा समंदर होता है जिसमें इंसान डूब रहा होता है। और जावेद अख्तर जी की ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि मैच्योरिटी, परिपक्वता इसी में है कि हम तलखियों को भुलाकर उस इंसान के प्रति सहानुभूति रखें, तलखियों को भुलाकर उस इंसान के प्रति हम सिंपैथी रखें। जो यादें हमने साथ बुनी थी वो जुदाई के बाद भी हमारी संपत्ति रहे, ऐसी सोच रखें। जावेद साहब हमें ये एहसास दिलाते हैं कि रिश्ता खत्म हो सकता है, हर एक रिश्ते की कहीं ना कहीं डोर टूट ही जाती है। भले हम जिंदगी भर साथ रह लें, लेकिन जहां जिंदगी साथ छोड़ती है वहां तो रिश्ता अधूरा हो ही जाता है ना। तो जावेद साहब हमें यही एहसास दिलाते हैं दोस्तों कि रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन मोहब्बत जो हमने महसूस की है, वो फीलिंग्स, वो जज्बात जो हमने महसूस किया है, वो कभी खत्म नहीं होती। वो हमारे किरदार का एक हिस्सा बन जाती है, भले हमारे किरदार को थोड़ा मॉडिफाई कर दे, भले हमारे किरदार को थोड़ा चेंज कर दे, लेकिन हिस्सा बन जाती है वो मोहब्बत, वो कमी, वो महसूस, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस हमेशा हमेशा के लिए। सो क्या आप लोग का भी मानना यही है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। फिलहाल चलिए इंजॉय करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। अगर कोई गम में भी है और आपके कहने से मुस्कुरा दे तो सच में वाकई विश्वास कर लीजिएगा कि उसको आपसे प्यारा कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो गम भुला दिया, आपके कहने पे मुस्कुरा दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन का बहारी गजल आपके अपने आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ। ये आवाज है जगजीत सिंह जी की और चित्रा सिंह की, मेरे दिल के बहुत करीब ये गजल।

अरिजीत सिंह की आवाज में और चित्रा सिंह की आवाज में हमने एंजॉय किया है आपकी बहारी गजल में ये बहुत ही खूबसूरत सा गजल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। इस्तकबाल है आपका प्रबल मिश्रा फ्रॉम गोंडा। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर जी की लिखावट की, उनके तरीके की, उनके अंदाज की और उनकी सोच की, उनकी समझ की और उनकी उनकी पेशकश ने, उनके शब्दों ने, उनकी लिखावट ने हमें कौन सी धरोहर दी है, हमें क्या सीखती है इसकी। दोस्तों आज के इस दौर में जहाँ रिश्तों की डोर बहुत कच्ची हो गई है, जहाँ भरोसे का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुनाफे तक सिमट गया है, वहाँ वफादारी एक दुर्लभ शब्द बन गया है। वफा जो शायद अब हर कहीं मिलती ही नहीं, वही वफा, वही वफादारी जो पहले हर एक इंसान में मिलती थी। हम अक्सर पूछते हैं ना, क्या आज के जमाने में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना मुमकिन है? और पूछते ही नहीं, हर एक इंसान पर, कोई भी हो, चाहे वो दिल के कितने भी करीब हो, चाहे वो दिल के कितने भी दूर हो, अगर हमें उसके ऊपर भरोसा करना होता है तो पता नहीं क्यों आज के टाइम पर, आज के जमाने में हर एक इंसान पहले खुद में सोचने लगता है कि क्या मुझे सामने वाले पे भरोसा करना चाहिए, क्या इसकी बात विश्वसनीय है, क्या इसका व्यवहार विश्वसनीय है। जावेद अख्तर साहब का जवाब हमें लफ्जों में नहीं बल्कि उन उसूलों में मिलता है जिन पर वे अपनी शायरी की बुनियाद रखते हैं। जावेद जी का मानना है कि भरोसा करना कमजोरी नहीं बल्कि खुद की शख्सियत की मजबूती है। यहाँ जो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं उनको आजकल के इस घोर कलयुग में समझाया जाता है कि अरे लाला बुरा फंसेगा, किसी दिन अच्छी टोपी पहनेगा, इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन जावेद जी का कहना है कि भरोसा जो करता है वो ना कभी कमजोर था, ना कमजोर है, ना कमजोर रहेगा। भरोसा करना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि भरोसा करना अपने आप में एक मजबूती है, एक स्ट्रेंथ है। आइए देखते हैं कि वफादारी और यकीन पर हमारी जावेद अख्तर जी का कैसा नजरिया है। जावेद जी का कहना है कि यकीन का एक दिया अगर दिल में जलाए रखोगे, यकीन का एक दिया अगर दिल में जलाए रखोगे तो उम्र भर खुद को अपनों की महफिल में सजाए रखोगे। वफादारी वो इबादत है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, वफादारी वो इबादत है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, तुम अगर इसे निभाओगे तो अपनी रूह को रोशन बनाए रखोगे। जावेद जी का कहना है कि भरोसा उस रिश्ते की बुनियाद है जो दिखती नहीं, भरोसा उस रिश्ते की बुनियाद है जो दिखती नहीं, मगर उसी नींव पर तुम अपनी पूरी कायनात बनाए रखोगे। जमाना बदलेगा, हालात बदलेंगे और लोग बदल जाएंगे, जमाना बदलेगा, हालात बदलेंगे और लोग बदल जाएंगे, तुम बस अपने अक्स को अपनी वफादारी से मिलाए रखोगे। गौर कीजिएगा जावेद साहब यहाँ वफादारी को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक इबादत कहते हैं। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं ना दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर नहीं बल्कि अपनी खुद की उस सोच पर यकीन कर रहे होते हैं। जावेद साहब का कहना है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लोगों के किरदार चाहे कितने भी डगमगा जाएं, अगर आपने खुद को अपनी वफादारी से जोड़ रखा है तो आपका अक्स
यानी आपका चरित्र हमेशा बेदाग रहेगा। भरोसे की जो नींव जावेद जी बता रहे हैं वो दिखती तो नहीं है, लेकिन उसी के ऊपर हमारे पूरे वजूद की इमारत खड़ी होती है। दोस्तों याद रखिएगा कि आज के दौर में वफादार होना किसी बहादुरी से कम नहीं है, क्योंकि हर एक वफादार आज के इस दौर में पग पग ठगा जाता है, पल पल ठगा जाता है, छड़ छड़ ठगा जाता है। ये जो झूठे वफा के मुखौटे लगा के हम लोग के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ना दोस्तों, ये शाम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। लेकिन आप ये सब मत समझना कि आपकी वफा कमजोर है, क्योंकि आप ठोकर खा रहे हो, आप बार बार गिर रहे हो, आप में कोई कमी है। एक पॉइंट पे लगेगा हर एक लॉयल इंसान को, हर एक वफादार इंसान को लगता है, हर एक ईमानदार इंसान को, हर एक रियल इंसान को ये लगता है जिंदगी के एक फेज में दोस्तों कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे ही इतना अच्छा नहीं बनना था, शायद मुझे ही इतना नहीं सोच समझ के सबके लिए सब कुछ करना था। लेकिन फिर एक फेज और आएगा जब आप रियलाइज करोगे कि ना ये वफा भाई मैं तो अच्छी चीजें दे रहा हूँ, अब मुझे भगवान जी ने प्रसाद दिया है तो मैं प्रसाद ही वितरण कर रहा हूँ। अगर भगवान जी ने मुझे कीचड़ दिया होता तो मैं भी सबके ऊपर कीचड़ डाल दिया करता और सब अपना कीचड़ साफ किया करते, है ना। सब बहादुर हो आप, वफादार लोग हमेशा किसी बहादुर इंसान से कम नहीं होते, क्योंकि ये इंसान उस आंतरिक शक्ति को दर्शाते हैं, उस अंदर की शक्ति को, पावर को दिखाते हैं, जिससे किसी भी परिस्थिति में कोई कभी भी हिला नहीं सकता। सो ये सोच थी, ये प्रतिक्रिया थी, ये कुछ लिखावट थी, ये कुछ पेशकश थी जावेद जी की, जो मैं एक घंटे के आपके इस प्रोग्राम में कुछ चंद चंद लाइनें ही आप सभी के सामने पेश कर सकती हूँ। सो एंजॉय करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल, मिलते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही प्यारे से गज़ल के उस पार, और आप सुन रहे हैं आपका बहारे गज़ल का ये रंगीन सा रात वाला मौसम, रात वाली महफिल है आपके आर्ट सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.67 गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जाने कि जब खबर महके तेरे खुशबू से सारा तन, तू घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो घड़ी महके वो शजर महके। जगजीत जी की आवाज दिल को सच में खुरेद देती है ना दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन का ये बहार एक गजल, बहुत ही खूबसूरत सा रात का सेगमेंट आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। दोस्तों, हम सभी की आंखों में कुछ ख्वाब होते हैं। कभी कभी लगता है कि वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे या फिर हकीकत भी होंगे, है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जावेद साहब का ख्वाबों की हकीकत और उम्मीद के चिराग से क्या लेना देना था, उनका क्या मशवरा था ख्वाबों पर और हकीकत पर। जावेद साहब का मानना है कि इंसान के ख्वाब ही उसके वजूद का असली नक्शा होते हैं। समझ में आया कुछ? एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि जावेद साहब का मानना है कि इंसान के ख्वाब ही उसके वजूद का असली नक्शा होते हैं। अगर ख्वाब मर गए तो इंसान का वजूद भी एक लाश की तरह बन जाता है। हम अपनी डेली के रूटीन, अपने डेली के दिनचर्या में इतने ज्यादा खो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि अपने उन सपनों को धूल में ही जमने देते हैं, भूल ही जाते हैं एकदम से। सो आइए आज की इस महफिल में उन ख्वाबों को फिर से जगाते हैं जिसके बिना जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है, जिन ख्वाबों के बिना ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही है। सो दोस्तों, जावेद जी का कहना है कि ख्वाब वो नहीं जो सोकर देखे जाते हैं, ख्वाब वो नहीं जो सोकर देखे जाते हैं, ख्वाब तो वो हैं जो रातों की नींद चुराते हैं। तुम जो अपनी निगाहों में उम्मीदें लिए फिरते हो, यही वो चिराग हैं जो अंधेरों को मिटाते हैं। हकीकत की राहें बहुत पथरीली और लंबी हैं, हकीकत की राहें बहुत पथरीली और लंबी हैं, मगर सफर का मजा तो तभी है जब कदम लड़खड़ाते हैं। तुम हार मान लेना मगर अपने सपनों को ना हारना। सुन रहे हैं आप सब, ये आप सभी के लिए है, प्लीज अपने दिल के लिए सुनना, दिल से सुनना, दिमाग को मत सुनना, ना दिमाग से सुनना ना दिमाग में रखना। मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम हार मान लेना मगर अपने सपनों को ना हारना, क्योंकि टूटे हुए ख्वाब ही नई मंजिलों का पता बताते हैं। कितनी गहरी बात है ना दोस्तों, टूटे हुए ख्वाब ही नई मंजिलों का पता बताते हैं। अक्सर हम तब घबरा जाते हैं जब हमारा सपना टूटता है ना। लेकिन जावेद साहब का ये नजरिया गौर करने लायक है कि वो कहते हैं जो सपना टूटता है वो दरअसल आपको ये बताने आता है कि आपकी दिशा गलत थी, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे अपने सपने को पूरा करने के लिए। वो आपकी असफलता नहीं है, वो आपका फेल्योर नहीं है, बल्कि एक संकेत है, ये एक वार्निंग है, ये एक अलर्ट है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। सो दोस्तों, ये ख्वाब और हकीकत और उम्मीद और दिलासा, सफलता, इन सब की बातें सिर्फ और सिर्फ आप सभी साथियों के लिए है, उन सभी साथियों के लिए है जो हार मान कर बैठे हैं अपने किसी रिश्ते से, अपने किसी अपने से, अपने किसी ख्वाब से, अपने किसी हकीकत से, अपनी किसी उम्मीद से, अपनी किसी निराशा से, या फिर अपने आप से। ये उन्हीं के लिए ये सेगमेंट था, प्लीज कि अपने आंखों के उस चिराग को जलने दीजिए, क्योंकि अगर ख्वाब जिंदा हैं तो आप जिंदा हैं। अगर आपके ख्वाब ही नहीं है तो ये शरीर तो जिंदा लाश है ना। अगर आपकी इच्छाएं ही नहीं हैं तब तो आप कठपुतले हैं ना।
और अगर ये ख्वाब हैं और ये आंखों का चिराग, ये उम्मीदों का चिराग जलता रहेगा, तभी तो आप जिंदा हैं ना। सो हकीकत की पथरीली राहों पर डरना मत, क्योंकि लड़खड़ा कर चलने वाला ही असली मुसाफिर है। सीधे चलने वाला तो एक एआई भी हो सकता है ना दोस्तों। अक्सर सीधे चलने वाला एक मेन मेड चीज़ होती है, एक मशीन ही होती है, कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट ही होती है। क्योंकि इंसान तो भाई चलेगा, गिरेगा, उठेगा, खड़ा होगा, फिर से चलना सीखेगा, तभी तो दौड़ना सीखेगा ना। सो एंजॉय करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल और मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो जाए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम का ये रात का बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट बहारे गजल आपके अपनी सब्स्टिट्यूट आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो दोस्तों, वक्त का ये कारवा, लफ्जों का ये सिलसिला और ये जज्बातों की गुफ्तगु अब थमने को है। आज जब मैं आप सभी से रूबरू हुई तो जावेद अख्तर साहब की शायरी सिर्फ पन्नों पर नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे ये शब्द आज खुद मुझसे आपसे बातें कर रहे थे। पता है जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। मेरे हिसाब से जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है ये शोर, जिसमें हम अपनी आवाज को कहीं खो देते हैं। हम भीड़ में खुद को ढूंढते हैं और अक्सर नाकाम रहते हैं। लेकिन आज रात इस बहारे गजल के सफर में हमने सीखा कि तन्हाई बुरी नहीं है। हमने सीखा कि अरे ये तन्हाई इतनी भी बुरी नहीं है और वफादारी इतनी भी बोझ नहीं है। इस तन्हाई को भी गले लगाना चाहिए और इस वफादारी को भी संजो के रखना चाहिए। हमने सीखा कि अगर टूटना ही मुकद्दर है तो बिखर कर भी संभल जाना ही

असली जिंदगी है। ये हमने कहां से सीखा? आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल से नहीं, बल्कि जावेद अख्तर से, हमारे जावेद अख्तर साहब से। उनकी एक लास्ट लाइन में आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगी कि आंखों में नमी है मगर होठों पे मुस्कान है, आज जो दिल में उतरी वो मेरी रूह की पहचान है, कल फिर किसी मोड़ पर शायद मुलाकात हो, मगर ये जो लफ्ज आज कहे ये मेरी आखिरी दास्तान है। जावेद साहब के लफ्जों को आज आपने सिर्फ सुना नहीं, आपने इन्हें अपने साथ महसूस भी किया है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल जब सुबह होगी, कल मॉर्निंग में आप लोग जब सुबह सुबह उठोगे, तब आप फिर से उसी भाग दौड़ वाली जिंदगी की तरफ उतरोगे। मुझे पता है, जब चलना, उठना और फ्रेश होके अपनी उसी भाग दौड़ वाली जिंदगी की तरफ फिर से कदम रखना, तो बस एक लम्हे के लिए ठहर जाना और ये सोचना कि आज के दिन कुछ लम्हे, चंद लम्हे अपने लिए बचा कर रखना है, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने दिल के लिए, सिर्फ अपने दिमाग के लिए, सिर्फ अपने जज्बात के लिए, सिर्फ अपनी खुशियों के लिए, सिर्फ अपने ख्वाब के लिए, सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए। और उस लम्हे में खुद से पूछना, क्या मैं आज भी वही हूँ जो मैं बचपन में बड़ा होके बनना चाहता था? क्या मैं आज भी वही हूँ जब मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मुझे वहाँ होना है? अगर आप वही हो, अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुबारक हो, आपने अपने आप को जीत लिया है। और अगर नहीं तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि हर जुदाई एक अंत नहीं होती और हर अंधेरा सुबह की इबादत का पहला कदम होता है। सो मैं हूँ आपकी आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आज की ये रात जावेद साहब के नाम और उनके यादों के नाम थी, और सबसे ज्यादा तो ये बहारे गजल की आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल की शाम, ये रात, ये खुशनुमा बहारे गजल की महफिल आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए थी। तो अपना बहुत बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज जो महसूस करते हैं, क्योंकि आज आप जो महसूस करते हैं वही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि दोस्तों। मिलते हैं कल फिर से आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके साथ, वो भी आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। अभी हमने एंजॉय किया है बहारे गजल, और एंजॉय कर लेते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल। स्टे ट्यून्ड। अब वक्त हो चुका है आप लोग की बहुत ही प्यारी प्यारी प्यारी लव स्टोरी का। स्टे ट्यून्ड।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी तुम्हारे जाने के बाद। विवेक को उसके चले जाने का दुख उतना नहीं होता था जितना परेशान वो ये सोचकर होता था कि अब जीवन भर उसे इस पछतावे में जीना होगा कि उसने उसे खो दिया। समय सारे घाव भर देता है, ये उसने सुना ही नहीं देखा भी था। पर उसके चले जाने के बाद वाला दुख एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी जैसे आज ही मिले घाव सा ताजा था। दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे लगता था कि समय इस पर मरहम लगा देगा पर ये तो जैसे कोई लाइलाज बीमारी सा हो गया था इस समय रूपी औषधि के लिए। ना दर्द कम हो रहा था और ना ही उसकी तड़प। सुबह उठो तो उसकी तस्वीर देखो, फिर दिन भर बस इस पछतावे में जियो कि आखिर उसने उसे कैसे खो दिया। अपनी गलतियां गिनो और ये सोचो कि काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता, या वैसा नहीं हुआ होता तो अभी भी वो साथ होते। किंतु परंतु के बीच उलझा उसका ये जीवन सच को स्वीकार करने में यूं असमर्थ था जैसे सूर्य शीतलता प्रदान करने में। हर दिन बीत चुके को कैसे सुधारा जा सकता है या क्या किया जा सकता था कि जिससे सब कुछ इस तरह नहीं बिखरता, यही सोचने में बीत रहा था। समय में पीछे जा सकने की शक्तियों के बारे में सोचना भी तो पागलपन है, पर वो सोचता था। उसे लगता कि यदि समय में किसी तरह पीछे जाया जा सकता तो वो अपनी हर गलती को सुधार लेता, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़ती। फिर सोचता कि जो भी हुआ ईश्वर की मर्जी के बगैर तो नहीं हुआ होगा, और अगर उसने ऐसा किया है तो उसके पीछे उसके अपने भी कुछ प्लान्स होंगे। पर कई महीने बाद भी दुख का कम ना होना, इस दर्द का ज्यों के त्यों बना रहना ईश्वर के इस प्लान पर उंगली उठा रहा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुम्हारे जाने के बाद। अब तक आपने सुना विवेक अपनी पत्नी को खो चुका था, लेकिन उसके जाने का गम इतना वक्त बीतने के बाद भी गम होने का नाम ही नहीं लेता था। दिन रात हर पल उसके पास सिर्फ एक ही काम था, काश में जीना और उसे याद करना। अब आगे वो सोचता था एक ही रिश्ते में रह रहे दो शख्स एक सा प्रेम करने के बाद भी एक इतनी आसानी से आगे बढ़ चुका है और वो आज भी वहीं ठहरा हुआ था, तो ईश्वर की इस योजना का उसके समझ में आना बहुत कठिन होता जा रहा था और ना ही वो ये स्वीकार कर पा रहा था कुछ बेहतर होगा। लगता था जैसे ईश्वर से कोई गलती हुई हो या फिर उसके लिए बनाई गई नई योजना को लागू करना ईश्वर भूल गया हो। ऐसा कोई दिन नहीं था जब दर्द जरा सा भी कम हुआ हो। पछतावा अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अगर उससे माफी मांगने पर सब ठीक किया जा सकता तो वो उसके पैरों में गिरकर उसके पैरों को धोकर पी सकता था, परंतु वो जानता था कि इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये बात ईश्वर भी जानता था कि विवेक उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और इस दर्द को कम करने के लिए भी वो हर वो चीज करने को तैयार था जो ईश्वर चाहे, लेकिन ईश्वर उसे कोई इशारा भी नहीं करता था कि आखिर वो क्या करे कि सब कुछ ठीक कर सके या इस दर्द को कम कर सके। उसकी यादों का यूं तरोताजा बना रहना अब बोझ होता जा रहा था। वो चाहता था कि अब सब कुछ धुंधला हो जाए, परंतु ऐसा भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी गलतियां तो अब दिनों दिन और साफ दिखाई देने लगी थी उसे। वो यादें खूबसूरत ना होकर जैसे कोई श्राप सी हो गई थीं, ऐसा श्राप जो अनंत काल तक उसके साथ रहेगा। इसलिए अब उसके जाने का दुख जैसे समाप्त हो चुका था, रह गया था तो सिर्फ पछतावा। उसके चले जाने के दुख के सामने उसकी गलतियों का ये पछतावा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उसे अब उसके जाने से ज्यादा खुद के होने का पछतावा होता था। लगता था जैसे अगर ये सब खत्म नहीं कर सकता है ईश्वर तो कम से कम उसे ही खत्म कर दे। पर शायद अनंत काल के लिए मिला ये श्राप उसकी आखिरी सांसों के साथ ही समाप्त होगा। ऐसा ही तो होता है ना, वो समय में पीछे नहीं जा सकता था, ये सच है, लेकिन वो बीते समय में ही जी रहा था, ये भी सच है। उसके जाने के बाद जैसे उसका समय आगे बढ़ा ही नहीं,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुम्हारे जाने के बाद। अब तक आपने सुना, विवेक की पत्नी परलोक की यात्रा पर निकल चुकी थी और विवेक उसके दुख से किसी भी तरह खुद को उभार ही नहीं पा रहा था। अब आगे, उसकी पत्नी का देहांत हुए अब 5 वर्ष बीत गए थे। ऐसे दुख खत्म तो कभी नहीं होते, पर मन पर विवशता और उदासीनता की एक परत सी जम गई थी। इससे दुख हल्का लगने लगा था। जीवन और परिवार की लगभग सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थीं। नौकरी से सेवानिवृत्ति, बच्चों की नौकरियां और विवाह भी। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी जहां दोबारा घर बसाना उसे बचकाना ख्याल लगता था। उसे याद आता था कि एक बार पत्नी और खुद की नौकरी में अलग अलग पोस्टिंग हो जाने के लिए अनिच्छुक पत्नी को समझाते हुए उसने ये वचन दे डाला था कि वो जीवन में कभी किसी दूसरी औरत के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसके जाने के बाद वो वचन उसके लिए पत्थर की लकीर बन गया। वो तन मन से दुनिया भर की स्त्रियों से हमेशा के लिए दूर हो गया। उसके अंदर जैसे एक जड़ता ने घर कर लिया। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पास कोई तो हो जिसके कंधे पर सर रख के वो अपना दुख मना सके, उसके साथ एक कप चाय पी सके, उससे अपने मन की कोई बात कर सके। कोई भी, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई तो हो, एक अदद इंसान की उसे जरूरत महसूस होने लगी। उसे अपने हम उम्र लोगों का साथ बड़ा खीज भरा लगता। वो हमेशा ऐसी बातें करते कि उसकी आमदनी कितनी है, उसकी जायदाद की कीमत कितनी है, उसके पास भविष्य निधि के स्रोत क्या हैं, उसके मकान या जमीन का बाजार मूल्य कितना है। इन सवालों से उकताकर वो दूरी बना लेता। उसका ध्यान बच्चों की ओर जाता, लेकिन उनमें से किसी की आत्मीयता पनपने से पहले वो सोचता कि ये इनके जिंदगी बनाने, करियर बनाने के दिन हैं, इनका ध्यान भविष्य बनाने पर ही रहे, और ये सोचता हुआ वो उनसे भी पर्याप्त दूरी रखता। एक शाम के समय खाना खाने के बाद वो सड़क पर अकेला ही टहलकर घर लौट रहा था कि घर के पास उसने एक लड़के को खड़े देखा। लड़का एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी करके उसी के सहारे खड़ा था। लड़के की उम्र लगभग 21-22 वर्ष रही होगी और वो बार बार घड़ी देख रहा था, शायद किसी के इंतजार में था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुम्हारे जाने के बाद। अब तक आपने सुना अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसके दुख में जीते जीते आखिर विवेक को ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में भी उसके लिए कोई तो हो जिसके साथ वो अपना मन हल्का कर सके। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो उसके घर के बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। अब आगे विवेक दरवाजे से भीतर दाखिल होने ही लगा था कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पेड़ के नीचे खड़े होने पर भी बारिश से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा जा सकता था, सो वो लड़का कुछ भीगने लगा। विवेक ने इंसानियत के नाते उससे कहा, भीग क्यों रहे हो, भीतर आ जाओ। लड़का झट से उसके पीछे पीछे चला आया। कमरे का ताला खोलकर विवेक ने भीतर की लाइट जलाई तो लड़के ने कुछ संकोच से पूछा, अकेले रहते हैं अंकल? हाँ, कहकर विवेक ने लड़के को सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो कुछ सहज होकर उत्साहित हुआ, फिर बोला, मैं सामने वाली बिल्डिंग में एक आंटी को डांस सिखाने आता हूं। अच्छा, विवेक को उसकी बात में दिलचस्पी लगी। उन्होंने मुझे 7 बजे का समय दिया हुआ है पर कभी समय पर घर नहीं आ पाती, वो कुछ मायूसी से बोला। क्या तुम किसी डांस स्कूल में नौकरी करते हो, विवेक ने पूछा। नहीं अंकल, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर जहां से मैंने खुद डांस सीखा था उन्हीं कोच सर ने मुझे ये ट्यूशन दिलवाई है। मेरा थोड़ा खर्च निकल जाता है, डांस स्कूल का समय दिन का है तब ये आंटी आ नहीं पाती, वो बोला। वो आंटी क्या जॉब करती हैं जो रोज देर से घर आती हैं? फिर उन्होंने तुम्हें ये समय दिया ही क्यों?

विवेक ने सहज ही कहा। जॉब नहीं करती, हाउसवाइफ है। देर तो उन्हें वैसे ही हो जाती है, कभी शॉपिंग में तो कभी सोशल विजिट्स में, लड़का बोला। विवेक ने देखा कि लड़का संजीदा और शिक्षित था, साथ ही स्मार्ट भी। लड़का उस दिन तो थोड़ी देर बाद चला गया, लेकिन अब वो कभी कभी विवेक के पास आने लगा। जब भी वो फुर्सत में होता चला आता। एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लेने के बाद उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। विवेक अपने अकेलेपन से त्रस्त तो था ही, एक दिन बैठे बैठे उसके मन में आया कि क्यों ना वो भी डांस सीख ले। ठीक है कि अब इस उम्र में उसे कोई करियर नहीं बनाना, कहीं प्रस्तुति नहीं देनी, पर अपने मन की खुशी और तन की व्यस्तता का एक उपाय तो ये है ही। दो चार दिन ही बीते होंगे कि लड़के को डांस का एक ट्यूशन और मिल गया। वो ट्यूशन विवेक का ही था।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुम्हारे जाने के बाद। अब तक आपने सुना, विवेक ने अपनी पत्नी के वियोग में कई साल अवसाद में गुजार दिए। फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो डांस टीचर था। अपने सूने जीवन की धारा मोड़ने के लिए विवेक ने निर्णय लिया कि वो भी नृत्य सीखेगा। अब आगे, अब वो लड़का सप्ताह में दो दिन विवेक को भी डांस सिखाने लगा। फिर रोज दरवाजा बंद करके तेज संगीत की आवाज में विवेक लगभग एक घंटे तक अकेले ही उसके सिखाए स्टेप्स दोहराता। एक दिन विवेक बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। अभिवादन के बाद विवेक ने उसे बैठाया। वो इधर उधर देखते हुए कुछ संकोच से बोली, अभी अभिनव का फोन आया था, वही कोरियोग्राफर सर। ओह अच्छा, विवेक ने कहा। हाँ, उसने कहा है कि आज उसे आने में देर हो जाएगी, तो तब तक मैं आपको कुछ वो स्टेप सिखा दूं जो वो मुझे सिखा चुका है, क्योंकि असल में वो दो लोगों वाले डांस के स्टेप्स हैं, इसीलिए अकेले अकेले समझ में भी नहीं आते। विवेक के लिए ये सुखद आश्चर्य था। कुछ मिनट बाद वो और वो अपरिचित महिला एक तेज धुन पर एक साथ डांस कर रहे थे। विवेक को महिला की अगवानी की हड़बड़ी में शायद ये भी ध्यान नहीं रहा था कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया है। वो नाचते नाचते मनोयोग से घूमकर पलटे तो देखा कि अभिनव उनका डांस टीचर सामने खड़ा ताली बजा रहा था। वाह वाह, एक्सीलेंट, उसने कहा तो वो दोनों अचकचा कर रुक गए। अभिनव ने उसे बताया कि डांस मन की खुशी का प्रदर्शन भी है। अब मैं आपको सिखाऊंगा अलग अलग, पर दिन में एक बार किसी भी समय आप लोग साथ में प्रैक्टिस किया करेंगे। मानो अब से उनकी जिंदगी ही बदल गई। अब वो ऐसे मित्र बन गए थे कि दिन में एक बार आधे घंटे के लिए जरूर मिलते थे, पर उस आधे घंटे की प्रतीक्षा कई घंटों तक रहती थी। ऐसा लगता था कि तन मन में बंधे बांध में अब ठहरा पानी उन्हें तंग नहीं करता था। वो बहकर न जाने कहां ओझल हो गया था। अब कभी कभी रात को सोने से पहले विवेक सोचता था कि अगर रात को सपने में उसकी पत्नी आई और उसने ये पूछा कि आपके साथ दोपहर को कौन होता है, तो मैं उसे बता दूंगा कि उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो मेरी डांस क्लास की क्लास फेलो है, हम एक साथ ही एक टीचर से पढ़ते हैं और होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी तुम्हारे जाने के बाद। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ श्रोताओं, एक बार मैं फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन। वक्त हो चला है उस शाम का, उस रात का, जब आगाज होता है कुछ ऐसे सुरों का, कुछ ऐसे साज का, कुछ ऐसे संगीतकारों का, कुछ ऐसे कलाकारों का जो कहीं पर घूम से गए हैं। पर आज का जो विषय है, आज की जो चर्चा है, आज का जो टॉपिक है, वो इन सबसे हटके है। हाँ, बात तो वही है कि हम कुछ भूल गए हैं, कहीं भूल गए हैं, वो बात जो हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा धर्म और कर्तव्य भी है। जी, हम सभी इस धरती पे आए कैसे, इस दुनिया में हमारे आने का जो कारण था वो क्या था, किसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, कहीं ना कहीं इन सभी का जवाब अगर हम ढूंढते हैं तो हमें दिखती है हमारी माँ। लेकिन उससे भी पहले हमारी प्रकृति है, धरती माँ, नेचर, ये पर्यावरण जिसने हमें ये जीवन प्रदान किया और साथ ही साथ में इस जीवन को और अच्छे से जीने के लिए वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी आवश्यकता एक जीवन के लिए होती है। पर हम अपने कर्तव्यों को शायद कहीं भूल गए हैं, शायद कहीं बिसर गए हैं, कहीं पीछे छूट गए हमसे। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, साथ में कुछ नगमे भी होंगे जो आपको आपके कर्तव्यों से रूबरू कराएंगे, आपको जोड़ेंगे उस संवेदना से जो इस प्रकृति और हमारे बीच है। जी हाँ, और इसीलिए आज के दिन का विषय मैंने चुना है पर्यावरण की सीमा रेखा, जो मैं एक कहानी के माध्यम से आज के सफर में आपको साझा करूंगी। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। इस कहानी का उद्देश्य निरंतर दूषित होते पर्यावरण और उसका दोहन कर अपनी जेबें भरने वालों के आत्मघाती निर्णय से हम सबको आगाह कराने का है। अब देखना यह है कि लेखक इस प्रयास में कितना सफल होता है। जी हाँ, ये कहानी तो है पर ये कहानी मेरी नहीं, आप जैसे ही एक प्यारे श्रोता की है, जिनका नाम है अंजनी कुमार श्रीवास्तव, जो कि रहते हैं मालवीय नगर गोंडा में। और आज का जो विषय है वो हमें जागरूक करेगा और साथ ही साथ में ये भी बताएगा कि अगर हम अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक हैं तो बिना कर्तव्य के अगर प्रकृति हमें इतना देती है और अगर हम उनके लिए निष्ठावान हो जाए तो फिर वो हमें कितना देंगे। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी की प्रमुख पात्र व नायिका हैं संध्या, जो भोला मल्लाह की पुत्री हैं। नायक विभु उर्फ कुंवर, जो अखंड प्रताप सिंह के पुत्र हैं और उनकी माता विदुषी। संध्या तब 5 वर्ष और विभु मात्र 6 वर्ष के थे। साथ खेलते, तितलियां मेढकों के पीछे भागते, पेड़ों के झुरमुट में बेखौफ घूमते। जब भूख लगती तो जिसके यहाँ भी खाना तैयार मिलता वहीं बैठ जाते। दोनों के घरों में माताएं उनकी बाट जो होती, समय का तो पता ही नहीं चलता। दूर दूर तक कोई विद्यालय ना था, अगर थी तो दूर दूर तक फैली अनवरत हरियाली, झीलें जिनका मीठा और शीतल जल किसी भी आगंतुक को तृप्त कर देता, पर्वतों की घाटी में बसा ये गांव जिसे लोग सोना गांव के नाम से जानते थे, अपनी हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य से सभी को सम्मोहित कर लेता। दूर दूर तक कोई औषधि ना था, यहाँ की वायु इतनी शुद्ध और शीतल थी कि शायद ही कोई अस्वस्थ होता। आबो हवा में गजब का जादू था,
पर्यावरण ऐसा कि हर किसी का मन यहाँ हर जाता और वो अपनी यात्रा का एक पड़ाव यहाँ अवश्य बनाता। प्रमुखता ये मल्लाहों का एक गांव था जो अपनी स्वामी भक्ति, साहस और आगंतुकों की सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी नावें सवारियों को इस पार से उस पार ले जाती, कुछ आते कुछ जाते। कभी कभी नावों की आवाजाही देर रात तक होती। मल्लाहों के गीत कड़ी ठंडक में भी सर्द हवाओं के सीने चीरकर सुनाई पड़ते थे। कैसे? चलिए इस गाने के माध्यम से सुनते हैं और हम भी महसूस करते हैं।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

ये थी भोला की आवाज, जो शायद कभी ना थकता। जाने कौन सा दर्द उसके सीने में दफन था, जो हर मुसाफिर की सुरक्षा वो जान पर खेल कर करता था। सच ही तो है, हर इंसान को चलना होता है, सामने चाहे आंधी हो या तूफान। आइए हम भी चलते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। समय के तो जैसे पर ही लगे होते हैं, कुछ वर्ष बीते। गौधुली की बेला में संध्या खेलते खेलते निढाल होकर चारपाई पर पड़ गई। लहंगा और चुनरी कब उसके तन से सरक गए ना जान सकी, पर उसकी आंख लग गई। विभू संध्या की पसंद का कोई पकवान लाया था। सांकल तब लगती ना थी, सांकल यानी दरवाजे की कुंडी। विभू सीधा घर में चला गया। उसकी नजर संध्या पर पड़ी तो फिर हट ना सकी। खिड़की से आती चांदनी सुंदर मुखाकृति और उस पर झलकती नन्ही नन्ही ओस सी पसीने की बूंदे रूप राशि को कई गुना बढ़ा रही थी। फिर वह घट गया जो जीवन का सार है, शाश्वत और अविनाशी है। चाह कर भी विभू चेहरे से आंखें ना हटा सका, पलके जैसे झपकना ही भूल गया था। संध्या को देखा तो बहुत बार था, पर ये वो संध्या ना थी और ये प्रथम सोपान यानी के पहला पड़ाव था उनके प्यार का।

कुछ दिन और बीते। भोर होती तो अनगिनत हर श्रृंगार के पुष्प गिरकर धरती को ढांक लेते। संध्या और विभू कब एक दूसरे में घुल गए ये बात तो कप कपाने वाली हवाओं को भी पता न चला। और वे अब कभी कभी मिलने लगे। घाटी के सब लोग सुबह जब अपनी अपनी रोजी में लग जाते तभी एक मीठी आवाज कानों में गूंजती।

श्रोताओं, ये कटु सत्य है कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता और कभी कभी तो इसके निर्णय भी बड़े क्रूर होते हैं। समय ने करवट बदली, कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों की आंखें उस मनोरम स्थल पर गड़ गईं। उन्होंने सोना घाटी की नदी पर एक बड़ा पुल बनाकर उसे एक सुंदर पर्यटन स्थल बना दिया। बस फिर क्या था, बिल्डरों ठेकेदारों ने उनकी इस मंशा को हाथों हाथ ले लिया। इसके लिए सरकार को सहमत करने का सिलसिला चल पड़ा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा आर्थिक लाभ उन्हीं लोगों का था और फिर ऊपर से नीचे तक चूल बिठाने का सिलसिला। सारे गिद्ध मानो एक जगह ही इकट्ठा हो गए। नैतिकता, राष्ट्र प्रेम, पर्यावरण का जज्बा ताक पर रख दिया गया। राजनीतिक गलियारों से लेकर घाटी तक जाल बिछ गए। सब अपने अपने हितों के साधन को और उसे साकार करने में लग गए। कुछ स्थानीय लोगों ने उनका साथ दिया। स्थानीय लोगों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास प्रारंभ हो गया था। कहते हैं, जब तक जंगल के किसी पेड़ की लकड़ी को कुल्हाड़ी की बेंट में नहीं लगाया जाता, जंगल नहीं कटता। घाटी का एक बड़ा घटक भी था हरियाली और पर्यावरण प्रेमी जो था। उसकी सुंदरता को यथावत बनाए रखने के लिए जो कि उसके पक्ष में था, खास तौर पर भोला मल्हार, क्योंकि इस पूरे गांव की जीविका का यही साधन था, जो इस पक्ष में था, जो इस रमणीय स्थल को किसी भी तरह से आधुनिक परिवेश में बदलने के अत्यंत विरुद्ध था। अखंड प्रताप सिंह जी का ये व्यक्तिगत सेवक हर समय अखंड प्रताप और अपने गांव के लोगों के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलता, दोनाली बंदूक अपने मजबूत कंधों पर रखे। श्री अखंड प्रताप जी के साई की तरह उन्हीं के पीछे रहता। दोनों पक्षों के बीच तलवारें खिंच गई। एक तरफ सोना नदी के ऊपर पुल बनवाने के पक्षधर और दूसरी तरफ अखंड प्रताप व भोला मल्हार के समर्थक, जो उस घाटी की स्थिति को यथावत रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। पूरी कहानी में भोला मल्हार एक शब्द भी ना बोला था, जो आज घायल शेर सा ज्वालामुखी बनकर फट रहा था। उसकी दहाड़ सामने वाले पक्ष को मौत बनकर ललकार रही थी। उसने कहा, बाग पर अधिकार बागवान का होता है। हमने कितने जतन से इन वृक्षों को पाला है। जब ये नन्हे पौधे थे, दोनों हाथ फैलाकर ये बच्चों की तरह हमसे अपना खाना पानी मांगते थे। आज जब ये इतने बड़े हो चुके हैं, फल फूलों से लद चुके हैं, इनके पत्ते सूरज की धूप से तपकर भी हमें साया देने योग्य हो गए हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन दे रहे हैं, जीविका दे रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई अपने ही हाथों से अपने जिंदा लड़के जैसे वृक्ष, यानी अपने औलादों जैसे वृक्षों को चिता पर लिटा सकता है? क्यों अपनी बदनीयति से कड़ाहों में भरे दूध को जहर में बदल देना चाहते हैं आप लोग? इस देश की मिट्टी ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये देवदार के विशाल वृक्ष देवभूमि पर धूनी रमाए तपस्वी नहीं दिखते आपको? क्या आप इतना ही सोचते हैं कि इनके कटने पर कितने फुट लकड़ी निकलेगी? थू है ऐसे भारतवासी पर, हम इन्हें रत्ती भर भी क्षति नहीं होने देंगे। किसी में हिम्मत हो तो अपना एक कदम बढ़ा के देखे। आप नहीं जानते कि इनकी रगों में भी खून दौड़ता है, भले ही वह हरे रंग का क्यों ना हो। अकाल और बाढ़ के समय यही हमको बचाते हैं। आज अनेकों परमाणु अस्त्रों के रख रखाव, धुआं उगलते कारखानों और उनसे निकलते दूषित पदार्थ हमारी नदियों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। पूरा विश्व आग की एक भट्टी बन गया है। ये ही हमारे अंतिम विकल्प बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। बस यही है वो सीमा रेखा जिसमें व्यवधान हमारी सभ्यता का नाश कर देगा। प्राकृतिक आपदाएं कहर बनकर हम पर टूट पड़ेंगी। कभी कभी चंद सोने के सिक्के के लिए हम अपने स्वास्थ्य का नाश कर लेते हैं,
जब हम स्वस्थ ही ना रहेंगे तो ये वैभव, ये धन किस काम आएगा। हमें असम के हेमांत बिस्वा और पहाड़ काट देने वाले माझी से कम ना समझें। हमारी छोटी सी टुकड़ी के सामने आप पल भर भी नहीं टिक पाएंगे। महाभारत के युद्ध की भांति दोनों पक्ष आमने सामने थे। दूसरा पक्ष भी अपने प्रभाव का प्रयोग कर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध था। अखंड प्रताप ने जब स्थिति विषम देखी और खून खराबा होने की संभावना देखी तो केंद्र सरकार के कार्यालय में इसकी सूचना तत्काल भेजी तथा स्थिति की गंभीरता से सरकार को आगाह किया। अब प्रधानमंत्री स्वयं बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, श्री सिंह, मेरे सचिव ने इस विषम स्थिति का क्लिप हमें दिखाया है, आप निश्चिंत रहें। अभी से 5 मिनट बाद हमारे जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। चूंकि ये मामला बॉर्डर के गांव का है, इसलिए मैं स्वयं ही कल वहां पहुंचकर दोनों पक्षों को सुनूंगा, वस्तु स्थिति देखकर तत्काल कोई निर्णय लूंगा। अखंड प्रताप जी ने प्रतिद्वंदियों को ये सूचना देकर कल तक रुक जाने का आग्रह किया। थोड़ी ही देर में मिलिट्री ने स्थल को सील कर दिया तथा प्रधानमंत्री जी का संदेश दोनों पक्षों को सुना दिया। सब अपने घर को लौट गए। ये एक और घटना जो पूर्व में कभी घटी थी, उसकी जानकारी भी हमें होनी आवश्यक है। एक बार जब विभू छोटा था, उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। भोला की पत्नी ने उसकी सेवा में जी जान लगा दिया। उस समय विभू की माँ के मुंह से विभू और संध्या के विवाह की बात निकल गई। अखंड प्रताप ने अपनी पत्नी के इस निर्णय पर सकारात्मकता का रुख तो दिया, पर बाद में वे इस पर सोचते रहे। अभी वे इसे भली प्रकार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मौन रहे उनकी पत्नी विदुषी ने संध्या और विभू का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। तब से ही ये बात भोला के भी हृदय में दबी के दबी रह गई। संध्या और विभू बच्चे थे उस वक्त, तब उन्हें ये भी नहीं पता था कि विवाह क्या होता है, पर उन्हें माँ का ये निर्णय सुखद लगा। अपार संपदा धन धान्य के मालिक अखंड प्रताप सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता थे। उनके कई व्यापारिक संस्थान थे। परिवार में मात्र उनकी पत्नी विदुषी और एकमात्र पुत्र विभू था। जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जो उन्हें सपरिवार यहाँ इस घाटी में ले आया। उस समय विभू तीन वर्ष का था। यहाँ पर उन्होंने एक सुंदर भवन बनवाया और चूंकि वे एक व्यवसायी थे, दूर दराज के इलाकों की अच्छी जानकारी थी, उनके निवास पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। उन्होंने घाटी वासियों के विकास के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चे पर यहाँ के परिवेश को बिना बदले, यहाँ की प्राकृतिक उपलब्धता के अनुसार उनकी आय बढ़ाने के अनेकों उपाय किए। उनके प्रतिनिधि यहाँ आकर विविध प्रकार से यहाँ के लोगों को स्किल्ड करते ताकि वे लंबे समय तक अपने पैरों पर खड़े रह सके। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का एक कथन अंगीकार कर रखा था कि भारत में नवयुवकों नवयुवतियों को आगे बढ़ाने का जोश तो है, सामर्थ्य भी, पर सही मैनेजमेंट के अभाव में वे आगे नहीं बढ़ पाते। लॉर्ड मैकाले के द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड वाली बुक में जो क्लर्क का रास्ता था, उसी रास्ते पर बढ़ जाते हैं। श्री सिंह जो भी करते यहाँ के लोगों का एहसान उतारने और मानवता की सेवा के लिए करते। अगर इस जीवनदायिनी सोना घाटी की प्राणवायु ना होती तो शायद उन्हें निर्वंशी ही जीना पड़ता। उन्होंने अपने इस प्रयास से यहाँ के लोगों को विविध व्यवसायों हेतु पारंगत करवाया। अपने व्यवसाय के लिए उनको लगभग हर माह देश के अन्य भागों में जाना पड़ता। राजनीति में भी उनकी अच्छी पहुंच थी। निर्भीकता और योग्यता में आसपास उनका कोई सानी नहीं था। वहीं दूसरी ओर सज्जनता नेक नियति के लिए भी
वहीं दूसरी ओर सज्जनता नेक नियति के लिए भी वे जाने जाते थे। घाटी और आसपास के लोग अपनी पंचायतों में सदैव उन्हें को मुखिया बनाते थे। पारिवारिक झगड़ों में भी लोग निसंदेह होकर उन्हें सुनते और उनके फैसलों का स्वागत करते थे। यदा कदा विभु भी अपने पिता के साथ जब जब पंचायत व उत्सवों में आते तो गांवों के मल्हारों के परिवार उनका मनुहार करते, अपने घर के पास ले जाते, खिलाने पिलाने की कोशिश करते, उनका मन भी वहां लगता। सम्मान में लोग उन्हें कुंवर जी कहते। वे जब यहाँ आते तो घर जाने की जिद नहीं करते। वहां का प्रेम और सत्कार उन्हें बहुत भाता। समय बीतता रहा, घर की शिक्षा पूर्ण कर विभु बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने हेतु विदेश चले गए। आज के दिन घाटी के मुखिया का लड़का विभु अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी कर लौट रहा था। लंबी दूरी पूरी कर सूटकेस लिए पगडंडी से घर के सफर पर था। रास्ते की हरियाली और उसकी रमणीयता ने उसका मन मोह लिया था और फिर वो उसी में डूब गया।

करते हैं खेती तो दादा को पोती सहारा लेती। यहाँ शीरी फरहाद कंधा मिलाकर ले आते तीनों से नदी।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो कैनिस्ट्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, और शो चल रहा है आपका भूले बिस्तरे गीत। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनोखी, और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई गायक, संगीतकार, कलाकार या कोई विषय वस्तु नहीं है, वो अपने आप में ही पूरा संसार है, यानी पर्यावरण और प्रकृति। चलिए, जो मैं आज आपके बीच में कहानी के माध्यम से लाई हूँ, और ये कहानी मेरी नहीं, एक हमारे प्यारे लिसनर की है, जिनका नाम है अंजनी कुमार श्रीवास्तव, जो हमें सुनते हैं मालवीय नगर गोंडा से। आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो हमने लास्ट जाना था कि विभू अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा है। उत्सव में सबसे अलग परिधान में सबको एक आकर्षक व्यक्ति दिख रहा था। बच्चों के मन में विभू को लेकर एक प्रश्न था, आखिर ये है कौन? वे अपनी शैली में वस्त्रों में इधर उधर उछल रहे थे। ये उत्सव एकमात्र उत्सव ना था जो कि वर्ष में एक बार मनाया जाए। उनकी मान्यता थी कि आज की अर्धरात्रि उनका कुल देवता उन्हें दर्शन देने और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने आते हैं, वर्ष भर उनके जीवन यापन की व्यवस्था करते हैं और जंगली पशुओं से उनकी रक्षा भी करते हैं। उस पूजा में उनके प्रमुख होते थे, जिनका नाम था अखंड प्रताप सिंह, जो कि वर्षों से कुल देवता की आरती करते आ रहे थे। भोला मल्हार की पत्नी, जो अपने पति के साथ पूरी श्रद्धा से उनके साथ बनी रहती। अखंड प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव का शुभारंभ किया। उनके बगल उनकी पत्नी विदुषी और फिर उनका पुत्र विभू सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है श्रोताओं, क्या आप पिछले जन्मों में यकीन करते हैं? एक किशोरी अपने द्वार की रंगोली रंगने में इतनी व्यस्त थी जो विभू को भा गई। उसे बार बार देखने के लिए उसका मन उद्वेलित हो उठा और फिर वो किसी अन्य दिशा में चल पड़ी। विभू खुद को रोक ना सका, यंत्रवत उसकी ओर बढ़ चला और फिर अचानक वो कहीं खो गई। कोई न जान सका कि कहां। खोने से पहले उसने एक बार पलट कर पीछे देखा था, बस यही एक बिजली चमकी। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हो जन्मों जन्मों से। कन्या ने उसको रुक कर नहीं देखा, बस ऐसा लगा जैसे वो विभू को पिछली कई जन्मों से जानती हो। फिर वो विभू की आंखों के सामने से जादू की तरह ओझल हो गई।

जी हाँ श्रोताओं, तो इतनी देर से विभू की नजर जहाँ टिकी हुई थी, मैं बता दूं वो कौन है। वो कोई और नहीं, वो थी संध्या। आपकी अपनी संध्या, हमारी इस कहानी की नायिका संध्या। और फिर लुका छिपी की कड़ियां जुड़ने लगी, दोनों एक दूसरे से खुलने लगे। इस बार विभू ने माउथ ऑर्गन बजाया और संध्या ने नृत्य किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होते ही घाटी तालियों से गूंज उठी। मध्य रात्रि जब पूर्णमासी का चंद्रमा अपने निखार पर था, सारी घाटी में सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। ये समय था कुल देवता की पूजा अर्चना करने का। माँ सरस्वती की आराधना से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ट्री 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन, और आज का विषय बहुत गंभीर है। विषय गंभीर इसलिए क्योंकि आज हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। हाँ, बात तो है आपके अपने शो भूले बिसरे गीत की, पर मैं हूँ आरजे अनोखी, और अनोखी बातों का पिटारा होता है मेरे पास, साथ ही साथ में कुछ अनोखे नगमे भी। लेकिन आज का विषय आप लोगों की चेतना और हमारे भविष्य की दृष्टि को साक्ष्य रखकर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे लेखक की ओर फिर से मुड़ते हैं और उनकी कहानी की ओर फिर से आगे बढ़ते हैं, और इस आखिरी और इन आखिरी बातों के साथ में आज का सफर फिर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कहानी में आगे की बात है कि आज भारत ही नहीं पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। अब आइए हमारी संस्कृति इस संदर्भ में क्या कहती है जानते हैं। भारत आरण्यक संस्कृति का देश है, जहां प्राणी जगत के पोषण के लिए वांछित संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जहां मानव प्रकृति और वनस्पति का सेवक था। वर्तमान पीढ़ी आर्थिक और तकनीकी योग्यता के अहंकार में उसका विनाश कर रहा है। बारूद और बम के विस्फोट से प्रकृति की आत्मा छटपटा रही है। औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण, शहरीकरण ने वायु, जल, जमीन और जंगल को जघन्य क्षति पहुंचाई है। भारतीय संस्कृति में वृक्ष, भूमि और नदी के पूजन का विधान रहा है। ऋग्वेद के अनुसार नदियां तन, मन और आत्मा को निर्मल कर स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। मुंबई, नागपुर, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता का वातावरण विषाक्त हो चुका है। अमेरिका का एक आदमी भारत के 150 लोगों के बराबर प्रदूषण फैला रहा है। उपरोक्त संदर्भ में मेरा आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि, ये मैं नहीं कह रही, हमारे लेखक का निवेदन है, हम अपने वंशज की सुरक्षा के लिए यहाँ की जलवायु को यथावत रहने देकर विषाक्त होने से रोकें। मेरा इतना ही निवेदन था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उठकर विभू के सर पर हाथ रख दिया और कहा, सोना घाटी के लोगों के द्वारा स्वयं अपने विकास और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं। एक प्रधानमंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने देशवासियों को स्वस्थ और प्रसन्न देखूं। हमारी समिति ने परस्पर विचार कर अंतिम रूप से ये निर्णय लिया है कि यहाँ की संस्कृति यथावत यहाँ के लोगों की इच्छा अनुसार ही रहेगी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आप सभी के आत्मविभोर कर देने वाले आतिथ्य के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। इस प्रकार ये निर्णय हुआ। फिर आगे वे आगे बोले, आज के शुभ दिन अपने

देवता के संरक्षण में मैं एक और बहुत विशेष घोषणा करने वाला हूँ। श्री अखंड प्रताप जी व उनकी पत्नी की सहमति से मैं इसी गांव की बेटी भोला मल्लाह की बेटी संध्या के विवाह के लिए श्री अखंड प्रताप जी से उनके बेटे विभु का हाथ मांगता हूँ। जोरदार तालियां बजने लगी और देर तक बजती रही। श्री अखंड प्रताप जी अपनी पत्नी के साथ मंच पर आकर अपने पुश्तैनी कंगन, झुमके और हार बेटी के परिवार को एक चांदी की तस्तरी में रखकर आग्रह पूर्वक दे देते हैं और बोले, मुझे अपनाने वाले और मेरे बेटे को दूसरा जन्म देने वाले सभी घाटी वासियों का मैं हृदय से आभारी हूँ, अन्यथा मैंने अपने बेटे को कब का खो दिया होता। यदि इस घाटी के लोगों ने इसे पुनर्जीवन न दिया होता, आज मैं उनकी ये अमानत उन्हीं को सौंपता हूँ और ऐसा करके स्वयं को धन्य और जीवन को सार्थक मानता हूँ। घाटी महाकालेश्वर भगवान शंकर के जय